सुबह की ताज़ी हवा जैसे हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। रास्ते में चाहे जैसी भी रुकावटें हों, कदम उम्मीद के साथ चलते रहने चाहिए।

भंवरा फूलों की तलाश में निरंतर उड़ता रहता है। उससे सीखिए कि जीवन में भी सुंदर अवसर खोजने के लिए मन को खुला और कदमों को गतिशील रखना चाहिए। हर नया दिन एक नया फूल है जिसमें सफलता की खुशबू छुपी है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। सुबह 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर 44 मिनट का समय रहेगा श्री रामचरित्र मानस गान का। 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। 8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी का। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स। 11:10 का समय होएगा प्रोग्राम तस्वीर का। 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम घर आंगन।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com। 3:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम गाते गुनगुनाते।

और 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में

0: शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbursa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinzo Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defence equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Defence Ministry said that the meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defence and security cooperation. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karen Brutyan, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Asrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation, and defence research and development. The deadline for submitting applications in the ongoing Special Intensive Revision SIR in Delhi has been extended till 24th of this month. According to the Chief Electoral Officer of Delhi, under the revised schedule, the draft electoral roll will now be published on 31st of this month. The last date to file claims and objections will be 30th of next month. The process of resolving these objections will be completed by 31st October, followed by the publication of the final electoral roll on 4th November. The Ministry of Education has informed that the last date for online registration for Yuva Sangam Phase 7 has been extended till 31st of this month. The ministry said that the extension will provide an additional opportunity to eligible youth from across the country to register and participate in this unique youth exchange program. Earlier, the last date to register for Yuva Sangam Phase 7 was 18th August. Interested youth aged between 18 to 30 years, including students of higher education institutions, NSS volunteers and young professionals, can register through the official Yuva Sangam portal. Bangladesh will hold

6:11 और ठीक 55 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। और इस सुप्रभात में हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये समझते हैं कि दिन को कैसे बिताया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम बदल रहा होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो अचानक से शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है, बुखार आ जाता है, गला ख़राब हो जाता है, और तब मन बहुत परेशान हो जाता है और सुबह उठने का मन भी नहीं करता। तो ऐसे समय में अर्पण आपके साथ होता है और ये याद दिलाता है कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अगर मन का संतुलन बना रहे तो सब ठीक हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ गया यूं ही बदलते मौसम में, और उसने कहा कि मेरे जीवन में केवल परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर की आवाज़ है, ये कह रही है कि थोड़ी देर रुक जाओ, अपना ध्यान रखो। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी भाग दौड़ है, लेकिन ऐसे में अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बदलते मौसम में या इस तरह के मौसम में थोड़ा सा रुकना, आराम करना और अपनी देखभाल करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये याद दिलाना अपने आप को सुबह सुबह के समय है, बस बीत जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे अगर अभी आप परेशान हैं किसी वजह से, तो इस बात को कह लीजिए अपने आप से कि समय है, बीत जाएगा, और ये यूं ही बीत जाएगा। तो पूनम है आपके साथ लेकर अर्पण और ये प्यारा सा भजन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये है अर्पण। अर्पण में हम बात कर रहे थे कि सुबह सुबह वैसे तो समय निकालना चाहिए अपने लिए और अपने आप से जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर बदलते मौसम में शरीर साथ ना दे रहा हो तो अपने शरीर की सेवा करना भी ज़रूरी हो जाता है। जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि शरीर और मन दोनों ज़रूरी हैं, इसीलिए अगर बीमारी हो तो ना लापरवाही करें ना अनावश्यक भय से ग्रसित हों। आराम करें, पर्याप्त तरल पदार्थ लें, पौष्टिक भोजन लें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लें। मन से कहें कि समय है, बीत जाएगा। और ऐसे में एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी हो जाती है आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो भी, वो ये कि जब मौसम बदलता है या कोई बीमारी घर आती है तो बच्चे और बुज़ुर्ग, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तापमान और वातावरण दोनों का बदलाव उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। जानते हैं, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए उनकी सेवा बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे भगवद्गीता में भी भगवान कृष्ण इसी पर बल देते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रे करुणा एव च। करुणा सबसे बड़ा कर्म है। छोटी छोटी देखभाल बेशक दिखाई ना दे, लेकिन है वो सेवा ही। जैसे एक बार एक बुजुर्ग महिला थी और उनका पोता जब भी मौसम बदलता था उनसे पूछ लेता था कि दादी आपकी तबीयत कैसी है, तो कहती थी कि तुम्हारा ये सवाल ही मेरी आधी बीमारी ठीक कर देता है। तो इसीलिए बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है जब वो किसी परेशानी में होते हैं, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए और यही भक्ति भी है कि जितना सेवा भाव हमारे अंदर आ सके।

6:26 और ठीक 57 सेकंड। आप सुबह उठ गए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे कैसे दिन की शुरुआत की जाए, लेकिन शुरुआत जैसे भी हो, जो भी हो, ज़रूरत है कि आप में कृतज्ञता का भाव हो। और जब वो कृतज्ञता होती है, जब आप धन्यवाद देते हैं सुबह उठते ही, तो अपने आप सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारी चिंताएँ, सारी बीमारियाँ अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम ऐसे ही शुरुआत करें। लेकिन शुरुआत हमारी कैसे होती है? जैसे मान लीजिए रात को हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं, तो सुबह उठते ही हम इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, और पढ़ते हैं तो चिंता हो जाती है। तो बीमारी से ज़्यादा बीमारी की चिंता हमें परेशान करने लगती है। ऐसे में विवेक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी योग है कर्मसु कौशलम, कि अपना कर्म कुशलता से करें, संतुलन के साथ करें, तो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ना लापरवाही, ना अनावश्यक डर, केवल समझदारी। और थोड़ी सी भी कोई अगर परेशानी आती है तो उसमें अलग अलग लोगों की सलाह लेने की बजाय या खुद पढ़कर और समझने की बजाय आप एक चिकित्सक के पास जा सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं। सजग रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी समस्या पर ही सजग हो जाए तो फिर बहुत सारी समस्याएँ बड़ी वाली ठीक हो जाती हैं। यही विश्वास कि हम जिससे परामर्श लेंगे वो हमें सही कर देगा, यही विश्वास हमें सही भी करता है। अगर आप डाउट्स लेके जाते हैं कि पता नहीं वो अच्छा डॉक्टर है या नहीं, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, ये दवाई लगेगी कि नहीं, तो फिर सारी चीज़ें गलत होने लगती है। इसलिए विश्वास रखिए, सही कर्म रखिए और दोनों के साथ आगे चलते रहिए। हर दिन सुबह सुबह उठते ही प्रार्थना यही कीजिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मुझे चिंता नहीं विवेक दीजिए, भय नहीं धैर्य दीजिए, और सही बुद्धि दीजिए, ताकि जो कर्तव्य मेरे हैं मैं उन्हें ठीक से कर पाऊँ, लेकिन उससे पहले अपने शरीर को मजबूत बना पाऊँ। तो जैसे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, और सुनकर फिर हमें कहीं बाहर नहीं झांकना पड़ता, अपने अंदर से ही सारे जवाब हमें मिलने लगते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी सुबह की शुरुआत की, और सुबह के हमारे मूड की, हमारे शरीर की, कि शरीर अगर मजबूत ना हो तो सुबह उठने का मन नहीं करता। ऐसे में अपने शरीर की देखभाल, अपने मन की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ, तब कोई महान कार्य हो पाएगा। तो जब मौसम बदल रहा हो और ऐसा हो जिसमें कि बीमारियां आसपास घर कर रही हों, ऐसे में पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन, पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित व्यायाम और ज़रूरत के अनुसार चिकित्सीय सलाह, ये सब हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। जैसे एक किसान है, वो रोज़ ठीक से अपनी फसल की देखभाल करता है, ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम उसकी देखभाल ठीक से करेंगे तो

जीवन की जिम्मेवारियों को निभा पाएंगे। पर हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि हम बीमार होंगे और फिर अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे। अरे अगर आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे पहले से ही तो बीमारी तो आएगी नहीं, स्वास्थ्य की रक्षा अपने आप हो जाएगी। और हाँ, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा होता हम खुद को दोष देने लगते हैं, पर आराम नहीं करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, सही सलाह नहीं मानेंगे तो फिर ये कैसे ठीक रहेगा। इसीलिए कृतज्ञता का भाव और प्रसन्नता, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इतना करने से ही आप हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर दुख से आराम से लड़कर बाहर निकल सकते हैं। पर कोशिश तो अपने आप ही करनी पड़ेगी।

जी हाँ, तो बात हो रही थी अध्यात्म की और अपनी बीमारियों की, अपना ख्याल रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी जब हम ठीक से निभाते हैं तभी हम दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं, दूसरों की देखभाल कर सकते हैं, और यही ईश्वर परमात्मा परवरदिगार की सच्ची आराधना भी है। इसीलिए बहुत सारे भारतीय दर्शन ऐसे हैं जिनमें मानव सेवा को ही सबसे सर्वोपरि माना गया है। और ये ज़रूरी क्यों है जानते हैं? क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार खत्म होता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारा मन और करुणा से भर जाता है। जानते हैं भगवद गीता में भी यही बताया गया है कि बिना फल की इच्छा से दूसरों की भलाई करना ही सच्चा कर्मयोग है। इसीलिए ये करके आप देख सकते हैं। और जब करते हैं तो कुछ भी उम्मीद किए बिना ये सेवा की जाए, इसी से अद्वैत भाव भी आता है। यानी आप अपने आप को किसी दूसरे से अलग नहीं मानते, सबको अपना ही विस्तार की तरह देखते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा भी आती है, इससे हमारे अंदर से नकारात्मकता जाती है, जैसे ईर्ष्या, तनाव, लालच, ये सब दूर होता है। तो जब भी मन परेशान हो तो अपना ख्याल रखें और साथ ही ये कोशिश करें कि किसी और के लिए भी आप कुछ अच्छा कर सकें। फिलहाल अर्पण में यहीं तक हम बात करेंगे और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्षते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अंतर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानाञ्च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से

7:10 और ठीक 56 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका अपना प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात जिसमें हम आपके साथ होते हैं, आपकी सुबह की शुरुआत के साथ, जैसे आपके हाथ में चाय है या आप ऑफिस निकलने की तैयारी में हैं या स्कूल के लिए बच्चों को जगा रहे हैं या अभी शायद ये सोच रहे हैं कि बस 5 मिनट और, पर जो भी कर रहे हैं ऐसे में एफएम गोल्ड आपके साथ है और ये याद दिलाता है कि इस समय में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज का पूरा दिन आपके हाथ में है और पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ऐसे में उसका सामना करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है और सुबह का संगीत, सुबह की बातें, सुबह आपका साथ इसीलिए होता है। मैं हूँ पूनम आपके साथ था, आपको इस समय गोल्ड सुप्रभात की एक अच्छी शुरुआत की बधाई देने के लिए, क्योंकि हर दिन अपने आप में अलग है, और ये याद दिलाने के लिए कि आज जो भी आपने सोचा है वो सच होने वाला है, सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। तो शुरुआत इस प्यारे गाने से।

जी हाँ, तो सुबह की शुरुआत बड़ी बड़ी बातों के साथ ना करके, भारी भरकम वादों के साथ ना करके, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों को करके अगर आप करते हैं ना, तो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे सबसे पहले तो मौसम का हाल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो हम पूरी तैयारी करते हैं। तो अगर मौसम की बात करें तो आज बारिश की संभावना है, और टेम्परेचर की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहेंगे। मौसम के बदलने के साथ साथ अपने आप को ठीक रखना ज़रूरी है, इसलिए छाता ज़रूर रखें ताकि आप बचे रहें। और बात करें सूर्योदय की, तो सूर्योदय आज हो गया था 5:53 के आसपास, और सूर्यास्त होगा 6:56 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा दिन है और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे छाता या रेनकोट अपने साथ रखना बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा समय से निकलें, क्योंकि अगर आप पैदल भी चलते हैं तो पानी पर फिसलना हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। जल्दबाजी से बचिए, और अगर गाड़ी लेकर भी निकलते हैं तो ट्रैफिक जैम से बचना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें तो हुई आपके बाहर निकलने के बारे में, लेकिन अंदर की यात्रा भी ज़रूरी है सुबह सुबह। वो क्या है, कौन सी है, और उसको कैसे करें, और उसके लिए कितना समय चाहिए, ये सब जानना चाहते हैं ना? बिल्कुल जानेंगे, हम इसीलिए तो हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर म्यूज़िक हो तो बात ही क्या। तो ये अगला गाना आपके लिए।

जी हाँ, जब जीने की तमन्ना होती है ना, तो ये भी तमन्ना होती है कि हम अपने जीवन को बहुत हेल्दी तरीके से जिएं, क्योंकि अगर स्वस्थ रहते हैं तो ही कुछ भी करने का मन भी करता है। और ये जो स्वास्थ्य है हमारा, यानी हेल्थ है हमारी, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करें। जैसे कि हम बात अभी कर ही रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव हो ही जाते हैं। तो आप एक छोटा सा काम जो कर सकते हैं हर सुबह, वो है 5 से 10 मिनट आप योग के लिए निकालें। तो हल्की स्ट्रेचिंग हो सकती है, ताड़ासन हो सकता है, अनुलोम विलोम हो सकता है, सूर्य नमस्कार हो सकता है, कितने सारे आसन हैं। अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो हर बीमारी, हर चीज़, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक आसन है, और अपने आप को ठीक रखने के लिए भी है। तो सुबह की शुरुआत इस तरह से की जाए तो बहुत अच्छा है। और योग का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल आसन ही आप किए जाएँ। अगर आप 5 मिनट शांत बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो ये भी योग का ही एक माध्यम है, एक प्रोसेस है। इसलिए इसे अपनाकर देखिए, और फिर देखिए ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि जब आप ठीक रहते हैं ना, तो आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव रहने लगता है, और जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो फिर कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगता।

जी हाँ, तो ये प्यारा सा गाना फिल्म बंदनी से था। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो रह गई थी बात करनी, वो ये कि जो ये मौसम बदल रहा है ना, ऐसे में एलर्जी या पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप साफ़ पानी पिए, ताज़ा और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन लें, हाथ की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक ना रहें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें हम मौसम का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये ना करके अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह भी ली जा सकती है। आपका दिन बेहद खूबसूरत हो, अच्छा हो और आप अपने हर सपने को पूरा कर सकें, यही कोशिश होती है FM गोल्ड की, गोल्ड सुप्रभात की, पूनम की और हमारी पूरी टीम की।

जी आशा जी की आवाज़ में प्यारा सा गाना आपके लिए था, इसकी एक झलक आपके लिए पेश की, ताकि आपका दिन बेहतर हो, खूबसूरत हो। वैसे हर दिन परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन हर दिन को परफेक्ट बनाया जा सकता है ये सोचकर, इस एटीट्यूड के साथ रहकर कि आज का दिन मेरे लिए बेशक थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन किसी और के लिए मैं और अच्छा बना सकूं। तो परफेक्शन मत तलाशिए, और हर दिन के साथ परफेक्शन ना होने पर शिकायतें मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि ये दिन अगले दिन की तैयारी है और अगले दिन को आप और परफेक्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ पूनम चलती है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे यहीं पर, क्योंकि अभी तो आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, लेकिन अब से कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड सुनते रहिएगा।

0: नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि कुछ सार्थक करने का एक और अवसर है। तो इसी सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है रेनू कटारिया। आने वाले आधे घंटे में बात होगी देश दुनिया के प्रमुख खबरों की, इतिहास के उन पन्नों की जो आज की तारीख से जुड़े हैं, उन लोगों की जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। तो आइए बीते कल को पीछे छोड़कर आज की सुबह को पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल वैष्णवी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीते कल को पीछे छोड़कर आज सुबह की शुरुआत करते हैं आज सवेरे के साथ। एंड वी आर वेलकमिंग ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। थैंक यू डियर लिसनर्स फॉर बीइंग विद अस एंड डू स्टे विद अस फॉर अनदर हाफ एन आवर फॉर आवर News magazine program wherein we will be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 20th of August. So let's begin with the news first.
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को सेवाओं के दायरे में लाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: Defense Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defense Minister of Japan, Shinzo Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Defense Ministry said that the meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation.
0: शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देशभर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। चयनित प्रतिभागी अपने संबद्ध राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की 5 से 7 दिन की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा करेंगे।
1: The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable ISMR will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. The mechanism of ISMR is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. And the 4-day long India Day festival will begin today in Moscow, bringing together

0: Together, Indian and Russian communities for a celebration of culture, traditions, and people-to-people ties. The festival will be held at Gostiny Dvor in Moscow. More from our correspondent.
1: Being organized under the theme Unity of Cultures, Friendship of Peoples, the festival will feature a diverse program spread across several venues. Around 20 special zones will offer visitors an opportunity to explore different aspects of Indian culture, including yoga, chess, Indian weddings, dance, and Ayurveda. The festival is expected to feature around 75 yoga schools from across Russia, along with instructors from across country. More than 200 Indian and Russian dancers will also participate in performances showcasing the diversity and artistic traditions of Indian dance. Visitors will additionally have the opportunity to experience Indian cuisine through cooking masterclasses, restaurants and shops offering authentic dishes and culinary products. Payal Sharma for Asavere.
2: और अब खेल जगत की जानकारी के लिए चलते हैं मुकेश कुमार बल के पास।
3: जी वैष्णवी, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलविन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में शीर्ष स्थान मिलेगा और वो अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मंगलवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की थी। इस जीत ने विश्व कप में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 1974 के उद्घाटन विश्व कप में स्पेन पर 4-1 की जीत को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल किया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का सफर भी समाप्त हो गया है। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया था, लेकिन इंग्लैंड से 4-2 से उसे हार का सामना करना पड़ा था। और वैष्णवी, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स्ड डबल्स की अगर बात की जाए तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी के खिलाफ खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो वैष्णवी, ये थी कुछ अब तक की महत्वपूर्ण खेल खबरें।
2: अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई है। इस सफर की पहली मंजिल है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अभियान के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। वहीं दिल्ली सरकार 26 अगस्त को त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेंगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी।
0: And Vaishnavi, I have 2 news from Chennai Metro, and both are talking about safety, be it tourism safety or be it women's safety. So the first news is Greater Chennai Corporation is planning to strengthen women's safety by setting up CCTV-enabled stainless steel bus shelters at 6 locations in Tondiarpet with cameras linked directly to its centralized control room. The project costing ₹1.143 crore and funded through MLA funds and the Chief Minister's Integrated Urban Transformation Mission will cover the Tondiarpet Zone 4. The shelters will also have improved lightning, Wi-Fi and electric charging points. And the second news, The Minister for Tourism, Rajesh Kumar, has announced 15 projects to strengthen tourism infrastructure, improve tourist safety and promote new tourism segments with allocations for work in several districts. Tamil Nadu has recorded 30.80 crore domestic tourist arrivals in 2024, ranking second in the country. Presently, the number rose to 36.47 crore in 2024.

0: 2025 marking a significant growth. The ultimate objective is to make every tourist visiting Tamil Nadu feel like a guest and leave as an ambassador for the state.
1: और चेन्नई से अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र के पालघर जिले के दपचारी में वधावान बंदरगाह के पास करीब 1395 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित किया जाएगा. इसे फ्रांस के प्रसिद्ध रूंगिस बाजार की तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और निर्यात की सुविधाएं होंगी. विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि बाजार को सड़क, रेल और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ा जाएगा. वहीं निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में बदलाव किया है. अब अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी. नई समय सारणी के अनुसार 31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर के तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.
0: Moving on to Bengaluru Metro, Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bairagaura has directed officials to clear all remaining footpath encroachments across the Greater Bengaluru Authority area by August 30. Reviewing the ongoing drives virtually yesterday, the minister said encroachments along 964 kilometers of footpaths had already been cleared out of nearly 1500 kilometers of arterial and sub-arterial roads. He directed officials to repair cleared footpaths simultaneously and impose double penalties and seize materials of repeat encroachers. And the next news that I have from Bengaluru Metro, the Karnataka Revenue Department has ordered continuation of social security pensions for eligible beneficiaries whose verified annual income is above 32,000 rupees and up to 1.2 lakh rupees. Deputy Chief Minister and Revenue Minister G. Parameshwara said the decision would benefit people who were earlier excluded due to the unchanged 32,000 rupee income ceiling.
1: और अब रुख करते हैं कोलकाता की ओर. महिला और बाल विकास मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की समीक्षा बैठक आज से कोलकाता में शुरू होगी. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बैठक में शामिल होंगे. बैठक में पश्चिम बंगाल में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, शक्ति अभियान और वात्सल्य जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी. केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इन योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे.
0: एंड द लास्ट मेट्रो न्यूज इज फ्रॉम हैदराबाद. द तेलंगाना NRI एडवाइजरी कमिटी विजिटेड द इंडियन एम्बेसी इन मनीला, द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस यस्टरडे. द टीम डिस्कस्ड माइग्रेशन पॉलिसीज एंड द वेलफेयर ऑफ Indian migrant workers. The committee members studied the migration system followed by the Philippines, which is considered one of the best in the world. They said they would work to develop a better migration policy for Telangana workers going to Gulf countries.
1: रेनू, अब श्रोताओं को मौसम का हाल दे देते हैं. महानगरों में कैसा मौसम रहने वाला है? दिल्ली में तो आज हमने देखा ही, सुबह लोगों को बारिश का सुहाना मौसम देखने को मिला. तो श्रोताओं, आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं मुंबई में भी आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है. यहां अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और कोलकाता की बात करें तो गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
0: And Chennai is likely to have rain or thunder showers, particularly towards the evening or night. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with light rain or drizzle possible. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 32 degrees Celsius.
1: और कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज होती हैं रेनू जैसे, लेकिन हमें पता ही है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास की दिशा बदल देती हैं। 20 अगस्त भी ऐसी ही एक तारीख है। तो श्रोताओं को बताते हैं आज के दिन क्या कुछ खास रहा।

0: 1828 में आज ही के दिन राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में एक ईश्वरवादी उपासना की सभा शुरू की, जिसे ब्रह्म समाज आंदोलन की औपचारिक शुरुआत माना जाता है
1: जी।
0: और आगे बढ़े तो इस तारीख से जुड़ी एक ऐसी खोज है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में रास्ता खोला। 1897 को ब्रिटिश चिकित्सक सर रेनॉल्ड्स रॉस ने कलकत्ता में अपने शोध के दौरान मच्छर के भीतर मलेरिया परजीवी की मौजूदगी का महत्वपूर्ण प्रमाण पाया था। और इन्हें बता दो कि इसी काम के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
1: वेरी ट्रू वैष्णवी। इन द ईयर 1857 ऑन दिस डे फिजिशियन सर रोनाल्ड रॉस आइडेंटिफाइड द एनोफिलीस मस्किटो द कॉज ऑफ मलेरिया व्हाइल वर्किंग एट द प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल इन कैलकटा व्हिच इज नाउ कोलकाता। दिस डे इज नाउ नोन एज द वर्ल्ड मस्किटो डे इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। बहुत बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि मलेरिया कितनी बड़ी एक बीमारी है।
0: आने वाले समय में बिल्कुल यही मौसम शुरू हो जाता है मच्छरों का।
1: जी बिल्कुल। सो हम सबको बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज टुडे इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे, तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो जरूर ध्यान दें कि उनके घर के आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा हो, या पानी में आप कोई ऐसी दवाई छिड़क दें जिससे कि जो मॉस्किटोज अपने लार्वा या कुछ छोड़ते हैं तो वो वहां पर खत्म हो जाए।
0: बल्कि बाहर बच्चों को भी भेजे तो वो भी ध्यान रहे कि कहीं गंद जगह में तो नहीं जा रहे हैं।
1: प्लीज मेक श्योर दैट दे आर वेयरिंग फुल स्लीव्स और पूरे पैंट्स और ट्राउजर्स पहन के बच्चे बाहर जाएं खेलने के लिए इस मौसम में जरूर।
0: बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। 1921 में आज ही के दिन केरल के मालाबार क्षेत्र में वह घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने आगे चलकर मालाबार या मोपला विद्रोह का रूप लिया था।
1: इन द ईयर 1922 ऑन दिस डे फर्स्ट विमेन्स वर्ल्ड गेम्स वर कंडक्टेड ओवर वन डे एट पर्शिंग स्टेडियम इन पेरिस।
0: वहीं 20 अगस्त 1979 में चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
1: 1975 on this day NASA launched Viking 1 a planetary probe towards Mars. And in the year 1977 on same day, that is 20th of August, NASA also launched Voyager 2 towards Jupiter and Saturn, later reaching Uranus and Neptune.
0: और आगे बढ़े तो 1988 में आज ही के दिन भारत नेपाल सीमा के निकट 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल और बिहार में भारी तबाही हुई थी और करीब 1000 लोगों की जान गई थी।
1: जी बिल्कुल। एंड इन द ईयर 1997 ऑन 20th ऑफ अगस्त लता मंगेशकर रिसीव द 5th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: और इन्हें थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी मैं। 1991 में आज ही के दिन यूरोप के बाल्टिक देश एस्टोनिया ने अपनी स्वतंत्रता हाल की थी। सोवियत शासन के दौरे के बाद एस्टोनिया की सर्वोच्च परिषद ने स्वतंत्रता की बहाली का प्रस्ताव पारित किया जिसे 69 सदस्यों ने समर्थन दिया था।
1: वेरी ट्रू वैष्णवी। सो दीज वर सम ऑफ द इयर्स दैट यू नो वर सो इम्पोर्टेंट ऑन दिस डे। सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड इन हिस्ट्री एंड दैट ऑल्सो टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट वेयर इन वी आर आइदर गोइंग टू बी विशिंग आवर पर्सनैलिटीज अ वेरी हैप्पी बर्थडे और रिमेम्बरिंग देम ऑन देयर डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरीज। तो किससे शुरू करते हैं हम?
0: शुरुआत करते हैं बीकेएस आयंगर से
1: जी।
0: योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले महान योगाचार्य बीकेएस आयंगर की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने योग के आसनों को शरीर की संरचना, संतुलन और श्वास के साथ वैज्ञानिक ढंग से समझाने पर बल दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लाइट ऑन योगा दुनिया भर में योग सीखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके लिए योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्म अनुशासन का माध्यम था।
1: वेरी ट्रू वैष्णवी। वी हैव सीन यू नो योग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। वी हैव बीन डूइंग योग फॉर सो लॉन्ग, लेकिन इसको मान्यता वेस्ट में तभी मिली जब वहां पे उन्होंने योगा बोल के और उसको एक अलग ही ढंग से जब पोर्ट्रे किया तो तब पता चला लोगों को कि अच्छा योग इज एक्चुअली सो वेरी गुड फॉर योर बॉडी, माइंड एंड एवरीथिंग। तो उससे फिर वहां पे मेडिटेशन और बाकी चीजें शुरू हुई।
0: बिल्कुल। अगर हम देखें तो जैसे इंटरनेशनल डे योगा मनाया जाता है, उससे आप देखिए कितना सुंदर लगता है। हर देश दुनिया में ये लोग योग करते हुए नजर आते हैं और विदेशों में भी लोगों ने योग का महत्व समझा कि क्या है एक्चुअली में।
1: दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया दैट वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड।
0: बिल्कुल
1: है ना। So let us

0: Wish Demetria Divina Lovato, who is an American singer, songwriter, actress, and television personality. She began her career in 2002, appearing on the children's television series Barney and Friends before rising to prominence for portraying Michi Torres in the Disney Channel musical television film Camp Rock and its sequel Camp Rock 2, The Final Jam. Lovato has released 6 studio albums, Don't Forget, Here We Go Again, Unbroken, Demi, Confident and Tell Me You Love Me, all of which debut in the top 5 of the Billboard 200. And here we are listening, This Is Me from Camp Rock, a sing-along Demi Lovato.
1: प्राचीन भारत के इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझने वाले इतिहासकार प्रोफेसर राम शरण शर्मा को भी आज हम याद कर रहे हैं। उनकी किताबें एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और इंडियाज एंशिएंट पास्ट इतिहास के विद्यार्थियों के बीच विशेष रूप से चर्चित रही। उन्हें विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े पुरस्कार और H.K. बरपुजारे पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले हैं।
0: Today is the birthday of Amy Lou Adams, who is an American actress known for both her comedic and dramatic performances. She has placed 3 times in annual rankings of the highest paid actresses in the world. Her accolades include 2 Golden Globes and nominations for 6 Academy Awards and 7 British Academy Film Awards. She made her feature film debut with a supporting part in the 1999 satire Drop Dead Gorgeous, and her major role came in Steven Spielberg's 2002 biopic Catch Me If You Can opposite Leonardo DiCaprio.
1: उड़ीसा साहित्य की दुनिया में जिनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है वे हैं गोपीनाथ मोहंती। आज गोपीनाथ मोहंती की पुण्यतिथि है। उनके उपन्यास अमृतर संतान और दाना पानी जैसी रचनाओं ने ओडिया साहित्य को नई पहचान दी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले हैं। वे 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले शुरुआती प्रमुख ओडिया लेखकों में भी शामिल थे।
0: जी, एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ रॉबर्ट एंथनी प्लांट, हु इज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन, बेस्ट नोन एज द लीड सिंगर एंड लिरिसिस्ट ऑफ द रॉक बैंड लेड ज़ेप्पेलिन। Plant enjoyed great success with Led Zeppelin from the late 1960s through the end of the 1970s. He developed a compelling image as the charismatic rock and roll frontman, similar to contemporaries such as Roger Daltrey of The Who, Freddie Mercury of Queen, Mick Jagger of the Rolling Stones, and Jim Morrison of The Doors. And in 2006, Hit Parader magazine named Plant the greatest metal vocalist of all time. In 2009, Plant was voted the greatest voice in rock in a poll conducted by Plant Rock. And here, we are listening to Heaven Knows by Robert Plant.

पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है गत स्वप्न हो पथिक, चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। इन पंक्तियों के रचनाकार थे हिंदी के प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री। यहाँ वे कहते हैं कि रास्ता चाहे कितना भी सूना या कठिन क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। पथ की पुकार का उत्तर हमारे कदमों की आहट से ही मिलनी चाहिए, यानी जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, आगे बढ़ते रहना ही हमारा रास्ता है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म आज ही के दिन 1917 को हुआ था। उनका मूल नाम वैसे तो वासुदेव सिंह था। सहज भाषा में आम जीवन, गांव और मानवीय संवेदनाओं को कविता में उतारने वाले त्रिलोचन की प्रमुख कृतियों में ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ और अर्घन शामिल है।

0: साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। उनकी कविताओं में जीवन की सच्चाई भी है और लगातार आगे बढ़ते रहने का हौसला भी। और आगे बढ़ते हैं, भारत के आईटी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने वाले उद्यमी एनआर नारायण मूर्ति का आज जन्मदिन है। नारायण मूर्ति ने 1981 में इंफोसिस की स्थापना की और उसे दुनिया के प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और फ्रांस का लीजियन डी ऑनर जैसे सम्मान भी मिले हैं।
1: Yes, and today we are remembering James Travis Reeves, who was an American country and popular music singer-songwriter. With records charting from the 1950s to the 1980s, he became well known as a practitioner of the Nashville sound, which is a mixture of older country-style music with elements of popular music. He was known as Gentleman Jim, and his songs continued to chart for years after his death. And Vaishnavi, I personally still listen to Jim Reeves. Unki awaaz aap sunenge to aapko waqai lagega ki ji ye awaaz hum baar baar sun sakte hain. So here we are listening to Could I Be Falling in Love, sung by Jim Reeves.

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में भारत की मजबूत आवाज रहे डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का जन्म भी आज ही के दिन 1940 में हुआ था। वे 2002 से 2015 तक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में आईपीसीसी को 2007 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई सम्मान भी मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बॉलीवुड के उस दौर को याद कीजिए श्रोताओं, जब बाल कलाकार भी अपनी मासूमियत और अभिनय से पर्दे पर गहरी छाप छोड़ दिया करते थे। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार थी कुमारी नाज, जिन्हें पर्दे पर बेबी नाज के नाम से जाना गया। 20 अगस्त 1944 को जन्मी कुमारी नाज ने बचपन में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा और फिल्म बूट पॉलिश से खास पहचान बनाई। रेनु, अब बूट पॉलिश की बात हुई है तो यहाँ पे मैं श्रोताओं को एक गाना जरूर सुनाना चाहूंगी उस फिल्म का, आइए सुनते हैं।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली थी। आगे देवदास और एक शोला जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। अब आगे उनके बारे में वैसे तो बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को एक और फिल्म, उनकी फिल्म लजवंती का
1: जब आप बच्चे होते हो तो आपको बहुत प्यारा लगता है ये गाना, तो जरूर लेट्स लिसन डियर लिसनर्स, प्लीज लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: उनकी अभिनय की वही मासूमियत और उस दौर की यादों को समेटते हैं और अब सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आज सवेरे कार्यक्रम को समापन का, तो उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं।

0: हॉकी से FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो WF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक़िद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टलफेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में 6 वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वजीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वजीर आला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वजीर आला रंगासामी शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकतदारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसायल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाज़ात समेत कई अहम मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक़िद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वजा किया गया, जिसकी निकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हममनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालाकृष्णन के साथ शामिल हुए।

वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिनजिरो कोइजुमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवियत मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वुजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तआवुन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन को मजीद बढ़ाने का रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत में अमरीका के सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दिया है और कहा है कि मरकज और रियासत की हुकूमतों ने जम्मू और कश्मीर में सलामती की सूरत हाल को बेहतर करने से मुतालिक कई इकदाम किए हैं। अमरीकी सफीर कल श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमरीका ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की गई और उन शोबों पर गौर व खौज किया गया जहां अमरीका जम्मू और कश्मीर के साथ मसरूफ अमल हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान मुस्बत मसरूफियात और मुस्तकबिल के इश्तराक पर जोर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाबात मुनक़िद होंगे जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरां बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बीएनपी पार्लियामानी पार्टी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आलमगीर ने बीएनपी के अरकान पार्लियामेंट से आज के सदारती इंतखाब में उन्हें वोट देने की अपील की। मुंतखब सदर को कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शिहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज सदर के ओहदे के लिए वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमरीका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज करेगा जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इक्तिसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदामात का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इक्तिसादी शहरक को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदामात को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इत्तेहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमद व रफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही

0: है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक्वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR में दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा शाय किया जाएगा। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर होगी। इन एतराज़ात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवम्बर को हतमी वोटर फहरिस्त शाय की जाएगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती असलाहत पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हमारा फ़र्ज है कि एक ऐसा मुतहरिक इदारा बने जिस पर मुल्क को फख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी तलबा का एहतजाज ख़त्म। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन वज़रा के एक वफ्द के हमरा सिंगापुर रवाना। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। मोहतरमा सीतारमन चौथे भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में शिरकत करने वहां पहुंची हैं। रोजनामा प्रताप की ही एक और अहम सुर्खी है कि दिल्ली में SIR की तारीख फिर बढ़ी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लेकिन समझ में नहीं आता है समय गायब कैसे हो जाता है। अभी तो हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम यानी गोल्ड सुप्रभात की, और इतनी जल्दी 8:45 हो भी गए और हम फिर से लौट कर आ गए न्यूज़ के बाद। तो ये टाइम सुबह सुबह इतना भागने क्यों लगता है, तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सुबह का समय इतनी जल्दी जल्दी भागता क्यों है? भागता इसीलिए क्योंकि सुबह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, या कोई ज़रूरी काम है उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है ना, और ये सारी जो एंगेजमेंट होती है, ये समय को कैसे भगा देती हैं पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब कभी बोर हो रहे हो तो ये समझिए कि शायद आपने अपने दिन को पूरी तरह से स्केड्यूल नहीं कर रखा है। अगर उसे स्केड्यूल कर लेंगे तो एक के बाद एक आपके पास काम आते रहेंगे और समय भागता हुआ लगेगा। ऐसा लगेगा बस अभी तो सुबह हुई थी, ये रात कैसे हो गई। फिलहाल सुबह की बात कर रहे हैं। और अगर आप इस समय ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के रखिए, दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट पहन कर रखिए, वाहन चला रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, और ट्रैफिक सिग्नल है तो कुछ देर रुक जाइए, मंजिल वहीं मिलेगी, कहीं जा नहीं रही है। रफ्तारें ज़रूरी नहीं है, सुरक्षित सफ़र ज़रूरी है। अभी सुरक्षित सफ़र की बात हम अक्सर करते रहते हैं इसमें जो हमारे प्रोग्राम है यानी म्यूज़िकल दिल्लगी में, पर क्यों, क्या ये सुरक्षा जो है ये सिर्फ कहने के लिए है, बताने के लिए है कि हम आपको हर बार याद दिलाएं, या फिर इसके इम्पैक्ट बहुत सारे जो होते हैं उन्हें भी समझें? तो बिल्कुल समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये गाना आपके लिए। हाँ, मैं हूँ पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से।

इतना प्यारा गाना कि बस लग रहा था चलता ही रहे, जैसे हमारी जिंदगी चलती रहती है, हमारा सफर चलता रहता है। और हम बात भी तो इसी की कर रहे थे, सड़क सुरक्षा की, हमारे सफर की। और अक्सर जब हम बात करते हैं नियमों की, चालान की, ट्रैफिक जैम की, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद भी हमारी लापरवाही हो ही जाती है। पर आप जानते हैं हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे परिवार, हमारे देश को कितना गहरा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति या चोट पहुंचाती है। जैसे अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण हमारे देश को हर साल अपनी जीडीपी में से लगभग 3-5% का भारी नुकसान होता है, क्योंकि ये नुकसान जो है ये उसकी भरपाई के लिए होता है। तो नुकसान सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं, ये वो पैसा है जो हमारे देश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च हो सकता था। या जब कभी कोई सड़क में लापरवाही हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लोग, जिनमें ज़्यादा बड़ी संख्या होती है 18-45 वर्ष के युवाओं की, जो किसी परिवार की उम्मीद हैं, देश का भविष्य हैं। सोचिए एक हंसता खेलता युवा अस्पताल के बिस्तर पर, तो सिर्फ सेहत नहीं टूटती जनाब, ये पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी होती है जो टूट जाती है। अस्पताल का खर्च, महंगी दवाइयाँ और कमाई का जरिया बंद हो जाना, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें ना तो ये कर्जे की दलदल में ढकेलने वाली बात हो जाती है। इसलिए सड़क सुरक्षा ये एक जिम्मेवारी है। हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट पहनना ये इसीलिए नहीं है कि हम चालान से बच सकें, बल्कि इसीलिए है क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी घर से बाहर निकलें, याद रखें कि घर पर कोई आपकी राह देख रहा है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, कितनी बार हमने ये सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद भी अगर हम अमल नहीं करते हैं या हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, तो फिर बार बार दोहराने का भी क्या ही फ़ायदा। और अगर समझ जाते हैं तो सोचिए कितनी सारी जिंदगियां आप बचाते हैं, कितने चेहरों पर आप मुस्कुराहट ले आते हैं।

जी हाँ, तो इस प्यारे गाने के साथ फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्लगी का सफर जारी रहेगा। नीतू होंगी आपके साथ, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड सुनते रहिएगा। पूनम चलती है, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृषि जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नदिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी ना हर रोज एक नया एक्सपीरियंस देती है, हर रोज एक नई नज़र देती है, बस हम देखने वाले होने चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम ना देख नहीं पाते हैं। कोई भी नई चीज़, नया अनुभव, नई बात, नए लोगों से मिलना, नई चीज़ सीखना, नई बात जानना, ये हर रोज़ होता है। और हर रोज़ क्या बल्कि कहना चाहिए, हर पल होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। जिस दिन हम उसे बहुत कॉन्शियस होकर समझना शुरू कर देंगे ना, जानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन शायद ज़िंदगी कुछ अलग ही रूप लेकर आएगी। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। तो इस नए नज़रिए के साथ शुरू करते हैं आज

आज है 20 तारीख, 22 तारीख परसों है और उस रात आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। जहां आसमान साफ है, प्रदूषण या बादल नहीं है, वहां तो इसे यूं ही देखा जा सकता है, मगर शहरों में ऐसा हो इसकी संभावना थोड़ी कमी होती है। घर पर हैं तो छत पर जाकर देख लीजिएगा, ट्राई करने में तो कोई हर्ज ही नहीं है, क्योंकि 22 अगस्त को सूर्यास्त के बाद चांद, लेगुन नेबुला और टॉलेमिक क्लस्टर मिलकर एक त्रिकोणीय खगोलीय संयोजन यानी ट्रायंगुलर एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट बनाएंगे और ये एक रेयर इवेंट है। और अगर आप खगोल प्रेमी हैं, आपको चांद सितारों से प्यार है, तो आप इस नेचुरल इवेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, जिसे देखकर कुछ और देखने या कहने का मन ही ना करें, बस खामोशी से देखते रहें।

सांसें भी ना उस वक्त भी रुक जाती हैं जब आप हवा में उड़ रहे हों, और अचानक हवा में उड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल तो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज की और उड़ान योजना की। उड़ान योजना का उद्देश्य जो है वो हवाई यात्रा को ज़्यादा सुलभ और किफ़ायती बनाना है। इस पहल के माध्यम से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिल सके। ये योजना देश के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज हम याद कर रहे हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को, उनकी जयंती पर। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया जब भारत तकनीकी और आर्थिक बदलावों की ओर बढ़ रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और आधुनिक सोच को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और ये है म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें अभी वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

सावन लगता है ना, उसके साथ साथ ही ना बहुत सारे त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग समुदाय अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो आज जो है वो है खोरदाद साल, जो कि पारसी समुदाय का एक प्रमुख पर्व है, जिसे पैगंबर जरथोस्त की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रार्थना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्य सदाचार सद्विचार के संदेश को याद करते हैं। ये पर्व मानवता, नैतिक मूल्यों और सद्भाव के प्रति आस्था को सुदृढ़ करने का अवसर माना जाता है। त्यौहार कोई भी हो ना, संदेश सबका एक ही होता है, मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खुद जी औरों को भी जीने दो। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड

हम सब ना एक अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ सभी सुख सुविधाएं हो, काम के बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। और इसीलिए ना बहुत सारे लोग दुनिया भर में ऐसे देश तलाशते हैं जहाँ वो इस तरह की जिंदगी गुजार पाए।

इस बार जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसे देश के तौर पर पहले नंबर पर आया है पनामा, दूसरे नंबर पर है मेक्सिको और तीसरे नंबर पर है थाईलैंड, जहां जाकर लोग बसना चाहते हैं, बेस्ट शहर जिसे कह सकते हैं, बेस्ट देश जिसे कह सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सब मिल गया जिसकी आपको तलाश है, लेकिन क्या वहां आपको वो अपनापन मिल पाएगा जो अपने देश में रहकर मिलता है? क्या वो परिवार, वो दोस्त मिल पाएंगे जिनके साथ से जिंदगी जिंदगी बनती है? सोचिएगा।

दिल्ली की सड़कों पर हम सब कैसे चलते हैं, कैसे अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, कितनी बार रेड लाइट जंप करते हैं, जब तक इसका रिकॉर्ड ना हो और चालान ना कट जाए, हम अपनी आदतें सुधारते ही नहीं हैं। सुबह के समय तो कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि रेड लाइट हो रही है मगर लोग धड़ल्ले से जंप कर देते हैं। हेलमेट तो ऐसा लगता है हम अपने सर की सलामती के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर एहसान करने के लिए पहनते हैं। इसीलिए अब दिल्ली की सड़कों पर ना 125 जगहों पर नए कैमरा लगा दिए गए हैं। अब अगर आपने ओवर स्पीडिंग की या कार में भी सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी ना, तब भी आपका चालान कट जाएगा। शायद तब हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर पर कोई है जो इंतज़ार कर रहा होगा, तो हमें देर से ही सही पर सलामती से घर पहुंचना चाहिए। सिर्फ फाइन के डर से हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना है, अपनी सलामती के लिए और दूसरों की सलामती के लिए।

करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

101.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। AI की हम बहुत सारी बातें करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सैन फ्रांसिस्को में एक स्टोर को चलाने की जिम्मेदारी एक AI बॉस को दे दी गई। उसमें उसने खुद ही प्रोडक्ट चुने, कीमतें तय की, कर्मचारियों की भर्ती की, नियम भी बनाए, लेकिन कर्मचारियों पर निगरानी रखने में AI विफल रहा। और जब इंसानी टीम ने उसे अपनी ड्यूटी याद दिलाई तो वो नींद से जागा और कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। क्या सचमुच AI उतना एफिशिएंट है जितना हम समझ या मान रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं वो आप जाने। फिलहाल हम गानों की बात कर रहे हैं तो गानों पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना

इसी के साथ अब वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, क्योंकि म्यूजिकल दिल लगी का सफर जो है वो बस यहीं तक था। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे दिल का मेल बॉक्स में, जो कि आप जानते ही हैं रोजाना सुबह 10:30 आप सुनते हैं, जिसमें होती हैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी। और उन रिक्वेस्ट को पहुंचाने का एक ही तरीका है कि आप हमें मेल करें fmgoldairdelhi@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप अपने मैसेजेस मेल भेज सकते हैं, अपनी पसंद के गानों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो 10:30 मिलते हैं आपसे दिल का मेल बॉक्स में। अभी के लिए नीतू चलती है, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप की कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा

0: प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृष्ण जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे विफल रहा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रुपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रुपलिंग ऑफ द कटक पैरादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4-लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट।
1: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: Mr. Vaishnu informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamari Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu today. Six chief ministers and Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators also are likely to participate in the meeting. High-ranking officials, including chief secretaries and home secretaries from the southern states and union territories states, will also participate in the event. The discussions will be held on various key issues, including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention, and border disputes. The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable, ISMR, will be held in Singapore today. The MEA said the fourth round of ISMR will enable both sides to review the progress of various ongoing initiatives and identify avenues to further strengthen India-Singapore collaboration. The fourth edition of India-Singapore Business Roundtable, that serves as a strategic and advisory forum of key business leaders, will also be held along with ISMR. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinzo Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defence equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Union Minister Shivraj Singh Chauhan will facilitate the housewarming of beneficiaries of 2,35,000 houses constructed during the current financial year under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen at Patna in Bihar today. At a program to be held at Babu Sabhagar, the Union Minister will also distribute sanction letters among newly selected beneficiaries. An arrest warrant has been issued against Krishnanagar MP Mahua Moitra on charges of making objectionable remarks that allegedly hurt religious sentiments and for not complying to judge's order to appear before the court in person. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. And in hockey, Indian women's team will face England today in the final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wegener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And in badminton, Indian shuttlers will be in action today in the pre-quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. Players will look to book their places in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल, कहा परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी आर्थिक दुष्परिणाम भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलफेन में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है और कहा है कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्षों ने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से पहले ही इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के

0: तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में होने वाले

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के शाश्वत आदर्श अतिथि देवो भव से प्रेरित होकर दिल्ली सभी अतिथि प्रतिनिधियों का व्यवस्थित, सुरक्षित और हार्दिक स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करिन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: मुकेश, और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलफेन में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स शुरू हो गया है। नीतू के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और ये पहला गाना है फिल्म लैला मजनू से, जिसे जिसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है अफरोज शेख ने। तो आप भी अगर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट या कोई एक गाना भेज सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार सेम मेल मत भेजिए, सेम एक ही एक व्यक्ति एक बार में एक ही मेल भेजिए। उससे होगा ये कि आपकी मेल भी पहुंचेगी और दूसरों की मेल भी पहुंचेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपकी फरमाइश पूरी होगी, औरों की भी फरमाइश पूरी करनी है। तो बार बार आप ही मेल भेजते रहेंगे तो दूसरों की मेल कैसे मिलेगी मुझे। इसीलिए प्लीज़ दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचिए और अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए दूसरों की पसंद भी हम तक पहुँचने दीजिए। फिलहाल पहला गाना अफरोज शेख की फरमाइश पर लैला।

आपको ये घुंघरू की आवाज पीछे से सुनाई दे रही होगी ना, बहुत आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पर मैं बता देती हूँ कि जो घुंघरू की आवाज है ना, इसके लिए भी एक अलग आर्टिस्ट होते हैं जो कि घुंघरू को उसी तरह के उसी रिदम के साथ बजाने में माहिर होते हैं, और ऐसे आर्टिस्ट लोगों का हमें नाम तक भी नहीं पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत कमाल का काम करते हैं लेकिन गुमनाम रहते हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेरा साया फिल्म से, और इसे सुनना चाहा है आर बी खेड़ा और भूषण खेड़ा, विशाल

लिड्डी, शालिनी और प्रिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, इन सब ने मिलकर ये गाना सुनना चाहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सुन लेते हैं ये मशहूर गाना।

हम तो धीरे नहीं बोल सकते ना, अगर हम धीरे बोलेंगे तो आप ही नहीं सुनेंगे, फिर आप कहेंगे आपका मैसेज तो शामिल ही नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं ज़ोर से बोलती हूँ कि जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी उनके नाम हैं सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगुताई कुमार, संचित प्रथमेश, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख और सर्वत। आप सभी की पसंद पर ये गाना हम सब ने सुना। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस आती हूँ। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी फरमाइशें पहुँचाने का जरिया है FM Gold AIR Delhi @gmail.com, यानी ये ईमेल आईडी।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

फहीम शालवाफ की पसंद का ये गीत आपने अभी सुना, और अब आपको बता दें कि अगला गाना जो आने वाला है वो है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रितेश की पसंद का गाना। तो चलिए हम सभी इंजॉय करते हैं।

चलते चलते अब वक्त हो गया है कि आखिरी गाना सुनवा दिया जाए, और ये गाना काफ़ी पुराना है और जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम बता देती हूँ। राजेश कुलकर्णी, गौरी राघव की पसंद का गाना है, संगीतकार विनोद के संगीत से सजा हुआ सबसे मशहूर गाना है ये। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप ये गाना सुनिए और नीतू को इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास तथा स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामिटी

0: में कृषि जनकल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में इसके लिए 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जातीय संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वो विफल रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाय मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The 31st meeting of the Southern Zonal Council, chaired by the Union Home Minister Amit Shah, is underway in Kovalam near Chennai. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar, Kerala Chief Minister Satheesan, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, Telangana's Deputy Chief Minister and Lieutenant Governor of Puducherry are participating in the conference. Discussions will be held on various key issues, including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway, covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट।
1: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के

प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में तब दिखती है जब हर तरफ फूलों की बहार हो। और अगर आपको भी फूल पसंद हैं तो आज का तस्वीर आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी के नाम से मशहूर उस जगह की, जो कि झरनों, हरी भरी पहाड़ियों, घुमावदार रास्तों और बादलों से ढके खूबसूरत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित ज़ुकोऊ घाटी, जो उत्तर पूर्व भारत की उन खूबसूरत जगहों में से एक है जहां पर प्रकृति अपने सबसे शांत और मनमोहक रूप में दिखाई देती है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, मैं हूं नीतू आपके साथ और ये है तस्वीर।

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हम आ गए हैं जुको घाटी, जो कि समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी खास पहचान है यहाँ मिलने वाला जुको लिली फूल, जो इस इलाके की विशेष वनस्पति मानी जाती है। मानसून के बाद जब पूरी घाटी हरियाली से भर जाती है और जगह जगह रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, तब इसकी सुंदरता एकदम अलग देखते ही बनती है। फूलों, पक्षियों और तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। घाटी से गुजरती जुको और जुले नदी की छोटी छोटी जो धाराएं हैं और चारों तरफ फैले घास के मैदान, मतलब इसे एक पूरी तरह से अनोखा कुदरती रूप दे देते हैं। और वो कुदरत ना आपकी आंखों को ऐसी भाती है कि बस दिल ही नहीं करता वहां से हटने का।

जुको घाटी भी ऐसी ही है, भीड़ भाड़ से दूर है, इसीलिए प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि विश्वेमा और जखामा गांव से शुरू होता है। इस ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है, पथरीला इलाका है, जंगल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आपको होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कठिनाई के बावजूद रास्ते में आपको मिलते हैं शानदार व्यूज और शांत वातावरण, जो आपको सिर्फ कुदरत से नहीं बल्कि खुद अपने आप से जोड़ता है। तो ऐसी ही जगह की बातें आज हो रही हैं, जो कि है जुको घाटी। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

ये है तस्वीर जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर नीतू के साथ। और आज तस्वीर में हम बात कर रहे हैं जुको वैली की, जो कि ट्रैक एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का मिक्स है, जो नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रैकर्स को अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसके साफ सुथरे घास के मैदानों को देखें, हरे भरे पेड़ पौधों या शानदार पैनोरेमिक नज़ारों से मोहित हो जाएं, ये ट्रैक जो है एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप जाते हैं तो। पहली बार जा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा गाइड को साथ में रखना एक अच्छा विकल्प रहेगा। सामान जितना कम रखें उतना अच्छा, लेकिन सही रखें, जैसे कि गर्म कपड़े, रेनकोट, पानी, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और फर्स्ट एड किट वगैरह, तभी ये सफ़र ना एहसास फुर्सत वाला सफ़र होगा।

वो घाटी नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और स्थानीय जीवन को समझने का भी अवसर देती है। आसपास के गांवों में रहने वाले नागा समुदाय अपनी परंपराओं, रंगीन त्योहारों और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की यात्रा के दौरान आपको स्थानीय जीवन शैली को करीब से देखने और नागा संस्कृति की विविधता को महसूस करने का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ का स्थानीय भोजन तो है ही, जिसमें नॉनवेज के साथ साथ बांस की कोपनों से बने व्यंजन भी शामिल हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर। और आज हम बातें कर रहे हैं जुको घाटी की, जिसे घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है अक्टूबर से मई के बीच में। अब अक्टूबर से नवंबर तक जो है वो मौसम सुहाना रहता है और सर्दियों में आसमान साफ भी रहता है। इस कारण जो पहाड़ों के सीन्स हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन दिसंबर में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस दौरान जुको घाटी जो घूमने का एक अनुभव है वो बेहतरीन अनुभव रहेगा। आप अगर नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं में रुचि रखते हैं तो फिर आपको इसी फेस्टिवल के दौरान जाना चाहिए। इस दौरान आपको यहाँ नागालैंड के अलग अलग तरह के जो लोक नृत्य हैं वो और लोकगीत, खान पान, उन सब की ना एक अलग अनोखी सी झलक देखने को मिलेगी। जुको घाटी पहुंचने के लिए सबसे पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचना होगा और कोहिमा से विश्वेमा या जखामा गांव तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। वहां से ट्रैक शुरू होता है।

आने का तो पता नहीं है, लेकिन अब जाने का समय हो रहा है। और जाते जाते ना बस इतना ही कहना है कि जब हम किसी जगह जाते हैं और हमें वो जगह खूबसूरत लगती है, तो उस जगह की खूबसूरती को वाकई बनाए रखना ना, उसी तरह से बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये जिम्मेदारी निभाना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए हमारे लिए वो खूबसूरत है, लेकिन अगर हम उसे गंदा करके वापस लौट आए तो दूसरों के लिए वो खूबसूरत नहीं रहेगी और वो कहेंगे कि ये क्या कैसी जगह थी। लेकिन वो किया तो हमारा किया धरा है ना, हम अपने घर को भी साफ रखते हैं तो जहाँ जाते हैं उस जगह को भी साफ रखना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है हम सब यही मानते हैं, बस करते हुए थोड़ा सा ना हिचक जाते हैं, थोड़ा सा झिझक जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी ज्ञान की बात के साथ

मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है। नीतू आपसे मिलती है फिर कभी इसी चैनल पर, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31

0: बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। CISF ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is currently underway in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, are co-chairing the meeting. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework following Japan's revision of the three principles on transfer of defense equipment and technology. The meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasada were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development and sustainability. The ministers are on a visit to Singapore to participate in the fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable to be held today. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on work

0: सुंदर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा
1: नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। रश्मि जी, देखिए, ये कार्यक्रम आवाज का है, जहाँ आवाज के जरिए हमारी मुलाकात होती है हमारे श्रोताओं से और संवाद होते हैं, है ना, जहाँ होती हैं ढेर सारी बातें, होती हैं ढेर सारी जानकारियाँ और गीत संगीत भी।
2: जी प्रतिभा, घर आंगन तो वो कड़ी है जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, लेकिन उस प्रश्न से पहले प्रतिभा, हम अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं रेडियो श्रोता दिवस की।
1: जी,
2: जगह जगह मनाया जा रहा है आज के दिन 20 अगस्त, और जो

0: रेडियो के श्रोता क्लब जो बनाते हैं वो आज का दिन बड़ी बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी जिसे कहते हैं तैयारियों के साथ मना रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए मनाना भी चाहिए क्योंकि ये जो रिश्ता है ना श्रोताओं का आकाशवाणी के साथ हमारे साथ, ये बहुत पुराना है और ये सालों दर साल ऐसे ही चलता आ रहा है। और वाकई आज बधाई का दिन है
0: जी।
1: ना?
0: और इसी से जुड़ा है आज का प्रश्न। भाई हम सभी सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि आज आपकी रेडियो से जुड़ी जो यादें हैं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हैं, या एक अच्छे श्रोता के अंदर रेडियो क्या खास बात होनी चाहिए, या आपका कोई संदेश हो तो वो आज हमसे साझा कीजिए हमारी ईमेल आईडी पर जो है fmgoldga@gmail.com।

0: हाथी मेरे साथी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और रश्मि जी देखिए, आज देश मना रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती। ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, और सद्भावना दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है, जो कि उनके जीवन के कार्यों का मूल मंत्र था। तो आज का दिन है उनके योगदान को याद करने का और देशवासियों को एकजुट होकर शांति और सौहार्द के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी, तो उन इस पर आज उनको हम याद कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज एक और दिन खास है, वो है आज पारसी समुदाय का जो पर्व है वो खोरदाद साल, वो आज मनाया जा रहा है। और यह दिन जो है ना, वो जोरोस्ट्रियन धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र के जन्म की खुशी में मनाया जाता है
1: जी।
0: और इस दिन होता क्या है कि विशेष प्रार्थना और जश्न का आयोजन किया जाता है, और लोग जो हैं पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में अच्छे कर्मों और दान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं।
1: तो देखिए, आज बड़ा विशेष दिन है और हम इससे पहले बता चुके हैं कि रेडियो श्रोता दिवस है आज। और रेडियो जो होता है वो केवल मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि हम तो कहेंगे प्रतिभा वो परिवार के सदस्य जैसा है, जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे भी आपका साथ देता रहता है, आवाज आती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना साथ बैठे हुए है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बचपन में हम लोग भी तो देखिए, जब बारिश होती थी रात में तो रेडियो को मैं लेकर बैठ जाया करती थी और उसको एंटीना को इधर उधर घुमाती रहती थी कि कहाँ ये सिग्नल पड़ेगा। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं मेरी भी रेडियो के साथ
1: जी।

0: गोरा और काला। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी मुकेश और लता मंगेशकर की।
1: लेकिन हम तो धीरे धीरे नहीं बोल रहे प्रतिभा, हम तो बिल्कुल बुलंद आवाज़ में अपने श्रोताओं के लिए घर आंगन में हाजिर हैं उनकी पसंदीदा जानकारियां लेकर। और जैसा कि तुमने एक प्रश्न पूछा था, हमने प्रश्न पूछा था रेडियो से जुड़ी याद, आपके पसंदीदा कार्यक्रम और एक अच्छे रेडियो श्रोता की क्या खास बात है जो, या आप कोई संदेश हमें लिखकर भेजना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। और एक और ईमेल ऐड कर रही हूँ, fmgoldair@delhi यानी कि fmgoldair@delhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर आप हमें मेल कर सकते हैं और कुछ जवाब भी आने शुरू हो गए हैं प्रतिभा।
0: और देखिए सबसे पहले हमारे पास जवाब आया नवीन भाटिया जी का, वो कह रहे हैं कि मेरी जो याद है बचपन की वो ये है कि जब वो शायद वो कहते हैं कि 9th क्लास में थे तो संडे को सुबह वो संगम प्रोग्राम जरूर सुना करते थे। देखिए
1: क्या बात है,
0: मतलब इतने सालों बाद भी उनको याद है कि वो कौन सा प्रोग्राम सुनते थे और वो उसका उनका जो फेवरेट प्रोग्राम था, है ना?
1: बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं शकरपुर में इन विकास मार्ग से, वो कह रहे हैं जब मैं बच्चा था तो मैं छोटा सा पॉकेट रेडियो मेरे पास था, उससे मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुना करता था, सॉन्ग सुना करता था और उन दिनों सुन के बड़ा ही मजा आता था ये कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल। और देखिए ये अफरोज शेख जी हैं सुपौल बिहार से, वो कह रहे हैं कि 38 साल की उम्र में मैं 10 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो सुने बगैर वो नहीं रह सकते और तब तक काम करता रहता हूँ और उनको फरमाइश फोन इन प्रोग्राम वो कहते हैं कि होना चाहिए कि लिसनर्स की आवाज भी हम सुन सकते हैं और वो हमें बधाई दे रहे हैं। जी आपको भी ढेरों ढेरों बधाई क्योंकि आप जैसे श्रोता हैं देखिए रश्मि जी तभी तो हम हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और बिहार से हम जाते हैं अमृतसर की ओर, वहां से खजाना गेट से जुड़ चुके हैं प्रेम सागर शुभलता हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि हम 100 साल का इंतजार करें आकाशवाणी का और हमें FM गोल्ड बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी के FM गोल्ड से हमेशा जुड़े रहिए। और भी बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं, गौरी शंकर जी की मेल आ गई है नागलोई से, वो कह रहे हैं कि दोनों बेटियों को राम राम जी, राम राम जी, और कह रहे हैं कि 1964 से रेडियो घर पर आया, तब मैं करीब 6 साल का था और पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि उनके घर रेडियो आया है। हम पंजाब में रहते थे, आज भी मुझे वही शौक है रेडियो सुनने का, एक भी दिन अगर ना सुनो तो बेचैनी हो जाती है। इसमें ये फायदा है कि आदमी काम भी करता रहता है, सुनता भी रहता है और कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जी शुक्रिया गौरी शंकर जी, अगर आपका मेल नहीं आता तो हमें भी लगता है आज क्या बात है भाई, आपका मेल नहीं आया।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी मतलब ये जो मेल है, ये जो संदेश है, इनका सिलसिला तो चलता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि मेल आते रहेंगे, तो लेकिन अभी हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना?

0: तो आज हम बात करेंगे देश की उस ऊर्जा की जो हमारे वर्तमान को गति देती है और भविष्य को एक नई दिशा। जी हाँ, बात हमारी युवा पीढ़ी की। देश की युवा शक्ति आज कला, खेल, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। नई सोच, नए विचार और नई तकनीक के साथ युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, बदलती जीवन शैली ने युवाओं के सामने नए अवसर भी खोले हैं। आज घर बैठकर दुनिया भर की जानकारी हासिल की जा सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है, नई नई चीजें सीखी जा सकती हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। आज हम प्रतिभा वर्षा को ज्यादा बोल रहे हैं जी, और लेकिन हम ये कहेंगे कि संतुलन होना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर संतुलन होना चाहिए। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं ना, और इनका जो सही इस्तेमाल हमें सीखने, जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को सामने लाने का अवसर देता है। लेकिन साथ ही ये भी तो जरूरी है कि हम ऑनलाइन दुनिया के साथ अपनी वास्तविक जिंदगी को भी उतना ही समय दें।
1: क्यों? जी, खेल कूद हो, प्रकृति के बीच समय बिताना, किताबें पढ़ना, ये सब सकारात्मकता और खुशी ला सकती हैं और अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो हो ही रहे हैं बच्चे आजकल के। जिम हो, योग हो, खेल, डांस, साइकिलिंग या घर पर किया जाने वाला व्यायाम, ये बहुत सारे विकल्प हैं हमारे साथ।
0: बिल्कुल, और देखिए आपने एक्सरसाइज की बात की, साथ ही साथ संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है हमारी ऊर्जा और एकाग्रता के लिए। और व्यस्त जिंदगी में अपने खान पान का ध्यान रखें। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की देखिए अपनी गति, कार्य क्षमता और अपनी मंजिल होती है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना करें।
1: तो हम ये कहेंगे प्रतिभा की बदलती जीवन शैली को एक सकारात्मक दिशा दे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और जो युवा ऊर्जा जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगी उसको सही दिशा में जरूर इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल,
1: तभी तो हम कहेंगे ना कि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी घर। और रश्मि जी, आगे हम बढ़े से पहले एक मेल और पढ़ लें
1: जी,
0: है ना। ये मेल आया है योगराज सहगल जी का। वो कहते हैं कि पहले महिला जगत कार्यक्रम आता था और तब भी वो इस कार्यक्रम को सुनते थे, फिर उन्होंने लिखा है कि आधा आकाश हमारा कार्यक्रम के नाम से ये कार्यक्रम आने लगा, तो उसके भी ये रेगुलर श्रोता रहे और आजकल घर आंगन कहते हैं कि मैं सुनता हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि वो दृष्टि बाधित हैं और दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपके प्रोग्राम्स का।
1: हम समझ गए, क्योंकि आपने पूरा इतिहास जो महिला कार्यक्रम का था हमें याद दिला दिया, हमें सभी सुनने वालों को याद दिला दिया। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, महिला जगत के नाम से, फिर आधा आकाश हमारा और फिर घर आंगन। और उसके साथ घर आंगन के साथ एक और बात कि वो FM चैनल पर भी जुड़ा। देखिए कितने हमारे पुराने श्रोता हैं जो कि पूरी लॉयल्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा कर्तव्य बन जाता है इनके प्रति कि हम उनके लिए सही जानकारियां और सही मनोरंजन लेकर आएं और उनका लगातार ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी आपका जुड़े रहने के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए और ईमेल लिखते रहिए हमें। एक और ईमेल आ गई है हमारे पास। आप हैं राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा चौधरी हिसार से। वो कह रहे हैं श्रोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं रेडियो ने मुझे जीवन दिया है। श्रोता तथा प्रस्तुतकर्ता के साथ रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार है। भाई वाह, एक श्रोता का कर्तव्य है कि प्रोग्राम सुनकर उचित प्रतिक्रिया दे और प्रोग्राम की गुणवत्ता बढ़ाए, झूठी तारीफ ना करे। बिल्कुल सही बात, सिर्फ नाम शामिल करने के लिए। वाह, देखिए हमारे श्रोता जो है हमें सिखाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने श्रोताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद राजू ये आपका।
0: और
1: एक और मेल आ गई है।
0: हाँ जी
1: जी, उग्रसेन यादव जी की मेल है। राम राम कह रहे हैं जी, और कह रहे हैं वैसे रेडियो मैं 1985 से सुन रहा हूँ और समाचार ज़्यादा मैं सुनता था, पर फिर गानों का भी शौक मुझे लग गया और उर्दू फरमाइश जो है 10 से 11 बजे रात में और आज शहनाज जी पेश करती थी और आज भी मुझे याद है सुबह सयानी साहब की आवाज़ में भी वो सुना करते थे। उग्रसेन यादव जी नई दिल्ली से कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी उर्दू सर्विस है आकाशवाणी की, उसकी शायद आप याद कर रहे हैं। और शहनाज अख्तरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो विविध भारती से शहनाज अख्तरी जुड़ी रही हैं, अपने श्रोताओं के साथ थी और सारे कार्यक्रम याद कर रहे हैं श्रोता आज के दिन।
0: मतलब जो हमारे जो एंकर रहे हैं उनकी आवाज आज भी हमारे श्रोताओं के दिलों में ताजा बनी हुई है। क्यों
1: जी, बिल्कुल।
0: और अब आगे हम रुख करते हैं कार्यक्रम में
1: जी,
0: है ना। रश्मि जी देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना की आज हम बात करेंगे, जो कि दिल्ली सरकार की एक आर्थिक

0: कल्याणकारी योजना है और जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
1: और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जो इसकी पहली किश्त है वो 28 अगस्त 2026 को जारी किए जाने की तैयारी है। पात्रता की बात कर लेते हैं तो आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जिसकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम हो।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ जो भी महिला है, पात्र महिला है, वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और उनके पास स्थानीय मतदाता के रूप में वो पंजीकृत होनी चाहिए।
1: जी, आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न भरने वाले, सरकारी या संविदा कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक इस योजना के पात्र नहीं है और परिवार में सबसे बड़ी एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा और ये पैसे डिजिटली ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पैसे को खर्च करने के भी कुछ नियम तय किए गए हैं प्रतिभा,
0: और वो ये है कि जो पहला नियम है वो ये है कि आप 1000 रुपए आपके कार्ड में आएंगे और 1500 रुपए आपके रेकरिंग अकाउंट में डिपोजिट किए जाएंगे जो आपको इकट्ठे 3 साल बाद मिलेंगे ब्याज सहित। और दूसरा ये कि आप 2500 रुपए फिक्स डिपॉजिट में ले सकते हैं जिसे आपको 3 साल बाद ब्याज के साथ दिया जाएगा।
1: तो इस सभी जो जरूरी दस्तावेज हैं और आधार कार्ड जो है, दिल्ली के मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन, संस्तुति पत्र और बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, ये सारे दस्तावेज चाहिए। और इसके अलावा प्रतिभा,
0: इसके अलावा ये है कि अब आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है जो कि है दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑफिशियल पोर्टल, उस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और बहुत सारे आवेदन हो भी चुके हैं, तो आज ही खुद को रजिस्टर करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने एक गीत सुना, फिल्म थी दो रास्ते
1: जी। और आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, देखिए जब 40 के पार उम्र हो जाती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: है ना। हाँ। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं, ऊतकों और अस्थि से मिलकर बना हुआ है। शरीर के पास भी जो कहते हैं ना, थोड़ा टूट फूट होती रहती है, हमारी शरीर की कोशिकाएं बनती बिगड़ती रहती हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है कि एक समय के बाद शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है और शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसे में शरीर में प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों और हड्डियों की डेंसिटी यानी घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ सक्रिय रहना और स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है।
1: तो फिर ऐसे में क्या किया जाए भाई? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए। मांसपेशियों को क्षय होने से ये रोकती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली जो कसरत है यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं बिना किसी जिम के जाए और बिना किसी उपकरण के।
0: बिल्कुल।
1: कुर्सी की मदद से आप स्क्वैट कर सकते हैं, स्क्वैट माने घुटनों के जो बल हम बैठते हैं। हाँ। और दीवार के सहारे आप पुशअप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए काफ रेज भी कर सकते हैं, मजबूत दीवार को पकड़कर पंजों के बल ऊपर उठना और धीरे धीरे नीचे आए। इससे आपकी जो काफ मसल्स होंगी वो काफी मजबूत होंगी। और एक चीज और किया जा सकता है रश्मि
1: जी,
0: वो ये कि घर में पानी की 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल पानी से भर कर भी आप बाइसेप्स कर्ल, शोल्डर प्रेस या फ्रंट रेज जैसी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मसल्स को ताकत देंगी।
1: जी, शुरुआत जो करनी चाहिए वो हल्के वजन से करें और हर गतिविधि को धीरे और नियंत्रित तरीके से उठाएं। अगर आपको दर्द हो या असहजता महसूस हो तो फिर व्यायाम ना करें ऐसा वाला। और उसके बाद जो पानी की बोतल को उठाएं तो याद रखें पानी पीने के काम ही नहीं आता बल्कि आपके घर के आसान वर्कआउट का हिस्सा भी बन सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है कि अगर आप वजन उठाने वाले व्यायाम करते हैं तो हड्डियां तो मजबूत होती ही होती हैं, साथ ही जो फ्रैक्चर का खतरा है ना वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे बढ़ा हुआ वजन नियंत्रित होता है।
1: जी, ये बिल्कुल जोड़ों को भी सहारा देते हैं और दैनिक कार्य में आसानी होती है, गिरने और चोट लगने का जोखिम भी कम होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपकी भाई 40 पार कर चुके हैं या 40 के लेट 40s में हैं तो आज ही अपनी दैनिक दिनचर्या में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवश्य शामिल करें जो कि बढ़ती हुई जो उम्र है उसके दबाव और तनाव को कम करें।

0: मालूम नहीं है,
1: हमसे सुनो।
2: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी शागिर्द। और रश्मि जी, एक मेल और पढ़ देते हैं हम लोग, है ना। सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लोग लिख रहे हैं शांतिनगर सोनीपत से। और उन्होंने देखिए रेडियो को कितने अच्छे से डिफाइन किया है कि सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन, है ना। और वो कहते हैं कि अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए विविध भारती दिल्ली के कार्यक्रम संगम हम सफर में वो पोस्ट कार्ड भेजते थे, और आज भी मुंबई केंद्र पर कार्यक्रम मन चाहे गीत में वो अपने फरमाइशें जो है वो भेजते हैं, और वो हमें आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं
3: जी। और एक और मेल आ गई है हमारे पास।

0: सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कह रही हैं कि रेडियो जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और मोबाइल और रेडियो में फ़र्क ये है कि भाई मोबाइल को तो चार्ज करना पड़ता है, पर रेडियो को तो बस हम लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेडियो में जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो हीरो होता है वो हमेशा जो है हैंडसम होता है, ऐसा वो लिख रही हैं। और इसके अलावा राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से। वो कह रहे हैं रेडियो की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि घर में जब काम ज़्यादा होता है और काम करने का मन नहीं होता है, कोई कहता है काम करो तो मैं कह देता हूँ भाई मैं रेडियो में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम सुन रहा हूँ। भाई वाह क्या बात है, कहते गाने इतने अच्छे बजते हैं कि काम करने का मन नहीं करता। भाई ये तो बात सही नहीं, गाने आप सुनते रहिए और साथ में जो घर के ज़रूरी काम है वो करते रहिए।
1: बिल्कुल है ना।
0: और
1: और देखिए रश्मि जी, अब आगे बढ़ते हैं। बात महिलाओं की, महिलाएं आज सशक्त हैं और देखिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और आज महिलाएं नए आयाम गढ़ रही हैं। तो कभी कभी कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार द्वारा शी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, और जो ये जो पोर्टल है ये कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल मंच है।
0: अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सरकारी, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाएं इस पर शिकायत कर सकती हैं। और पोर्टल पर शिकायत एक पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज की जा सकती है, और यदि वो पीड़ित महिला स्वयं है तो वो अपना मूल विवरण जैसे उसकी कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर उसे लॉगिन करना होता है।
1: और देखिए शिकायत करने वाला जैसा कि बताया कि कोई और व्यक्ति भी कर सकता है उस महिला के बिहाफ पर, तो उसे भी अपना नाम, शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध और शिकायतकर्ता की ओर से अंडरटेकिंग के साथ साथ पीड़ित महिला और शिकायतकर्ता की कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
0: तो अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए, तो फिर इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी और ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।
1: और देखिए शिकायत जो है वो संबंधित आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को जांच के लिए सीधे भेज दी जाती है, और महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने और सुनिश्चित करने में ये मदद करता है कि उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा होगा।
0: तो इस अधिनियम के तहत जांच के लिए जो दिन है वो 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो हम तो ये कहेंगे अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, समझें और किसी भी परिस्थिति में सहायता लेने से ना हिचकें।

0: रश्मि जी, एक मेल और है इदरीस सैफी जी का, जो कह रहे हैं कि वो बचपन से रेडियो सुन रहे हैं
1: जी
0: और कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, और हम श्रोताओं को बता दें कि वो ये गाना सुन रहे हैं फिल्म खुशबू से, आवाज़ है आशा भोसले की। तो इस वादे के साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और दिन बहुत सारी जानकारियों के साथ। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जिसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडेम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1:10 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, आपके साथ है रजनी। आज बात एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित संगीतकार खयाम की। शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म नूरी के इस गीत से, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की।

18 फरवरी 1927 को पंजाब के रोहा शहर में जन्म हुआ मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का। उन्हें संगीत का शौक बचपन से ही था। बचपन में ही घर छोड़कर वो अपने चाचा के यहाँ दिल्ली चले आए और संगीतकार पंडित अमरनाथ से शास्त्रीय संगीत सीखने लगे।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज बात है संगीतकार खयाम की। शुरुआत में खयाम फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की तरफ हो गया और फिल्मों में काम पाने के लिए 16-17 बरस की उम्र में खयाम लाहौर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई पंजाबी संगीत निर्देशक बाबा चिश्ती से। खयाम ने चिश्ती की एक रचना उन्हें गा के सुनाई। बाबा चिश्ती उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खयाम को अपना असिस्टेंट बना लिया। उनके साथ 6 महीने काम करने के बाद खयाम लुधियाना आ गए। फिर क्या हुआ बताएंगे आपको अगले गीत के बाद, जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। फिल्म है त्रिशूल।

लुधियाना आने के बाद खयाम ने कुछ समय सेना में भी काम किया और फिर फिल्मों में काम करने का सपना लेकर वो मुंबई आ गए। 1948 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हीर रांझा। इसके संगीतकार थे शर्मा जी वर्मा जी। इस जोड़ी के एक संगीतकार थे रहमान वर्मा और दूसरे संगीतकार जो शर्मा जी के नाम से संगीत दे रहे थे वो दरअसल थे खयाम। इससे पहले 1947 की फिल्म रोमियो जूलियट में खयाम ने जोहरा बाई अंबाले वाली के साथ एक गीत भी गाया था। इसके बाद बीवी और प्यार की बातें जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, लेकिन 1953 में आई फुटपाथ से उन्हें पहचान मिली। इसी फिल्म से उन्होंने पहली बार खयाम के नाम से संगीत दिया। इसके बाद फिर सुबह होगी, लाला रुख और शोला और शबनम जैसी फिल्मों के गीत भी काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन 1964 में आई शगुन फिल्म के गीतों ने उन्हें बड़ी कामयाबी दी।

शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना जगजीत कौर की आवाज में, जगजीत कौर जो कि खयाम साहब की पत्नी थी। 70 और 80 का दशक खयाम के लिए सबसे कामयाब वक्त रहा। इस दौरान उनकी कभी कभी शंकर हुसैन, त्रिशूल, खानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, चंबल की कसम, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, बाजार और रजिया सुल्तान जैसी फिल्में आई। कभी कभी और उमराव जान के लिए खयाम ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता और उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगली आवाज आप सुनेंगे आशा भोसले की, फिल्म उमराव जान।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

वक्त हुआ है 1:38 और 12 सेकंड। कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार खयाम की। खयाम की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने गायिका जगजीत कौर से शादी की। अपने बेटे प्रदीप की मौत के बाद उन्होंने खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि जरूरतमंद कलाकारों और टेक्नीशियंस की मदद करता है, और इसके लिए उन्होंने

19 अगस्त 2019 को 92 बरस की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण खयाम का निधन हो गया। वो बीच हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका जो सुमधुर संगीत है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। खयाम ने हिंदी के अलावा कुछ पंजाबी फिल्मों में भी संगीत दिया था। मीना कुमारी की नज़मों की एल्बम आई राइट आई रिसाइट में भी खयाम का ही संगीत था। और आपको बता दें कि संगीत के साथ साथ खयाम शब्दों के जादूगर भी थे। उन्होंने कुछ गैर फिल्मी गीत लिखे भी थे और उन्हें धुनों में भी पिरोया था। फिलहाल आज का कलाकार बेमिसाल का आखिरी गीत फिल्म कभी कभी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

कभी कभी के इस गीत के साथ फिलहाल रजनी को इजाजत दीजिए, फिर कभी ऐसे ही और सुनहरे जो कलाकार हैं उनकी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल रजनी कलाकार बेमिसाल से इजाजत चाहती है, कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में दोतरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने की खातिर जापान के अपने हम मनसब शिंजीरो कोइजोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है। वजीर दाखला अमित शाह ने अहम बैन रियासती तनाज़ियात, सिक्योरिटी और तरक्याती मामलात पर तबादले ख्याल के लिए तमिलनाडु में 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज के चौथे दौर का आगाज हो रहा है। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मरतबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज शाम FIH हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हम मनसब शिंजीरो कोइजोमी ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। बातचीत के दौरान बहरी सलामती में इजाफा करने, मेक इन इंडिया दिफाई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक एतमाद को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों वजीरों ने बहरी सलामती से मुतालिक मुफाहमत के इकरारनामे पर दस्तखत किए। अपने इफ्तिताही कलिमात में जनाब सिंह ने जापान के कुमामोतो खित्ते में आए तबाहकुन जलजले में नुकसान पर सरकार और भारत के अवाम की हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जनाब कोइजोमी ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय बहरिया की जानिब से फराहम की गई इमदाद को सराहा। जनाब कोइजोमी ने कहा कि इससे इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात का इजहार होता है जिसमें दोनों ममालिक मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत के लिए एक खास मकाम है। मलापुरम के नज़दीक कुआवालम में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की ज़ेर सदारत 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग का आगाज हुआ जिसमें जनूबी रियासतों के रहनुमा और सीनियर अहदेदारान पैन रियासती तनाज़ियात, सिक्योरिटी और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कौमी अहमियत के हामिल वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल जारी है जिसमें तेज तर तहकीकात के लिए फास्ट ट्रैक खसूसी अदालतों के क़याम और ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ इस्मत दरी के मामलात के जल्द निपटारे समेत तालीम से मुतालिक मामलात भी शामिल हैं। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में हुआ। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मामलिकत जितिन प्रसाद ने शिरकत की। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है।

0: एसएमआर की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वज़ा किया गया, जिसकी नकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वॉन्ग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ. जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ. जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसलरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालकृष्णन के साथ शामिल हुए। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तामीर करदा 2,35,000 मकानात की चाबियां मुस्तफिदीन के सुपुर्द की। बापू सभानगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नौ मुंतखब मुस्तफिदीन को इजाजतनामे भी तकसीम किए।
1: बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी।
0: जनाब चौहान पटना के BAMETI में कृषि जन कल्याण संवाद में भी शिरकत करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ममलिकत हर्ष मल्होत्रा ने आज दिल्ली के काबीना वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के हमराह नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधे लगाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि जब से दिल्ली में BJP हुकूमत इख्तदार में आई है, तब से सभी शोबों में मुसलसल तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसमें माहौलियात का तहफ्फुज भी शामिल है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाब होगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इतिहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट यानी जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल करने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब सदारती इंतखाबात कराना जरूरी हो गया था। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत को लोगों पर मरकूज और इंसानियत पहले के जज्बे से तहरीक याफ्ता बनाने की खातिर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अंग्रेजी के एक रोजनामे में अपना मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि ब्रिक्स की भारत की सदारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए काम कर रही है जहां कुरे अर्ज को जामे और पायदार तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वजीर आजम थे। केरलम के सभी साहिली जिलों में आज शाम तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। साहिली इलाकों में पानी इकट्ठा होने से मुतालिक भी अलर्ट जारी किया गया है। बैडमिंटन में नई दिल्ली में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी BWF आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वें दर्जे की जोड़ी को शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगा। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जुनेद आरिफ और रॉय किंग का प्री क्वार्टर में सामना करेंगे।

फैयद छः की आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्पटलफिन के विगनियर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मंगल के रोज जनूबी अफ्रीका को 6-1 से हराने के बाद भारतीय खवातीन टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में दोतरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने की खातिर जापान के अपने हम मनसब शिंजीरू कोइज़ोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने अहम बैन रियासती तनाज़ियात सिक्योरिटी और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल के लिए तमिलनाडु में 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर हुआ। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मरतबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और आज शाम FIH हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए

0: बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्य विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक नया कलाकार जिसने एक जाने माने संगीतकार और गायक से कहा कि आप मेरे लिए गीत नहीं गाएंगे। क्या है ये सारा किस्सा, बताएंगे आपको बस थोड़ी सी देर में। संगीत.com आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, साथ में है रजनी।

ये गीत आपने सुना फिल्म आखिरी खत से और आवाज थी लता मंगेशकर की। आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। बात है 1968 की, जब कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में खामोशी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका संगीत हेमंत कुमार ने दिया था। सुबह सुबह किसी ने राजेश खन्ना के रूम का दरवाजा खटखटाया। सामने खड़े थे हेमंत कुमार। उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि राजेश, मैंने सुना है कि तुम अपने गीत में मेरी आवाज नहीं चाहते। राजेश खन्ना थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने शांत आवाज में कहा कि हेमंत दा, आपकी आवाज में तो ईश्वर का वास है, लेकिन जब मैंने इस गीत के बोल पढ़े तो मुझे लगा कि ये बोल किशोर कुमार की आवाज के लिए ही बने हैं। उधर हेमंत कुमार की भी महानता देखिए, उन्होंने ना तो इसे अपनी ईगो पर लिया और ना ही बुरा माना, बल्कि उन्होंने राजेश खन्ना की कलात्मक समझ का सम्मान किया। उन्होंने खुद किशोर कुमार को फोन किया और ये गीत गाने की रिक्वेस्ट की। तो चलिए अब आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसके पीछे का ये सारा किस्सा आपने सुना।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

sagini.com जारी है इस छोटी सी ब्रेक के बाद आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं साल 1975 का। SD बर्मन के घर पर मिली फिल्म के गानों की रिहर्सल चल रही थी। अचानक बर्मनदा को घबराहट हुई और वो फर्श पर गिर पड़े। लेकिन बर्मनदा की जिद थी कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मेरी रिकॉर्डिंग है। किशोर कुमार वहीं पर थे। सारे सिचुएशन देखकर किशोर कुमार ने उनसे कहा कि दादा मेरे गले में बहुत खराश है, मुझसे कल गाया नहीं जाएगा। अपने चहेते किशोर कुमार की ये बात सुनकर बर्मनदा अस्पताल जाने के लिए मान गए। स्ट्रेचर पर जाते जाते बर्मनदा ने किशोर कुमार की तरफ देखा और कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए। अगले दिन किशोर कुमार माइक के सामने खड़े थे और कानों में बर्मनदा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपना पूरा दर्द इस गाने में उड़ेल दिया।

और अब बात करते हैं उस गायक की जिसके लिए एक संगीतकार ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। बात है 1978 की, जब फिल्म सावन को आने दो के गीतों की रिकॉर्डिंग की तैयारी चल रही थी। संगीतकार राजकमल ने ताराचंद बड़जात्या को एक धुन सुनाई जो कि बड़जात्या जी को बहुत पसंद आई। वो चाहते थे कि इस धुन को कोई बड़ा सिंगर गाए, लेकिन राजकमल इसके लिए एक नए सिंगर को लेना चाहते थे। ताराचंद बड़जात्या अपनी इस फिल्म के गीतों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन राजकमल भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिरकार राजकमल की ही बात मानी गई और इस गीत को आवाज़ दी उस समय के उभरते हुए गायक यशुदास ने। हालांकि इससे पहले यशुदास चितचोर के गीत गा चुके थे और बहुत पॉपुलर भी हुए थे इसके गीत, लेकिन ये जो गीत जिसकी बात हम कर रहे हैं सावन को आने दो फिल्म के इस गीत की, इसमें काफ़ी खाटे शब्द थे, मतलब काफ़ी देसी स्वरों में गाए जाने वाला एक गीत था। तो इसीलिए ताराचंद बड़जात्या को थोड़ा डाउट था कि यशुदास ये अच्छे से गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे, लेकिन यशुदास ने इतनी खूबसूरती से ये गीत गाया कि बस सुनने वालों के दिल में बस गया हमेशा हमेशा के लिए।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अगस्त का महीना शुरू होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। देखिए अभी अभी तीज गई, स्वतंत्रता दिवस अभी हमने मनाया और कुछ दिनों में रक्षाबंधन आएगा और फिर जन्माष्टमी का पावन त्यौहार भी तो आने वाला है। इस त्यौहार से जुड़ा एक किस्सा आपको बताती हूँ। एक दिन शम्मी कपूर, मनमोहन देसाई और संगीतकार आनंद जी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में बज रही दही हांडी की एक धुन शम्मी कपूर के कानों में पड़ी। शम्मी कपूर ने कहा कि भाई मुझे अपनी फिल्म ब्लफ मास्टर में ऐसा ही एक गीत चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि हांडी फोड़ने के लिए वो खुद ही ऊपर चढ़ेंगे। अब ये बात सुनकर मनमोहन देसाई बिल्कुल टेंशन में आ गए, क्योंकि इन दोनों आजकल की तरह जो सेफ्टी डिवाइस हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत समझाया शम्मी कपूर को कि नहीं, गाना तो हम रख लेंगे लेकिन आप ऐसे ऊपर नहीं चढ़ेंगे हांडी फोड़ने के लिए। लेकिन शम्मी कपूर भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आखिरकार शम्मी कपूर की जिद पूरी हुई और ये जो अमर गीत है इसकी रचना हुई, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

गोविंदा आला की इस धुन के साथ रजनी को संगीत.com से इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में जारी है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमे ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। जुलाई में जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण छंद के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का मुद्दा है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। कॉलेजों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जारी पहले के परिपत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कॉलेजों को जारी किया गया पिछला आदेश वापस ले लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। बापू सभागार में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने नवचयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। मंत्रियों ने डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय योग को और मजबूत करने पर चर्चा की। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान

मतदान हो रहा है। जातीय संसद में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:11 और पूरे 2 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और आज आपके साथ मैं सीमा वर्मा। आपका और हमारा नाता काफ़ी पुराना है और इसे और मजबूत करने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा, किस पर भला, 9868886875। मन भावन प्रोग्राम शुरू होता है, पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए।

आज़ादी पंछियों को भी चाहिए, आज़ादी इंसानों को भी चाहिए, यानी हर किसी को आज़ादी बहुत प्रिय है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपना राष्ट्र पर्व मनाया, हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम भली भांति जानते हैं कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं। अच्छा, जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना साथियों, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लता जी की आवाज़ सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि पता है हमको अपनी तारीफ़ भी करना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर बिल्कुल बेबाक तरीके से किस तरह से लता जी गा रही हैं कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। यानी जब दिल खुश होता है तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं और ख़ुद के लिए समय निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अपनी दोस्त सीमा की ये हिदायत आप ले लें कि आप चाहे कितना भी काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन थोड़ा सा समय चुरा कर अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब शुरू होते हैं जी आपके संदेशे, लेकिन उससे पहले ये जादुई नंबर देख लें आप, 9868886853। इस पर आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और हम आपका व्हाट्सएप मैसेज कैसे लेंगे, हम आपका व्हाट्सएप मैसेज ऐसे लेंगे। पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू जी हैं और लक्ष्य मल्होत्रा इनके साथ, इनकी बिटिया कोयल मल्होत्रा हैं और पापा जी हैं इनके नानक चंद मल्होत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का जी हैं, कोयल सिक्का हैं और डुगू भाविक सिक्का भी हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, पूरा का पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत शुक्रिया। एक और गीत की फरमाइश आई है, कहाँ से आई है जी, इंदिरा नगर भंवरपुर से आई है ये, और राधे श्याम देवगन हैं इनके साथ, चंपा देवगन हैं, नेहा हैं, राजू हैं, जगदीश देवगन हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगला संदेशा उत्तर प्रदेश से है जी, आफ्ताब अंसारी हैं, रियाज अंसारी हैं, मोहम्मद कैफ साहब हैं और अनवर मास्टर हैं, लुबना अंसारी हैं और आलिया अंसारी हैं। अगली मैसेज की तरफ मैं अगर देखती हूँ तो यहाँ पर सुदर्शन मुखी साहब, अनीता मुखी हैं इनके साथ, सिमरन मुखी हैं और इन्होंने हमें संदेशा भेजा है शांतिनगर सोनीपत से। तो संदेश से तो मैं बहुत सारे पढ़ती चली जा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बातों बातों में दिलकश दखलंदाजी गीतों की होती रहे तो अच्छा है। तो अब एक आखिरी संदेशा, उसके बाद फिर एक बहुत खूबसूरत गीत आप तक मैं ज़रूर पहुंचाने वाली हूँ। ये संदेशा आया है जी हमें मयूर विहार से, भेजने वाले हैं जोरावर चुगानी जी, मंजू चुगानी इनकी धर्मपत्नी और इनकी दो प्यारे प्यारे बच्चे बरखा और गोविंद। जोरावर जी लिखते हैं कि अभी हाल फिलहाल बिटिया की शादी की है और बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि बेटियों का पिताजी से काफ़ी गहरा संबंध होता है, उसी तरह जो बेटे होते हैं वो माँ से काफ़ी जुड़े होते हैं। अब ये मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है, हो सकता है कि आपका कुछ और मानना हो, लेकिन सारी बातों की एक बात जो सोलह आने सच है वो ये है साहब कि माँ बाप जो होते हैं वो हमें बहुत अजीज़ और बहुत प्यारे होते हैं। एक खूबसूरत सी बात है कि माँ बाप की चमड़ी ने धूल धूप खाई है, माँ बाप की चमड़ी ने धूल धूप खाई है, तब जाकर मेरे किरदार में ऐसी

0: मुझे कभी कभी बहुत बहुत बहुत हैरानी होती है ये सोचकर कि रफ़ी साहब को हमसे बिछड़े हुए कई कई साल हो गए। देखिए 1980 में वो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, सोचिए ज़रा। और आज की तारीख में 2026 चल रहा है, हम उनके जब जब गाने सुनते हैं, जो जो गाने सुनते हैं, हमें वो गीत हैरान कर देता है। इस गीत में आपने महसूस किया होगा रफ़ी साहब का अंदाज़े बयां, क्या बात है, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं उन्होंने। कोई भी बता सकता है कि भाई इससे बढ़िया एक्सप्रेशन और कहीं से नहीं आ सकता है। तो रफ़ी साहब को हम प्रणाम करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। 9868868753 ये वो जादुई नंबर है साहब, आपने हमें मैसेज करना है और हमने बड़े प्यार से आपका मैसेज लेना है। लेकिन फ़िलहाल बस थोड़ी देर के लिए जाना है और फिर लौट कर आना है, और इस थोड़ी देर में आपने बहुत कुछ खास सुनना है।
1: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आज मैं सीमा वर्मा, कार्यक्रम मन भावन है और जो मन को भाता है वही जुबां पर आता है, इसीलिए आप हमें अपनी पसंद के गीत भेज रहे हैं 9868886873 पर। और ये जो हमारे पास संदेश आया है ये किसका आया है जी? ये आया है बिहार से, हमें संदेशा भेजा है मुकेश साहब हैं, जतिन हैं, अनाया हैं, ममता हैं, पूनम हैं, साकिब हैं और सुमन हैं। और आपने सरगम फिल्म के गीत की फरमाइश की है, बिल्कुल जी आपका गीत मैंने कंप्यूटर महाराज को कह दिया है कि बिल्कुल तैयार रखिए, बस हम बजाने ही वाले हैं आपका गीत। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल हैं। और इसके साथ साथ अगला संदेशा भी हम ले लेते हैं जी। नमस्कार, ये किसने लिखा है? सत श्री अकाल, आपने लिखा है और आपने गाने की फरमाइश के साथ साथ जमशेदपुर से अपना नाम लिखा है। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। देखिए, आपके संदेशे आते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक तरफ हमें एक हल्का सा खौफ भी होता है कहीं आप नाराज़ ना हो जाएँ, क्योंकि यही बात होती है कि सबके संदेशे पढ़ नहीं पाते हैं और फिर आप नाराज़ हो जाते हैं। आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से हमारे पास ये किसका संदेशा आया है जी? किशन वंजानी साहब हैं, आप कुछ टाइप कर रहे थे, एकदम टाइप आपने बंद कर दिया क्योंकि आपका नाम आपने सुन लिया। नीलम है, स्वाति हैं और किशु हैं, तो आपने आनंद विहार से संदेशा भेजा, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और हरजिंदर सिंह भाटिया जी, मैंने आपका संदेशा तो ले ही लिया है, और इसी तरह आप हमें अपने संदेशे भेजते रहिए। यहाँ पर एक कॉल मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिम्पा हैं, कपिल छिम्पा हैं और साथ में ईशान है और पूजा परिहार हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह हैं, राजदीप हैं और गुरनूर हैं, इनके साथ गुरलाल हैं और अविराज सिंह हैं। और आपने हमें कहाँ से संदेशा भेजा है? गांव लोहागढ़ से आपने संदेशा भेजा है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे नाम अब मैंने ले लिए हैं, और जो मैंने प्रॉमिस किया था पहले संदेशे में, तो वो गीत जो है वो कंप्यूटर साहब ने निकाल के रखा हुआ है। आइए इस गीत को सुनते हैं।

एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: तीन बजकर 32:55 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज मनभावन प्रोग्राम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा और मेरे साथ तो आप सब हैं ही। किस नंबर की बदौलत है 9868 68753, जिसमें आप मुझे अपनी फरमाइश भेज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आपकी फरमाइशें मैं आप तक, आपके अपनों तक ज़रूर पहुंचाऊं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिदान खुराना है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसके साथ साथ एक संदेशा और लेना है मैंने, जिसमें हमें लिखा है, फिल्म का नाम भी लिख दिया, सब कुछ है जी। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा संदेशा कभी नहीं पढ़ती हैं। और अच्छा जी, आपका संदेशा कभी नहीं पढ़ते हैं, मैं तो, आपने इतना कुछ लिख दिया है, मैं आपका नाम ही ढूंढती रह गई हूँ। नांगलोई से गौरी शंकर जी हैं आप, तो अब अगर आपके, आपका संदेशा मैंने पढ़ दिया और अगर अब आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, ये हमें लिखते हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। और अगला संदेशा हमारे पास आया है, प्रणाम किसने लिखा है और किसने लिखा है जी, वही मैं कहती हूँ कि नाम अगर आप एक के नीचे एक लिख दें तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। स्वामी अनिल त्यागी हैं, प्रकाश गोगिया हैं, भगवती जी हैं इनके सार, अनीता वर्मा हैं और नन्हे पहलवान और प्रकाश चंद्र बाजार सीताराम दिल्ली से आपने संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक और संदेशा आया है कोलगांव से, और ये किसने भेजा है जी, ये भेजा है पंडू चंद ने, उषा हैं इनके साथ।

रानी हैं और प्रतीक्षा हैं, अभिषेक हैं, सार्थक हैं, प्रथमेश हैं, संतोष चंदन हैं और पंडुरंग कुम्हार हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और एक संदेशा और ले लेती हूँ, फिर गीत जो है वो तो मैंने आप तक पहुँचाना ही है। एक संदेशा और लेना है जी, बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप कहेंगे जो कहती हैं वो करती नहीं हैं। तो अब ये आया है जी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, आपने तो हमें मैसेज कर दिया है, बार बार आप मैसेज ना करें, थोड़ी सी फिर बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं। रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये फिल्म का नाम भी लिख दिया, थैंक यू मैम भी लिख दिया, मैं नाम ही देख रही हूँ आपका, माई सेल्फ शंकर फ्रॉम द्वारका जी, करोकोला द्वारका से आपने संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। शमशुर कमर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं, अदनान खान हैं और फैज़ान हैं, अनु खान हैं इनके साथ, उस्मान अंसारी हैं और कलीम अंसारी हैं। आपने कंच डुंडवारा से हमें ये संदेशा भेजा है, आपके संदेशे के लिए बहुत शुक्रिया जी। और दिलावर खान साहब हैं, हसीना बानो हैं, एलिजिया नवाब हैं और लाडू, ये आपने कहाँ से भेजा है, पश्चिम विहार से आपने ये संदेशा भेजा है। और अब यहाँ पर संदेशों को पढ़ते हुए मैं अब हल्का सा विराम लगाती हूँ और एक गीत की फरमाइश की है, अग्रसेन यादव जी हैं, शकुंतला यादव हैं और गरिमा हैं, जिस गीत की इन्होंने फरमाइश की है, बिल्कुल सेट है जी कंप्यूटर में, लीजिए आपका गीत और हम सबका गीत।

0: की ना जाने तुम कब आओगे।
1: ये इंतजार भी बहुत अजीब शय है साहब, इंतज़ार करते हुए दिल की धड़कन जो है वो दोगुनी हो जाती है, और इंतज़ार का फल जब हमें प्राप्त होता है, यानी जिसका इंतज़ार है वो जब हमारी आंखों के आगे आता है, तब कहीं जाकर दिल को राहत मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंतज़ार अंतहीन हो जाता है और बस इंतज़ार इंतज़ार ही रहता है। बहरहाल ये जीवन है साहब, और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली इंसान और असली धड़कता दिल वो है जो हिम्मत ना हारे और आगे की ओर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और मैं भी बढ़ रही हूँ आगे की ओर। 9868886873 है साहब वो जादुई नंबर जिस पर आपको हमें मैसेज करना है, और एक के बाद एक आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जिनके मैसेज लिए जाते हैं, और जो जिनके छूट जाते हैं वो भी गलती से छूट जाते हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मेरी कोशिश है आपको नाराज़ ना करूं, इसीलिए अगला संदेशा ले लेती हूं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे पास अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हैं जी। और अगला संदेशा किसका है? कृष्ण मेहरा साहब हैं, ये कोमल हैं, इनके साथ किरण हैं, कपिल मेहरा हैं और कुणाल मेहरा हैं। और लास्ट में इन्होंने लिखा है, नमस्ते जी, और मैं यही देख रही हूँ कि कहाँ से आपने भेजा है। आपने भिवानी से हमें संदेशा भेजा है। ये किसका संदेशा है जी? सीमा वर्मा जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते कर रही हूँ मैं। कैलाश नगर गाज़ियाबाद से आपसे छोटी सी गुजारिश है। कौन सी गुजारिश है जी आपकी? बिल्कुल, यहाँ पर किसने ये मैसेज भेजा है? मैं ब्रह्म सिंह कैलाश नगर से। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और मोहम्मद यासीन हाशमी साहब हैं, इनके साथ नजमा बेगम हाशमी हैं, मोहम्मद तौसीफ़ इनके साथ हैं, मोहम्मद तैमूर हैं और मोहम्मद गलीम अंसारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। इसी के साथ साथ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप हमारा नाम शामिल नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मैंने कैसे फिर आपका नाम अब मैं लेने जा रही हूँ, आप तो नाराज़ हो गए। गांव घिंडोटरी नई दिल्ली से साबिर हुसैन साहब हैं। आप ऐसे नाराज़ ना होया करें, छोटी छोटी बातों में नाराज़ नहीं होते हैं, और जहाँ दोस्ती होती है वहाँ नाराज़गी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और अगर होती भी है तो ऊपर ऊपर की तरफ से नाराज़गी होती है ना। चलिए, अब मैंने बहुत देर तक नाम ले लिए हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे एक गीत सुनवाना चाहिए। जो गीत बिल्कुल रेडी है जी, और ये गीत किसी एक की फरमाइश का है जो हम सबकी फरमाइश बन जाएगी कुछ ही देर में। मयूर विहार फेज 3 से सनी साहब हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको सनी जी। भोपाल से मोहम्मद आदिब साहब हैं, आपको भी हमारा यानी FM गोल्ड का नमस्कार।

एफएम गोल्ड के साथ आप हैं और आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और मेरे साथ वो जादुई नंबर है जो मैंने आप तक पहुंचाती आई हूं अभी तक, और एक बार और पहुंचाना है। वक्त ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, और जब ऐसा वक्त हो जाता है तो मुझे बताने में भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि अब हमारा मैसेज कैसे लिया जाएगा। पता है कैसे लिया जाएगा? ऐसे लिया जाएगा 9868686753, इस पर आप अपना मैसेज कीजिए। और अभी हमारे पास इतना समय तो है कि हम कुछ मैसेजेस आपके बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं जी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी हैं हमारे साथ, और इनके साथ बिमला अनेजा हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं एक और संदेशा हमारे पास आया है, ये भी चंडीगढ़ से ही है, और शेफाली हैं ये, शेफी हैं, इनके साथ डेविस हैं, बिमला हैं और सतीश अनेजा जी। नाम आपने, अब पता नहीं आप वही वाले सतीश अनेजा हैं या नहीं, हमको जैसे जैसे मैसेज आते रहते हैं हम बस पढ़ते रहते हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे पास प्रकाश वर्मा है, प्रिंस वर्मा है, निखिल वर्मा है और यशस्वी वर्मा है, जिन्होंने हमें संदेशा भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और हमारे पास कानपुर से ये संदेशा है, श्रीमती सुजाता चौरसिया हैं, इनके साथ पंकज चौरसिया हैं, पीहू हैं और दिया चौरसिया हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं आप सबसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपने अपना मैसेज हम तक पहुंचा दिया है, हमने नाम ले लिया है आपका, तो कृपया बार बार आप मैसेज ना करें, इससे वो लोग छूट जाते हैं साथियों जिनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ एक बार आया होता है ना। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है, कितना मन करता है कि हमारा नाम भी एफएम गोल्ड पर आए, लग करता है कि नहीं। तो बस ऐसे ही आपसे गुजारिश है कि 9868686753 इस पर आप मैसेज ज़रूर करें, लेकिन अगर आपका मैसेज मैंने ले लिया है तो फिर दोबारा ना करें। फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे पास असलम मंसूरी साहब हैं, इनका संदेशा आया, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और यहाँ पर मेरठ से हमारे पास अनिल जैन, और जैन साहब हैं ये, संयम जैन हैं, इनके साथ मुस्कान जैन है और मास्टर जीवियम जैन है, आपके संदेशे के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और संदेशा हमारे पास आया है, और ये जी आया है

प्रीत विहार से। प्रीत विहार से फानिश पवार हैं जिन्होंने एक गीत की फरमाइश की है, और इसके साथ साथ इनके साथ इनकी धर्मपत्नी मनीषा है और एक बहुत प्यारी सी बच्ची है इनकी, इनका नाम है अनु श्रुति। अब इन तीनों ने एक गीत की फरमाइश की है, और मैं आपको बता दूं कि फानिश पवार साहब बहुत सुंदर गाते हैं और रफ़ी साहब के बड़े मुरीद हैं, बहुत पसंद करते हैं रफ़ी साहब को, और उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। आइए इस गीत को हम सब अपना गीत बनाते हैं, और बहुत खूबसूरत गीत इसे सु

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और ये साथियों जीवन की सच्चाई है। हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं भागते रहते हैं, और उम्र का एक मोड़ ऐसा आता है जब हमें सही मायने में ऐसा महसूस होता है कि हम क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, संजीदगी आगे बढ़ती है, संजीदगी हमारे जीवन में कदम रखती है, वैसे वैसे ज़िंदगी की समझ आती है और फिर हम ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आपके संदेशे हम तक पहुंच रहे हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए सीधे फटाफट नंबर 9868686853 आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मन भावन में, आपके साथ मैं सीमा वर्मा। मेरे साथ फिलहाल अलीगढ़ से कौन है, वरुण है जी, और एक गीत की फरमाइश की है आपने, देखते हैं आपके गीत का नंबर आता ही नहीं यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये हमने किसने लिखकर भेजा है जी, रोहिणी से हमें संजीव कुमार बंसल साहब ने लिखकर भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए, आपने किसी गीत की फरमाइश नहीं की है लेकिन आपने इतना सुंदर प्यारा सा आशीर्वाद हमें दिया है और हम खुले हाथों से इसे कबूल करते हैं। सीमा जी नमस्कार, और ये कौन है जी, मोरी गेट से ये हमारे एक साथी हैं, कन्हैया लाल हैं, और यहाँ पर इनके साथ कौन है भला, रानी है इनके साथ और आकाश कुमार हैं। वहीं राकेश जैन सरस्वती विहार पीतमपुरा से आपने संदेशा भेजा है।

जहाँ तक मुझे लगता है राकेश जी, सरस्वती विहार अलग है, पीतमपुरा अलग है, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है, आपने लिखा है तो मैंने ये पढ़ दिया आपका संदेशा, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और सावन का महीना बिल्कुल है यहाँ पर, लेकिन सावन के गीत तो हम सुनते हैं, फिलहाल आपकी फरमाइशों का ये दौर चल रहा है। और हमारे पास छत्तीसगढ़ से विवेक साहब का संदेशा आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। अब मुझे भी लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अलीपुर से हमारे पास मोनू पराशर साहब हैं, इनका संदेशा आया है। और हमारे पास किसका संदेशा आया है जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़ हैं, बेगम इमराना नाज हैं और राधा नामदेव हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत अब आपकी नज़र करते हैं, बहुत सुंदर गीत है, अपने टाइम का बहुत हिट गीत है, तो आइए अब इसे सुनते हैं और इसे समझते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आपसे नमस्ते तो मैंने इस गीत के बाद करना है।

इसी के साथ सीमा वर्मा को आज का मन भावन कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे। आप सुनते रहिए FM Gold 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमोमोतो में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना के लिए आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई की कोवलम में जारी है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए त्वरित विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति की वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद से पारित कानून का उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कहा है कि राज्य सरकार का विद्यार्थियों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। महाविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया गया। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधार कर इसे दोबारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी महाविद्यालयों को जारी किया गया पिछला आदेश वापस ले लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। श्री चौहान ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य तथा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 साल में पहली बार इस पद के लिए मतदान हो रहा है। संसद के सदस्य देश के 23वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। इस पद के लिए सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद मैदान में हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार के 3 घंटे के भीतर सामग्री हटाने के अनिवार्य नियम का पालन करने के लिए मेटा ने सामग्री अवरोधन को स्वचालित कर दिया है और दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामग्री अवरोधन में भारी वृद्धि हुई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस लेख को भ्रामक बताया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने जापान की रिन एवानागा और नाकाशिनी की जोड़ी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। साथियों, आइए आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। साथियों, आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में शाम को 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपकी मुलाकात एक बार फिर मेरे साथ गाते गुनगुनाते में रहेगी, जिसमें 80 और 90 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत हम आप तक पहुंचाएंगे। साढ़े 5:00 का वक्त आपके मनपसंद कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट डायरी का रहेगा। शाम 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर कार्यक्रम विश्लेषण आप सुन सकते हैं। शाम 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। आगे की जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं। 1979 में ये फिल्म आई साथियों, नाम रहा आंगन की कली। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: घर खर्च के पैसे 2,000 जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए साथियों आपको बताते हैं उन कार्यक्रमों के बारे में जिनमें फिल्मी गीतों को आप एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं फिल्मी गीतों का। 7:25 पर शाम सांझ ढले सुनना ना भूलिएगा। आपके साथ विभा लक्ष्मी रहेंगी बहुत खूबसूरत गीतों के साथ और कुछ जानकारियों के साथ। वहीं 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम ज़रूर आप सुनिएगा। विभा के साथ एक बार फिर आप होंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि इसमें जो गीत हम आपकी नज़र करते हैं वो गीत फिल्मी गीत होते हैं और हम उनके शास्त्रीय अंग की बात करते हैं कि किस राग पर आधारित है और किस राग की खूबसूरती लिए वो गीत हम तक पहुँचा है। उसी तरह अगर हम रात 10:30 अपनी नज़र डालते हैं तो हर श्रृंगार कार्यक्रम आप सुनना ना भूलिएगा। इसमें आप रोमांटिक गीतों का लुत्फ उठा सकते हैं, साथ में आपके होंगे शमीम खान साहब। और इसके साथ साथ रात 11:40 पर गीत मेरे मन मीत मोहम्मद शमीम खान के साथ एक बार फिर आप होंगे। और ये थी जानकारी आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 की। साथियों आपको याद होगा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि 4:20 पर आप और हम मिलकर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सुनेंगे।

0: वो पर्सनल असिस्टेंट 3 और स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड पदों की संख्या 4। पद योग्यता के नियम, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट cic.gov.in। उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवश्यकता है एक जैव चिकित्सा अभियंता और भेषजज्ञ औषधि प्राप्ति की। भेषजज्ञ औषधि प्राप्ति की रिक्ति संख्या 3 है, जबकि जैव चिकित्सा अभियंता का 1 पद रिक्त है। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, आरक्षण, वेतनमान और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.upmsc.in। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में वित्तीय सलाहकार का 1 पद रिक्त है। पात्र उम्मीदवार वेतनमान, योग्यता, आरक्षण और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं NCDC की वेबसाइट www.ncdc.in। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद में रिक्त है सहयोगी सलाहकार वित्त एवं लेखा का 1 पद। योग्यता, अनुभव, मानदंड, वेतनमान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.birac.nic.in। रेल पहिया कारखाना यलहंग का बेंगलुरु के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती किए जाने वाले 15 पदों के लिए योग्य खिलाड़ियों से तय फॉर्मेट में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। खेल हैं बैडमिंटन पुरुष और महिला, टेबल टेनिस पुरुष और महिला, क्रिकेट पुरुष, हॉकी पुरुष, कबड्डी पुरुष तथा फुटबॉल पुरुष। जरूरी खेल मानकों और आवेदन के फॉर्म सहित विस्तृत अधिसूचना के लिए RWF की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.rwf.indianrailways.gov.in। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के क्षेत्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के निदेशालय में आवश्यकता है इन पदों को भरे जाने की। लेखाकार रिक्तियों की संख्या 3, अपर श्रेणी लिपिक रिक्तियों की संख्या 1। नियम, शर्तों, योग्यता, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थल आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rdsdeassam.dgt.gov.in। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में आवश्यकता है उपनिदेशक के 2 पदों को भरे जाने की। भर्ती की प्रक्रिया रहेगी सीधी भर्ती। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रतिष्ठान की वेबसाइट msrvvp.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज सुन रहे थे। और साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम परिक्रमा का।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: श्रोताओं, शाम का वक्त बहुत खास होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सूरज ढलता है तो मन में एक अलग सी खामोशी पर साथ ही सुकून भी आ जाता है। इसी वक्त हम अपनों को याद करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, और यही वो वक्त है जब हम आपके पास लेकर आते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। और रोजाना की

0: रहेगा। आज भी कार्यक्रम में होंगी वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और कुछ खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे। आज मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
1: हेलो सरफिरोजी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट सरफिरोजी। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. So there's a lot to talk about. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
0: भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
1: होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्स 31st सदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन कोवालम तमिलनाडु to discuss interstate disputes, security and development issues.
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श।
1: बांग्लादेश वोट्स फर्स्ट टाइम टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट टुडे आफ्टर गैप ऑफ 35 years।
0: और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Mosquito Day and India's coconut sector from the tree of life to global prominence. Well, Sarfirozi, it's August 20, and today we are talking about a tiny creature that can create a surprisingly big health problem, the mosquito.
0: बिल्कुल अभिषेक, आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि मच्छर सिर्फ हमारा खून चूसकर हमें परेशान नहीं करते, बल्कि ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका और येलो फीवर जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं।
1: And here's an interesting connection to India. On August 20th, we remember the groundbreaking work of Sir Ronald Ross, who in 1897 established that female Anopheles mosquitoes transmit malaria.
0: और ये खोज मेडिकल साइंस में अहम मोड़ साबित हुई, लेकिन एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मच्छर आज भी पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं।
1: Especially during the monsoon, one little container of stagnant water can become a breeding ground.
0: और यहाँ पर अपने श्रोताओं से एक छोटा सा सवाल कि जब वो मच्छरों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या बात उनके मन में आती है अभिषेक?
1: That's irritating buzz at night, that itchy bite or dengue and malaria. Whatever your answer, stay with us. We're going to talk about how mosquito-borne diseases spread, who is more vulnerable, and most importantly, what you can do to prevent mosquito bites.
0: तो चलिए सबसे बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मच्छर से फैलने वाली बीमारी एक ऐसा संक्रमण है जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, यानी मच्छर कैरियर का काम करते हैं। जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर का खून पीते हैं तो ये रोगाणु को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर किसी दूसरे इंसान को काटने पर उस रोगाणु को फैला देते हैं।
1: And there's an important detail here. Female mosquitoes are the ones that bite humans for blood meals, which they need to help develop the eggs. Which brings us to another question, Sarfirozi, for our listeners. Where do mosquitoes love to breed?
0: मेरे ख्याल से इसका जवाब है जो कि तय है कि मच्छर रुके हुए पानी में ही अंडे देते हैं। गमले, बाल्टियां, बेकार पड़े डिब्बे, कूलर, नालियां और पानी के छोटे छोटे गड्ढे भी मच्छरों के पनपने की जगह बनते हैं।
1: And during the monsoon, humid weather and accumulated water can make the problem worse.
0: बिल्कुल अभिषेक, और इसलिए मच्छरों पर काबू पाना सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारियों का काम नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने घर से और हमारे आस पड़ोस से भी।
1: So, Sarfirozi, now are mosquito-borne diseases equally dangerous for everyone?
0: बिल्कुल नहीं अभिषेक, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं मच्छरों से फैलने वाले कुछ संक्रमणों की वजह से होने वाली जटिलताओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं।
1: And pregnancy is especially important because some infections, such as Zika, can affect the developing baby.
0: बिल्कुल अभिषेक, और जो लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जमे हुए पानी, घनी वनस्पति या खराब ड्रेनेज वाले इलाकों में रहते हैं या उस तरफ यात्रा करते हैं, उन्हें इसके संपर्क में आने का ज्यादा खतरा हो सकता है।
1: So, Sarfirozi, if you are traveling, especially during mosquito season, don't assume that a few mosquito bites are harmless.
0: बिल्कुल अभिषेक, और हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी कहावत है कि prevention is better than cure. तो लक्षणों के दिखने का इंतजार करने से बेहतर है उस बीमारी से बचाव करना।
1: Use a suitable mosquito repellent cream or spray according to

0: the product directions. Long sleeves and long trousers can help reduce exposed skin.
1: अगर आपको अपने घर के बाहर पानी से भरी हुई कोई बाल्टी दिखती है तो उसका पानी खाली कर दें और बाल्टी को साफ करें. इसके अलावा जहां भी मुमकिन हो वहां मच्छर रोधी जाली यानी मॉस्किटो स्क्रीन्स जरूर लगाएं.
0: A mosquito net can provide another layer of protection, particularly while sleeping. There's another message we really want listeners to remember today. Don't ignore persistent or concerning symptoms after mosquito exposure.
1: इसके लक्षणों की बात करें तो मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियां बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द या कमजोरी जैसे लक्षणों से शुरू हो सकती हैं, लेकिन कुछ संक्रमण गंभीर भी हो सकते हैं.
0: That's why early medical evaluation matters, particularly if fever is persistent, symptoms are worsening or there are warning signs such as unusual bleeding, severe weakness, breathing difficulty, confusion or other concerning changes.
1: और अभिषेक, एक सबसे जरूरी बात यह है कि AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को खुद डायग्नोस करने की कोशिश ना करें. डेंगू, मलेरिया और दूसरे इन्फेक्शन के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सही मेडिकल जांच और टेस्ट बहुत जरूरी है.
0: Exactly, सर फिरोजी, a fever may look ordinary at first, but the underlying cause matters.
1: तो याद रखिए, हर मच्छर खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें जागरूक, तैयार और सक्रिय रहने की जरूरत है.
0: Remove stagnant water, protect yourself from bites, keep your surroundings clean.
1: और अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो स्थिति के बिगड़ने का इंतजार करने की जगह तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. एक छोटा सा मच्छर सेहत से जुड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन बचाव के छोटे छोटे उपाय बड़ा फर्क भी ला सकते हैं.
0: सो स्टे इनफॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड एंड कीप योर सराउंडिंग्स मॉस्किटो फ्री. एंड नाउ वी मूव ऑन टू अ सेकंड डेडलाइन टॉपिक, दैट इज इंडियाज कोकोनट सेक्टर फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ टू ग्लोबल प्रोमिनेंस.
1: बिल्कुल अभिषेक, आज हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे करीब है. ऐसी चीज जिसे हम खाते पीते हैं, अपनी परंपराओं में इस्तेमाल करते हैं और रोजमर्रा की चीजों में भी ये पाया जाता है.
0: And I'm guessing our listeners have already figured it out, the coconut.
1: बिल्कुल अभिषेक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला ये नारियल सिर्फ खाने की चीज से कहीं ज्यादा है. भारत में ये लोगों की आजीविका का सहारा है, खेती को बढ़ावा देता है, एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान है इसका और संस्कृति से तो जुड़ा है ही.
0: इनफैक्ट सर फिरोजी, नियरली 30 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग अराउंड 10 मिलियन फार्मर्स डिपेंड ऑन द कोकोनट सेक्टर.
1: बिल्कुल अभिषेक, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि नारियल उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है.
0: सो टुडे सर फिरोजी, वी आर टेकिंग यू ऑन अ journey from the coconut tree in an Indian farmer's field to products reaching markets around the world. How many uses can you think of for a coconut? Coconut water, coconut milk.
1: इसके अलावा नारियल का तेल बनता है नारियल से, और साथ ही नारियल के खोल और छिलके से भी चीजें बनाई जाती हैं.
0: Exactly, that's versatility. That versatility is why coconut is often described as the Kalpa Vriksha, the tree that provides the necessities of life, and it has been woven into India's cultural and agricultural traditions for generations, isn't it, Sir Firoz?
1: बिल्कुल अभिषेक, भारत का नारियल की खेती से नाता लगभग 3000 साल पुराना है, और जब हम इसे कल्प वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है. नारियल से खाना, पेड़, रेशा, लकड़ी, ईंधन और कई तरह के उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है.
0: And what's interesting, Sir Firoz, is that India ranks first globally in coconut production and third in cultivation area. And here's something even more interesting for our listeners. Different states have different strengths. Kerala leads in cultivation area.
1: वहीं तमिल नाडु इसके उत्पादन में सबसे आगे है और आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है.
0: And that's a great example of how different regions contribute differently to one national agricultural story. And the sector is particularly important because coconut farming is predominantly carried out by small and marginal farmers.
1: तो अभिषेक, इसका मतलब ये है कि नारियल की वैल्यू चेन को मजबूत करने से ग्रामीण आजीविका को सीधे तौर पर मजबूत किया जा सकता है. भारत एक्टिवेटेड कार्बन नारियल का तेल, ताजा और फ्रोजन नारियल खोपरा और डेजिकेटेड नारियल जैसे उत्पादों का भी निर्यात करता है.
0: And among this, Sir Firozi, activated carbon has consistently been one of the major export products. There was a time when the West Asia was a major destination for Indian coconut products.
1: लेकिन अभिषेक, अब सूरत बदल चुकी है. आज भारत के बाजार की पहुंच काफी बढ़ गई है. भारतीय नारियल उत्पादों के लिए यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बाजार मिल रहे हैं.
0: And over the past 5 years, Sir Firozi, countries including the USA, UAE, Sri Lanka, Germany, Russia, Turkey, Belgium, the UK, the Netherlands have emerged as important trading partners.
1: बिल्कुल अभिषेक, और श्रोताओं अगली बार जब आप विदेश में किसी सुपरमार्केट की शेल्फ पर नारियल का कोई प्रोडक्ट देखें तो याद रखिए कि ये किसानों, प्रोसेसर्स, वर्कर्स, एक्सपोर्टर्स और बिजनेस से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को रिप्रेजेंट करता है.
0: एंड द बिग चेंज इन द कोकोनट सेक्टर सरफिरोज इज दैट वी आर नो लॉन्गर लुकिंग एट द कोकोनट ओनली एज अ रॉ एग्रीकल्चरल कमोडिटी. इंस्टेड ऑफ सिंपली सेलिंग कोकोनट्स, फार्मर्स एंड बिजनेसेस कैन बी पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम प्रोड्यूसिंग ऑयल्स, मिल्क, वाटर, एक्टिवेटेड कार्बन एंड अदर प्रोडक्ट्स.
1: इसके अलावा इससे अतिरिक्त आय, प्रोसेसिंग, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, और सरकार का सहयोग भी इसमें अहम भूमिका निभाता है.
0: Through initiatives involving the Coconut Development Board, efforts have been made to improve planting material, expand cultivation, rejuvenate aging plantations, and strengthen the skills and farm organizations. And during 2025-26, around 2,175 hectares were added under cultivation, while 1,672 hectares were covered under rejuvenation. And the Coconut Promotion Scheme introduced in the Union Budget 2026-27 aims to further strengthen sustainability, exports, and farmer incomes.
1: बिल्कुल अभिषेक, रसोई से लेकर कॉस्मेटिक्स तक और पारंपरिक इस्तेमाल से लेकर आधुनिक उद्योगों तक नारियल हमारी जिंदगी के कई पहलुओं का हिस्सा बन गया है. भारत के खेतों से लेकर दुनिया भर के बाजारों तक नारियल की कहानी किसानों, इनोवेशन, संस्कृति और अवसरों की कहानी है.
0: एंड सरफिरोजी, इट इज अ स्टोरी दैट बिगन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो बट कंटिन्यूज टू इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टू मॉडर्न प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट्स. And behind every coconut is a farmer whose livelihood is connected to this remarkable tree.
1: तो अगली बार जब आप नारियल के पेड़ को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ कोई एक फल नहीं है बल्कि आप भारत का कल्प वृक्ष देख रहे हैं, यानी जीवन का पेड़.
0: A tree rooted in tradition, supporting livelihoods and reaching the world.
1: श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और जानने का कि आज हमारे संवाददाताओं के पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है. सबसे पहले चल रहे हैं गोवा. गोवा में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू की गई है. कुजरा स्थित डीसीटी के श्रीनिवासा सिनाई डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें नशा मुक्त भारत के संकल्प से जोड़ना है. ये प्रदर्शनी कल तक चलेगी. इस पर हमारे संवाददाता विशेष जानकारी दे रहे हैं.
2: केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. दो दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में नशे के दुष्प्रभावों, बचाव और नशा मुक्त जीवन से जुड़ी जानकारी मल्टीमीडिया माध्यमों से प्रस्तुत की जा रही है. उद्घाटन के अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया. सूचना सामग्री, दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्ति के अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है. श्रीपद नाइक ने इस अवसर पर कहा कि
3: भारत युवा देश है. 64% युवा आज भारत में है. आगे का जो प्रशासन हो, आगे का देश चलाने जाए, जो अच्छा काम हो वो युवा पीढ़ी करेगी. उसको सशक्त करना और इस व्यसनों से बाहर निकलना इस अभियान का काम है. और ये अभियान अच्छी तरह मेरे ख्याल से 4 साल ऐसा ही चलेगा और मुझे आशा है पूरे भारत में कोई भी उस नशे में फंसे हो उसका बाहर करने का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास.
2: डिम्पू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कामन ने बताया कि संस्थान की ओर से 6 अगस्त से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने सीबीसी गोवा के द्वारा इस पहल को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए की गए सहयोग की सराहना की. दो दिवसीय यह प्रदर्शनी कल तक जारी रहेगी. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी.
0: A book fair has been organized in Ladakh from August 14 to August 22nd. This event has been organized by the National Book Trust in collaboration with the administration of the Union Territory of Ladakh and the Indian Army. We have more from a correspondent.
4: लद्दाख पुस्तक मेले में लगभग 75 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में हर तरह की किताबें हर भाषा में, विशेषकर लद्दाखी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में किताबें देखने को मिल रही है। हर रोज बड़ी संख्या में सभी उम्र के लोग, खासकर स्कूली बच्चे इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख पुस्तक मेले के दौरान हर रोज लद्दाख के विद्वानों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में लद्दाख कल्चर फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर सोनम अंगचुक ने हमें बताया।
5: तो लद्दाख में यहाँ 14 से 22 अगस्त तक लद्दाख बुक फेस्टिवल चल रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें लद्दाख कल्चर फोरम को भी यहाँ पे स्टॉल्स दिया है, जहाँ पे यहाँ के राइटर्स, यहाँ के लोगों

0: ने जो लिखा है वो सब बुक्स वहाँ स्टोर में अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ हर दिन यहाँ पे 1 घंटा लद्दाख कल्चर फोरम के लिए स्लॉट दिया हुआ है। तो उसमें यहाँ का जितना भी जो विद्वान है, यहाँ के ऑथर्स है, तो सब यहाँ पे आके 1 घंटे का टॉक हो रहा है। तो उसमें स्कूल के बच्चे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहा है।
1: इस पुस्तक मेले में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिकेशन विभाग का स्टॉल भी लगाया गया है। इस बारे में पब्लिकेशन विभाग के उप निदेशक जसमीत कौर ने हमें बताया।
2: हमने लद्दाख बुक फेयर में हमारी स्टॉल लगाई है। हमारा यहाँ स्टॉल लगाने का एक मकसद है कि लोगों तक अफोर्डेबल किताबें एक्सेसिबल कराया जाए। इसके अलावा हम लिटरेचर से लेकर कल्चरल एस्पेक्ट से लेकर भी किताबें निकालते हैं। हमने बुद्धिज्म यहाँ किताबें प्रकाशित की हुई हैं। उसके अलावा कंटेंट जैसे महात्मा गांधी जी पर हो गया और वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस हो गई, उन पर ऐसे किताबें हैं। तो हमारा यही मकसद रहता है कि वेरिड कंटेंट हो, कल्चरली रिच कंटेंट हो, जिससे हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन।
1: इस लद्दाख पुस्तक मेले के माध्यम से हर किसी को, विशेषकर बच्चों को, किताबें पढ़ने के लिए आकर्षित किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बच्चों में पढ़ने की आदत में बदलाव आए। परिक्रमा के लिए लेसे में दिस्कित डोलमा।
3: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ग्रुप सी के अन्य पदों पर 5% तथा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
4: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था अगले माह 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। 20% आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वन्य जीव गार्ड तथा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों पर भर्ती में लागू होगा। इन पदों पर वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2%, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 3%, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 3%, पिछड़ा वर्ग बी के लिए 2%, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 2% तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए 9% आरक्षण निर्धारित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
3: आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1992 में नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और इस अवसर पर आज देश के विभिन्न राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में, नेपाली भाषा मान्यता दिवस हर्षोल्लास और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है।
5: पश्चिम बंगाल के नेपाली भाषी गोरखा बहुल क्षेत्र, दार्जिलिंग पहाड़, तराई व डुवर्स में नेपाली भाषा मान्यता दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेपाली भाषियों को बधाई व शुभकामना देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भाषा अनेक लेकिन देश एक की अटूट भावना से हम सब बंधे हैं। देश की प्रगति में सभी को शामिल होने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। राज्य के पर्यटन मंत्री डॉक्टर शंकर घोष, वित्त राज्य मंत्री आनंद बर्मन, पार्वत्य मामला राज्य मंत्री विशाल लामा सहित पूर्व विदेश सचिव व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला, सांसद मनोज दिग्गा, राजू बिष्ट, स्थानीय नेता विमल गुरुंग, मन घिसिंग, अजय एडवर्ड, विधायक भरत छेत्री, नोमन राय, सोनम लामा सहित अनेक नेताओं उन्हें बधाई व शुभकामना देते हुए नेपाली भाषा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अवसर पर दार्जिलिंग, कर्सियंग, मिरिक, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, तराई व डुवर्स क्षेत्र सहित सिक्किम व असम में शोभा यात्राएं निकाली गई तथा विविध सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्मरण रहे 20 अगस्त 1992 में भारत की संसद ने लंबी बहस के बाद नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को पारित किया था। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्सियंग।
3: तो अभिषेक, अब अपने श्रोताओं को खेल के मैदान की भी हलचल दे देते हैं।
6: यस, एंड वी स्टार्ट अप विद बैडमिंटन एंड बैडमिंटन इंडियन वुमेन्स डबल्स डी ऑफ त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद स्टॉर्म्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन न्यू दिल्ली। द इंडियन पेयर प्रोड्यूस अ कमांडिंग परफॉर्मेंस टू डिफीट 7 सीड्स रीन इवांगनागा and Kei Nakanishi of Japan in straight games. And in hockey, the Indian women's team will face England today in the final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at the Wegener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended in a positive zone today. The Sensex climbed 628 points of 0.82% to close at 77,538. The Nifty also surged 154 points or 0.64% to settle at 24,232.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
7: स्वाधीनता संघर्ष के दौरान 1771 में आज ही के दिन भारत माता के महान सपूत ओंडवीरन पगडई शहीद हुए थे। वे तमिलनाडु की वन मैन आर्मी माने जाते थे। ओंडवीरन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। ओंडवीरन का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संकरन कोविल में हुआ था। वे तिरुनेलवेली क्षेत्र में राज कर रहे बुलितीवन की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकार्ड के नवाब से दक्षिणी तमिलनाडु से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। बुलितीवन और उनके लेफ्टिनेंट ओंडवीरन ने ब्रिटिश आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। ओंडवीरन ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और सभी जीते।
8: ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलितीवन को उनके किले से गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर कलम कर दिया। ओंडवीरन को राजा बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और बुलितीवन के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। कुल मिलाकर ओंडवीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 लड़ाइयां लड़ी। 20 अगस्त 1771 को तिरुनेलवेली जिले के निकट मानूर गांव में घायल होने के बावजूद ओंडवीरन ने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन युद्ध के बाद उस निर्भीक योद्धा ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। आज भी उनकी याद में मानूर में स्मारक मौजूद है जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान योद्धा के साहस और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ बंगाल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भारत में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को बंगाल के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है।
7: ब्रह्म समाज को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। इस संगठन ने सामाजिक मुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उन्मूलन और समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान शामिल है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत से ही नेता संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी होम रूल लीग आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था। इस लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश संसद में भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य की घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना गया।
8: अगस्त घोषणा का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकारों की दिशा में प्रगति हो सके। उस घोषणा में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि भारत के नेताओं ने इन सुधारों की आलोचना की, क्योंकि लोगों की मांग पूर्ण स्वाधीनता थी और वे केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस घोषणा की आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने उन सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक सूर्यहीन सवेरा कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जो 1947 में भारत की आजादी तक शासन का आधार बना रहा।
3: योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले महान योगाचार्य बीके एस आयंगर की भी आज पुण्यतिथि है। इन्होंने योग के आसनों को शरीर की संरचना, संतुलन और श्वास के साथ वैज्ञानिक ढंग से समझाने पर जोर दिया। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लाइट ऑन योगा दुनिया भर में योग सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
6: Yes, and Andrew Garfield celebrates his birthday today. He's an acclaimed English American American actor known for his intense emotional depth and versatility in both blockbusters and independent dramas. He gained worldwide fame playing Peter Parker

0: उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वो नहीं मानता, कविता कुछ भी दे सकती है। इन पंक्तियों के रचनाकार थे हिंदी के प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री, जिनकी आज जयंती है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। सहज भाषा में आम जीवन, गांव और मानवीय संवेदनाओं को कविता में उतारने वाले त्रिलोचन की प्रमुख कृतियों में ताप के ताए हुए दिन और अर्घान शामिल है। साहित्य में उन्हें योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया।
1: And Phil Lynott was born on this day in 1949. He was a famous Irish singer, bass player and songwriter. He was a leader and co-founder of the hard rock band Thin Lizzy. Let's listen in to the band's hit track, The Boys Are Back in Town.

0: Yes, and Randeep Hooda was born on this day. He's a versatile actor, born on this day, 1976, in Rohtak, Haryana. Known for his intense performances and dramatic physical transformations, he debuted in Meera Nair's Monsoon Wedding in 2001 and gained major acclaim in films like Once Upon a Time in Mumbai, Highway, and Sarabjit. Let's listen in to a dialogue from his hit movie, Sultan.
1: Best.
2: Yeah.
1: ध्यान से देख इस आदमी को, तुझे इसमें एक थका और हारा हुआ इंसान दिखाई देगा, जिसने खुद को अपने दुखों और तकलीफों के बोझ के नीचे दबा के मार डाला है। I don't train dead people.
3: आज बॉलीवुड अभिनेत्री बेबी नाज की भी जयंती है। 20 अगस्त को 1944 में जन्मी कुमारी नाज ने बचपन में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा और इसीलिए इन्हें जाना गया बेबी नाज के नाम से। इन्होंने फिल्म बूट पॉलिश से खास पहचान बनाई। इस फिल्म में उनके अभिनय को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। इसके बाद इन्होंने काम किया देवदास और एक शोला जैसी फिल्मों में। इनके अभिनय की यही मासूमियत और उस दौर की यादों को समेटे अब सुनते हैं इनकी फिल्म का एक गीत।

0: श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई।

0: दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की और क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कहा है कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। महाविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधार कर इसे दोबारा जारी किया गया है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थीं और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। बांग्लादेश में 35 साल में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। सांसद देश के 23वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग जातीय संसद में ओपन बैलेट से हो रही है। इस चुनाव में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद से है। ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक नतीजे आज रात आने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे पाकिस्तान का यह दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The India-Japan Defense Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defense technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime

0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: जान हम निकलने नहीं देंगे और समय हम आपको ज़रूर बताएंगे। जी 5:11:55 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 और गाते गुनगुनाते जो प्रोग्राम है वो तरन्नुम भरे लहजे में स्टार्ट हो चुका है। जी सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक जी, आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं और आपके साथ मैं सीमा वर्मा। दिल ये कहता है, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं लेकिन थोड़े और प्यारे होते। साथियों, कई बार मुलाकात किसी की बोलती आंखों से होती है, और जब ये मुलाकात बोलती आंखों से होती है तो कई बार कदम थम से जाते हैं और फिर आगे यात्रा करने का जी ही नहीं चाहता, क्योंकि आपको आपकी डेस्टिनेशन वही मिल जाती है जहां वो कत्थई आंखें होती हैं, है ना। चलिए, आप इस वक्त

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्ती की थी, मगर खामखा तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। एक बहुत खूबसूरत गीत के हवाले आपको किए जा रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और साथ रहिए एफएम गोल्ड के। गीत के उस पार नॉर्थ ईस्ट डायरी। नमस्कार।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और अब वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते आप तक कुछ खास पहुंचाना है कि तुम्हें चाहने की आदत सी हो गई है, तुम्हें चाहने की आदत सी हो गई है, माफ़ करना थोड़ी हिमाकत सी हो गई है। नियत तो तुमसे दोस्ती की थी, मगर नियत तो तुमसे दोस्ती

0: आवन को हम एक संक्षेप में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक शास्त्र है, हमारा आदि का एक शास्त्र है। इसमें आवंग में सभी चीज कैसे ये पृथ्वी को बनाया है और जीव जंतु कैसा आया है इस संसार में, ये सभी को आवंग में ही बताता है और उसमें पूजा में ही उसको बताते हैं। फेस्टिवल बिना आवंग से होता नहीं। फेस्टिवल को क्यों मना रहा है, कैसे मना रहा है, कौन सा मना रहा है और किसके लिए मना रहा है, आवंग में ही आपको सब मिल जाता है। और उसको बताने वाला को हम मिरी बोलता है। ये मिरी कैसे हमारा यहाँ इस दुनिया को, इस संसार को क्रिएट किया है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको मिरी उसको बताता है तो आवंग का माध्यम से।
1: Mr. Pertin tells us that there are three types of avang. The first is binyat, the second is limil libom, and the third is the ikoptakor avang.
0: Binyat avang mainly cultivation ka hai, paddy crops ka kine nane ye iska lakshmi hai. To kine nane ka naam mein hum binyat karte hai. Binyat mein hum kaise dorti maa ko kaise hum puja pat karna hai, usko kaise puja pat karke humko hamara bumper crop hona chahiye, उसका बारे में ही हम बिन्यत आवंग में बोलते हैं। लिमिन लिवम आवंग, ये लिमिन लिवम आवंग है कैसे इस संसार में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, उसमें लिमिन लिवम आवंग में बताता है।

0: ke bo ba ge lon mu e pa ji ba ge na ko
1: mo ke bo ba ge lon mu e pa ji ba ge na ko
0: mo dak du ba ge lon mu e pa ji ba ge na ko
1: mo dak du ba ge lon mu e pa ji ba
2: ge ekop taktor abang ek tu hai ekop taktor abang job se इंसान को इस दुनिया में सृष्टि हुआ है, उसी समय से ये एक सोशल एवोल्यूशन शुरू किया है और ऐसा करते करते कैसे डेवलप हुआ है उसका बारे में एकॉप फैक्टर में बोलता है। और ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड अगेंस्ट एविल थिंग्स।
3: मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स इन द नॉर्दर्न स्टेट्स डू नॉट हैव स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर ओन एंड हैंस दे डू नॉट हैव रिटन लिटरेचर्स But their history has been passed on from one generation to other through oral literatures in the form of folklore, rituals and songs. And here, the Adi tribe has well preserved their history, their struggle and culture in the different forms of Abang. For Northeast Diary, this is Rakesh Dole, Akashvani News, Itanagar. Yeah.

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 है। कुछ ही देर में समाचार सुनिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं

0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की इरिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has formed a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to examine allegations of excessive use of force by police authorities and security personnel against student protesters in Delhi recently and violence against police personnel. A bench of Chief Justice Suryakant and Justices Joy Malia Bakshi and V. Mohana said the committee would also comprise former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla and retired Meghalaya DGP L.R. Bishnoi. The top court clarified that as a matter of abundant caution, the inquiry undertaken by the high-powered inquiry committee shall not be a one-time exercise. It asked the committee to undertake a continuous and periodic assessment of the issues and shall submit its interim findings periodically. The Jharkhand High Court today

0: से होती है। कृषि केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं है, ये किसान की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी है। इसलिए अब खेत से बाजार तक पूरी कृषि व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। पिछले एक दशक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हुए बदलाव इसी दिशा में बढ़ते भारत की तस्वीर पेश करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं।
1: पिछले एक दशक में किसान को आय, जोखिम और बाजार तीनों स्तरों पर सुरक्षा देने पर भी जोर दिया गया है। पीएम किसान के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी GVA वर्ष 2014-15 के 20,94,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित 52,08,000 करोड़ रुपए हो गया है। बाजार के मोर्चे पर भी बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच कृषि उपज की सरकारी खरीद 700 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 1230 मिलियन टन हुई है। लेकिन अगली चुनौती है किसान की उपज खेत से निकलकर बाजार और उद्योग तक किस तरह पहुंचे और उसमें कितना मूल्य जुड़े। यहीं से कृषि में बुनियादी ढांचे, FPO, सहकारिता, ENM, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका बढ़ती है। जुलाई 2026 तक देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पंजीकृत हो चुके हैं। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि अब तेजी से तकनीक आधारित क्षेत्र बन रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अगस्त 2026 तक 10 करोड़ से अधिक फार्मर IDs बनाए जा चुके हैं। AI आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम किसानों को फसलों और कीटों से जुड़ी जानकारी समय पर दे रहा है, जबकि भारत विस्तार जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को डिजिटल सलाह और सेवाओं से जोड़ रहे हैं। कृषि की अर्थव्यवस्था अब केवल फसल तक सीमित नहीं है, दूध, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र ग्रामीण आय के महत्वपूर्ण स्रोत बन रहे हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 25% योगदान देता है। इसी तरह 2025-26 में देश का मत्स्य उत्पादन बढ़कर लगभग 200 लाख टन हो गया।
0: श्रोताओं, इस पूरी तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि की बढ़ती मौजूदगी। कृषि निर्यात वर्ष 2025-26 में लगभग 55 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी भारतीय कृषि अब केवल देश की खाद्य जरूरतें पूरी करने का माध्यम नहीं बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी जगह बनाने का भी माध्यम बन रही है। कृषि को केवल खेती तक सीमित न रखते हुए उसे एक पूरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है और भारत की आर्थिक क्षमता केवल उसकी जमीन तक सीमित नहीं है। देश के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट और विशाल समुद्री क्षेत्र है। यहाँ भी भोजन, रोजगार, व्यापार, ऊर्जा और नई तकनीक से जुड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। यहीं से हमारी चर्चा कृषि से आगे बढ़कर ब्लू इकोनॉमी तक पहुंचती है। आइए इसे शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं।
1: ब्लू इकोनॉमी का सरल अर्थ है समुद्र से जुड़े संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना जिससे आर्थिक विकास और रोजगार तो बढ़े लेकिन समुद्री पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसमें मछली पालन और जलीय कृषि, समुद्री पर्यटन, जहाज रानी और बंदरगाह, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा, समुद्री जैव तकनीक तथा गहरे समुद्र में मौजूद संसाधनों की खोज जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। यही वजह है कि ब्लू इकोनॉमी को केवल एक उद्योग के रूप में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली पूरी आर्थिक व्यवस्था के में देखा जा रहा है। भारत के लिए इसकी संभावनाएं विशेष रूप से बड़ी हैं। देश के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट है और लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत के कुल व्यापार का करीब 95% हिस्सा मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से ही होता है। सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत तटीय क्षेत्रों के विकास, समुद्री पर्यावरण की बहाली और टिकाऊ जलीय कृषि पर जोर दिया है। इसका एक प्रमुख हिस्सा है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को बचाना जरूरी है क्योंकि ये समुद्री जीवन के साथ साथ तटों को भी सुरक्षा देते हैं। दूसरी ओर जलीय कृषि और समुद्री कृषि को टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। समुद्री प्रजातियों और समुद्री शैवाल की खेती जैसे क्षेत्रों में रोजगार और आय की नई संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ब्लू इकोनॉमी केवल तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। भारत गहरे समुद्र में मौजूद संसाधनों और संभावनाओं को समझने तथा उनका उपयोग करने के लिए भी काम कर रहा है। इसी दिशा में डीप ओशन मिशन महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों की खोज, वहां मौजूद संसाधनों की जानकारी और उनसे जुड़ी तकनीक विकसित करना है। इसके साथ सागरमाला परियोजना के जरिए बंदरगाहों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम हो रहा है। वहीं ओ स्मार्ट के तहत समुद्र से जुड़ी सेवाओं, तकनीक, संसाधनों, निगरानी और वैज्ञानिक अध्ययन पर भी काम जारी है।
0: श्रोताओं, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये युवा शक्ति तभी देश की ताकत बनेगी जब उसे सही अवसर, प्रशिक्षण और मंच मिले। इसी सोच के साथ खेलों को केवल पदक तक सीमित न रखते हुए एक पूरी व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए इन प्रयासों को विस्तार से समझते हैं।
1: खेल के क्षेत्र में आए बदलाव में खेलो इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना था। अब इसका दायरा और भी बढ़ाया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खिलाड़ी की यात्रा को शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना। यानी गाँव या स्कूल के मैदान से प्रतिभा की पहचान हो तो उसे बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले, ताकि आगे चलकर वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए देश भर में खेल प्रशिक्षण का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन प्रतिभा की पहचान जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। इसी उद्देश्य से कीर्ति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल के जरिए 9 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जा रही है। इसमें तकनीक और डेटा की मदद से प्रतिभाओं को खोजने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जरिए उन खिलाड़ियों को सहायता दी जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्हें विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, कोचिंग और जरूरी उपकरणों के लिए सहायता दी जाती है। भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में लगभग 40 खेल और सैकड़ों स्पर्धाएं होती हैं, लेकिन इन स्पर्धाओं में करीब 2/3 में भारत की भागीदारी नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएगी। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रोताओं, कृषि, ब्लू इकोनॉमी और खेल, तीनों क्षेत्र भारत की क्षमता को अवसर में बदलने की दिशा दिखाते हैं। कृषि में किसान और संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास है। ब्लू इकोनॉमी में समुद्र से नए आर्थिक अवसर तलाशे जा रहे हैं और खेलों में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत की मजबूत नींव, और यही सप्तधारा की व्यापक सोच का भी हिस्सा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत जापान देशाभ्याम रक्षा सहभागितां दृढ़ीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। उभावपि देशौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय च व्यवस्था सम्मति पत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाहः अन्ताराज्यिक विवादान सुरक्षा विकास विषयान् च चर्चयितुं तमिलनाडु राज्यस्य कोवलम नगरे 31वें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। झारखंड उच्च न्यायालयः जेपीएससी नियुक्तिनां खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनस्य च निरस्तीकरणादेशे स्थगनादेशं प्रायच्छत्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रतिरोध प्रदर्शनानि तीव्रीभूतानि। पाक शासनतंत्रं च जनाक्रोशेन त्रस्तं वर्तते।

0: सुरक्षायाः दृढीकरणं मेक इन इंडिया इत्यस्यान्तर्गतं रक्षा प्रौद्योगिक्याः सहैव रणनीतिक विश्वासस्य च विस्तारः इति प्रमुख विषयेषु गभीरा चर्चा संजाता। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय एकस्मिन् व्यवस्था ज्ञापन सन्धौ हस्ताक्षरम् अकुरुताम्। स्वकीय भाषणे रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् एशिया महाद्वीपस्य द्वौ लोकतांत्रिक देशौ भारत जापानौ क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां समृद्धिं च स्थापयितुं महत्तरं उत्तरदायित्वं निर्वहतः। श्री सिंहः प्रतिपादितवान् यत् सामुद्रिक मार्ग सुरक्षायां समाह्वानानि वर्धन्ते, अतः नौ परिवहन स्वातन्त्र्यं, वायुयान संचालन स्वातन्त्र्यं अथ च अबाधित वैध वाणिज्यं सुनिश्चेतुं क्रियमाणाः प्रयासाः केवलं आर्थिक आवश्यकता एव न अपितु एकं अनिवार्यं रणनीतिक दायित्वमपि अस्ति। सः प्रतिपादितवान् यत् हिन्द महासागरस्य प्रशांत महासागरस्य च सुरक्षा परस्परं दृढतया संलग्ना वर्तते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य महासागरीय दृष्टौ सहैव जापानस्य मुक्त एवं प्रकट हिन्द प्रशांत उपक्रमे च निकट समन्वयः सम्प्रति पूर्वस्मादपि अधिकं आवश्यकं जातम्।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी महोदयः कुमामोटो प्रान्ते आगतेन भूकम्पेन प्रभावितान् जनानालक्ष्य भारतेन प्रकटीकृतां संवेदनां प्रशंसितवान्। सः जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षाबलस्य पोते दुरापन्नायाम् आपत्कालीन चिकित्सा स्थितौ भारतस्य नौसेनायाः सहायतायै कार्तज्ञं प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्त वक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ। चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां एकत्रिंशत्तमं दक्षिणक्षेत्रीय परिषदुपवेशनं सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः उच्चाधिकारिणश्च क्षेत्रस्य प्रगतिविकाससम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृतरूपेण विचारविमर्शम् अकुर्वन्। उपवेशने तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्री जोसेफ् विजयः, कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारः, केरलस्य मुख्यमन्त्री सतीशनः, तेलङ्गानायाः उपमुख्यमन्त्री मल्लुभट्टी विक्रमार्कः, सहैव आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडू इत्येते भागम् अगृह्णन्। एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम्, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्त्वे च बलं प्रदत्तवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्णगानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। वार्ताहरैः सह संलपन श्रीशाहः अकथयत् यत् एषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधिकृत्यं वर्तते। गृहमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् 37-29 शततमे वर्षे कांग्रेसपक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम्। श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुलगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेसदलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी

0: के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखंड उच्च न्यायालय एकादशतः त्रयोदश जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण संबंधे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेश पर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधिप्रक्रियां नैसर्गिक न्याय सिद्धान्ताञ्च उल्लङ्घ्य पूर्वं नियुक्ताः अधिकारिणः पदात् निष्कासयितुं न शक्यन्ते। न्यायालयेन सर्वकारः सहैव झारखंड लोकसेवा आयोगः आगामिवादश्रवणाय सितंबर मासस्य 15 दिनांकं यावत् स्वप्रतिवचनं दातुम् आदिष्टौ। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदस्य सीमाक्षेत्रेषु संदिग्ध व्यक्तीनां गमनागमनस्य सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलैः अद्य सघनम् अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम्। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददातृवृत्तानुसारम् एतत् अभियानम् उधमपुर कठुआ सीमावर्तिषु बिलावरक्षेत्रस्य वनभागेषु च प्रचालितम्। स्थानीय जनानाम् अनुसारं बुधवासरे चिररात्रौ बिलावर क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे अज्ञात व्यक्तिभिः कस्यचित् गृहस्य द्वारं शब्दापितम्। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरे निवसन्तः जनाः सम्पूर्णे क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानि तीव्रीकृतवन्तः। अनेन पाकिस्तानस्य शासन व्यवस्थायाः वास्तविकता पुनः प्रकाशिता। पीओजेके इत्यस्मिन् क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानां विस्तारः निरन्तरं वर्धते, येन इस्लामाबादस्य तत्कथनं निरस्तं भवति यत् अशान्तिः केवलं रावलकोट क्षेत्रे एव सीमिता अस्ति। जीएएसी इत्यनया कार्यसमित्या इस्लामाबादस्य तत् कथनं निराकृत्य कथितं यत् विरोध प्रदर्शनानि अधुना सम्पूर्णे अधिकृतक्षेत्रे प्रसृतानि सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य महिला युगल क्रीडिके त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चंदः च नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF विश्व प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चरणे प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी सिंह। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis, and global crude oil prices rise over 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा। भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया. सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया. इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले. दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, or 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, or 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its four-day losing streak, while Nifty snapped its seven-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in U.S. bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई, जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%, FMCG as well as focused IT gained 1%, and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined, and 225 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: एसपी, अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है. सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसने जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी. आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ हैं जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं हैं. क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई स्प्रे में हैं और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ, उसमें भी जो वो बरकरार है. लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी, कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद ये 6%, 5%, 6% उससे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है, और जिसमें जो बायस है, अपवर्ड बायस है, जो मार्केट्स है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं. लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करती है, जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी नहीं ले पाती है. तो कुल मिला के जो मार्केट्स हैं वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है. मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ

0: इलेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगती हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है। तो एक ये जो 1500 का जो एक रेंज है निफ्टी में, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए है।
1: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चल कर क्या?
0: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है, एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं। तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1500 के निफ्टी का जो अभी पीछे हम एक डेढ़ साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है, तो एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, मार्केट में एक संतुलन बना रहा। जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है उसको लेके, और नेगेटिव कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट्स वहाँ पे करेक्शन खा जाती है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं ये कहूँगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड अप्रोच।
2: ओके डॉक्टर शर्मा, द रीबाउंड दैट यू मेंशन्ड इज आल्सो शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट्स आफ्टर अ 4-day लूजिंग स्ट्रीक वी सॉ अगेन an uprise in the markets today. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the US treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the US bond. You have the bill notes and bonds, 1 to 6 months, the short-term treasuries, 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in the bond market in the US having on India and India's stock market? Because the national debt of the US has already crossed $40 trillion. So how do you see the hedge funds looking at India? They're still the net sellers, but it has an impact on the way our stock market is moving.
0: Yes, Arjun, because US market is not that much stable. Steam volatility is existing because of the dwindling fundamentals. Sometimes the inflation becomes very sticky at the higher level and the growth is decelerating, and bond prices are very, very volatile, and dollar index is also volatile. So market in US is not taking any strong direction either side. But this volatility in the treasury and rebound because of the announcement that there may be some rise in the interest rate in the coming times, as majority of the people are in favor of increasing the interest rate. So again, the bond yields are becoming strong, and that's why the volatility is observed in the market. So nothing is stable in the US market, either the fundamentals of the economy, like their manufacturing growth or the employment creation. These things are not stable. These are very volatile month after month. So creating a confusion or uncertainty in the minds of the investors. So that's why no direction is there from the US market, but remains extremely volatile. And going forward, I believe the market mood will remain volatile because there is no discussion on peace between Iran and US, and these developments are deepening. That may cause more volatility in the global markets.
2: When we look at the stock market, Sensex went up by 0.82%, and usually we see that the small cap and the mid cap actually go up even more, but they went up only marginally today. What is the mood of the traders right now? Do you see the markets moving similarly tomorrow, or do you expect profit booking after short covering today where the markets went up, but do you see them booking profits tomorrow?
0: Yes, Arjun, majorly traders are in a consolidating mode. They are in the range bound trajectory. They book profit at the higher level and again enter in the market at the lower levels, because

0: Market is now providing the clear direction that there is no significant upside beyond 25,000 or 25,400, but and there is no deceleration after the 23,500. So market is in a very secure zone of this 1,000 and 1,500 Nifty. So that's why sometimes this can be a balanced approach, that market is not moving either side or upside or downside significantly, but remains in a range. That's why the profit booking happens in the sometimes in the mid, small cap, sometimes in the mid cap, sometimes by the FIIs and sometimes by the DIIs. They again enter at some opportune time, and then they book profits at some point of time when they see that profitability is coming in their invested portfolios.
1: Do you think that the fundamentals of India's economy is a factor in this pullback in the markets right now? Because the core industrial data has also come out, which we will be reading about soon for the month of July, where core industries has gone up by 5.4%. Do you see the fundamentals and, of course, the first quarterly earnings of companies also playing a role where investors are not looking really to sell that quickly?
0: Yes, Arjun, I already mentioned that corporate earnings are very supportive and fundamentals are a great support for the stock market behavior. As I mentioned earlier also in my earlier interviews with the All India Radio, that markets are in a very strong mood. But the global developments are impacting the sentiments of the markets and undermining the performance of the market. When there is some positive discussion at the global level between US and Iran, markets rebound significantly. So that is the potential of the market, that and that indicates that if there is peace at the global level, then markets can rebound significantly and make a new high immediately. Yes.
1: In more news, a combined index of core industries, ICI, recorded a cumulative growth of 5.4% year-on-year in July, moderating from 6% growth in the preceding month. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry, growth in the core sector for June was revised upward to 6% from the earlier reported 5%. Among the nine core sectors, iron ore production rose by 29.5%, cement production grew by 13.1%, electricity generation increased by 9%, coal production rose by 7.6%, steel production increased by 2.9%, and refinery products output rose by 2.7% on an annual basis. However, fertilizer production declined by 8%, crude oil production dropped by 5.3%, and natural gas production dipped by 3.7% on a year-on-year basis.
2: SP, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आयरन और स्टील की बात करें, सीमेंट, बिजली और कोयले के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उर्वरक और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से कैसा दर्शाते हैं और मार्केट की आगे की जो रफ्तार, उस पर क्या असर डालेंगे ये?
0: देखिए, जो स्टील में, माइनिंग में जो अच्छी बढ़त आई है, ये सरकार की जो भी पॉलिसीज, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में कही है, या फिर आप जो एक्सप्लोरेशन ऑफ दी माइंस इन एन एफिशिएंट मैनर उसमें कही है, तो ये सब चीज़ों का भी नतीजा है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कोर इंफ्रा में, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और विजिबल हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले ये काफ़ी ग्रोथ इसमें अंडरमाइंड था, जो कोर इंफ्रा में ग्रोथ बहुत कम आता था, तो अभी ग्रोथ एक लेवल से ऊपर उठा है, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और कुछ खास करके जो आगे जो हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये वापस अपने पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी में आए हैं। लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है, और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि तो उसमें वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें, जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत, अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके, डबल, और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने

0: चार पाँच महीने में बिहेव किया है। तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है।
1: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड, बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यू नीड सल्फर इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड ऑयल ऑफ कोर्स, एंड नेचुरल गैस वी रिलाई ऑन द मिडल ईस्ट फॉर क्रूशल imports right. For our refineries, but the weightage of fertilizer, crude oil and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel and refinery products, and all of that has seen a great increase in its yes. output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of core industries.
0: Yes, Arjun, you are right, because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high, as these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%, which is a great number in the this volatile global environment.
1: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with core industries data and IIP, fundamentally the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
0: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals, like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4%, and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13% during the last 4 months. The average is 13%. Last month in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So this is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था। जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा। यूरोपीय बाजारों से अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.4% नीचे था, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.2% गिरकर कारोबार कर रहा था। इसमें मेरे इस खबर से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, 1-2 महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है, ये काफ़ी कुछ कहता है।
0: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडिसेज हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है। जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशंस हैं या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है, तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं, या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं, या फिर चाइना में देखते हैं, या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे, ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी लेवल तक अंडरमाइन हुई है। जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्थता है।
1: डॉक्टर शर्मा, दी लुकिंग एट द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान, क्लियरली दे हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट एज अ स्टोरी is indicating the exports have gone up, but the imports have gone up even more relative to the exports. And we talk about the Japanese yen, it has now climbed back to 158.55 to the US dollar. Earlier it was even weaker, it crossed 160, and then there was a move by the US government to strengthen the yen, because the yen is also used for the carryover trade. So what's going on here between the Bank of Japan, the yen, and what the US is doing?
0: यस अर्जुन, जापान इज इन अ मेजर

0: modes, structural revival, and growth is also inching up slowly, slowly. And going forward, I believe this structural shuffle will benefit the Japanese economy because they are now connecting with the many global markets, and to increase the trade trajectory and to become once again prominent in the global trade. So I think in the coming times that will become visible, and economy will rejuvenate to the next level.
1: Moving on to the U.S. stock market, major U.S. stock market indices ended higher yesterday, supported by a decline in bond yields after the U.S. Treasury announced to double its buyback of long-term bonds. Dow Jones Industrial Average, the S&P 500, and the Nasdaq Composite each gained around 0.2%. Meanwhile, the latest minutes of the Fed Reserve revealed that 3 out of the 12 members were in favor of an interest rate hike by a quarter percent. How do you see the discount rate being hiked by Kevin Warsh, the U.S. Fed, if this does go through? They are facing inflation at 3.4% for the month of July.
0: As I already mentioned, that their inflation is at the higher level, and that becomes sticky, not coming down. Only deceleration is only 0.1%. So that's why they are taking this decision to increase the discount rate, and that will not be favorable for the economy because their GDP numbers are also decelerating at around 2% from the earlier projection of 2.5%. So I believe US economy is not in a stable mood. The economy is facing a lot of volatility and the uncertainty because of this US and Iran war. The semiconductor and technology remain a key growth factor for the growth of the economy, but that too in a volatile situation because of the increased bond yields and sometimes the outflow of the capital.
1: Very briefly, the US dollar index has fallen to 98.757. Do you think that is because of what's happening in the bond market and the buyback program?
0: Yes, that was because of the bond market. But today, again, there is a rebound in the treasury. So I believe the dollar will again in a strengthening mode.
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा, उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता, तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा। एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे? क्या असर देखने को मिलेगा? मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
0: देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है। नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा। अभी हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है, क्रूड प्राइसेस की वजह से। और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा, पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है, मतलब यूएस भी उसमें शामिल है। यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा। जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहाँ पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है।
2: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है।
0: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अनाउंसमेंट्स दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स द डायरेक्ट

0: कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजन है लेना चाहिए.
1: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 3% टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94.61 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate crude was trading 3.4% up at $88.77 per barrel when reports last came in.
2: चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है. बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है. और अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 1,57,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 2,37,766 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया डॉलर का वीकनेस, जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था, तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था. और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4000 का लो स्तर छू के वापस एक रीबाउंड आया. जो सेंट्रल बैंक्स है वापस वो दे आर इन दी बाइंग स्प्री, तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूँ कि बरकरार रह सकती है. और गोल्ड का जो पहले ये 5500 का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, $5,500 पर ट्राई ऑन्स, तो अभी 4500 है, तो काफ़ी स्कोप है. लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी ऊपर ही.
2: डॉक्टर एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis. And global crude oil prices rise over 3%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता।

0: अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court has formed a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to examine allegations of excessive use of force by police authorities and security personnel against student protesters in Delhi recently and violence against police personnel. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohan said the committee would also comprise former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla, and retired Meghalaya DGP L.R. Vishnoi. The top court clarified that as a matter of abundant caution, the inquiry undertaken by a high-powered inquiry committee should not be a one-time exercise. It asked the committee to undertake a continuous and periodic assessment of the issues and shall submit its interim findings periodically. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC Civil Services Examination and the Food Safety Officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they cannot be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission JPSC and fixed 15th of September for the next hearing. The India-Japan Defence Ministers meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, making India defence, technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Prime Minister Narendra Modi has said that India's BRICS chairship is advancing sustainable development through people-centric climate action. Sharing an article written by Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav, the Prime Minister said that India's progress in reducing emissions intensity and expanding non-fossil energy capacity reinforces a sustainable and green approach. Mr. Modi also highlighted the government's focus on measures such as sustainable lifestyles, afforestation, circular economy and community-based adaptation. Government unveiled the Delhi Master Plan 2047 today. The Master Plan provides a long-term, special, economic and institutional framework to transform Delhi into a globally competitive, environmentally resilient and inclusive capital. It will combine economic dynamism, technological innovation and high standards of livability while preserving its rich historical and cultural heritage. The Master Plan for Delhi 2047, aligned with the vision of Viksit Bharat 2047, aims to transform the national capital into a world-class, inclusive and economically vibrant city for nearly 3.2 crore people. Veteran Bangladesh Nationalist Party BNP leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was today elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes in the presidential elections held at the Jatiya Shonsod, the country's parliament. He defeated former army officer Oli Ahmed, the candidate backed by the 11-party opposition alliance led by the far-right Bangladesh Jamaat-e-Islami and the country's first major student-led political party, National Citizen Party NCP, who received 88 votes. In badminton, Indian women's doubles duo of Trisha Joly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7-seed Rin Iwanaga and Ki Nakanishi of Japan in straight games. Colombia has declared a 30-day state of economic, social and ecological emergency in regions hit by the massive earthquake on 10th of this month. The government has said the emergency measures will focus on rebuilding damaged homes and restoring businesses and essential public infrastructure, including schools and hospitals. Colombia's National Unit for Disaster Risk Management said the 7.4 magnitude earthquake had killed 319 people and left 260 missing as of this morning. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायोलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया, ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है, आज के दिन अभी संपन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में। चार मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं, बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है। इन सभी को मिलाकर, सभी को साथ में लाना, चार सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे
1: जी।
2: और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये चार मंत्री उसमें शामिल थे, तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। दूसरी बात इसमें ये है, जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का, मैं कहूँ तो, छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन, आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें ये भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है, करीब $24 बिलियन हम इम्पोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की और वो हमारा छठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी, मैं इसमें ये कहूंगा जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया, वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था। अगर आप देखते हैं 2018 से तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन, जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, तो उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है उसका यही उद्देश्य है, इन संबंधों को और आगे ऊंचाई पर हम इसको लेकर जा सकें।
1: सो एम्बेसडर सज्जनहा, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उन पर सहयोग बढ़ाने की खास तौर से आज बात हुई है। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जैसे आपने कहा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सो आपको लगता है कि ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं इनमें हमारा जो आपसी सहयोग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें हमने सिंगापुर के पे नाउ के साथ 3 वर्ष पहले एक समझौता किया, जो पहला देश था जिसके साथ हमने ये किया। सो आपको लगता है कि हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ संबंध की पोटेंशियल है?
2: जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए आपने जिक्र किया है दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर में यात्रा हुई थी, और फिर पिछले साल जब वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत आए थे तो उन्होंने यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, और उसमें हमने करीब 8 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए थे, और उसमें सभी ये जो आपने बताया है, डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन एनर्जी है, हेल्थ केयर, मेडिसिन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और आज की जो मुलाकात हुई है भारत के 4 मंत्री और वहां से करीब 6-7 मंत्री सिंगापुर से, तो उनमें इसी को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2 वहां पर MOU भी साइन किए गए हैं मैरिटाइम हेरिटेज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर, लेकर कैसे इनको और आगे बढ़ाया जाए। परंतु मैं कहूंगा जो इसमें बातचीत तो होती रही है, परंतु एक

0: बहुत जोरदार कदम लिया गया था वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में
1: जी
0: सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने उस समय शुरुआत हुई थी जो कैसे हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, और वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी है AEM जिनके साथ सेमीकंडक्टर कंपनी वहां पर उन्होंने विजिट किया था। उसमें उनके साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग भी गए थे वहां पर, और दोनों देशों ने यही बात की जो कैसे दोनों देशों के सहयोग इस क्षेत्र में जो अपना नए तकनीकी क्षेत्र है, हाईटेक क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हमारा सहयोग अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। परंतु अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, AI का जमाना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब का जमाना है, और इसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छी महारत हासिल की है, तो इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है जो काफी प्रगति की है, और आज की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसको काफी आगे लेकर जाया जाएगा। और एक बात मैं इसमें कहूं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, आपने फिनटेक की बात की है, तो हमारा जो UPI है और उनका जो पे नाउ है, पहला देश था ऐसा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और अब तो UPI बहुत प्रचलित हो गया है। मेरे विचार से 20 देशों से ज्यादा में उसे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। परंतु जिसे कहा जाए, ये जो रास्ता सीधा सामने देख किया गया था, ये सिंगापुर के साथ हमारे सहयोग के साथ ही किया गया था।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें?
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है, और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमन जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो अब बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं, जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है, जिससे कि और ज्यादा वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके, और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा, जो जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए, उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्रों में, जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं, जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, AI है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है, क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है, वो काफी मजबूत है, और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए।
1: जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9,000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं, और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के, बायलैटरल ट्रेड आपको लगता है इससे बढ़ेगा, और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?
0: जी, मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमारी करीब 9,000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इसके अलावा हमारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स

0: उनके अपना फायदा होगा, और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, और जो सेमीकंडक्टर हैं, और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहां पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई, जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं, परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना, मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा, और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां शाम के इस वक्त दिन भर की आपदा भी धीरे धीरे थमने लगती है। चाय की प्याली से उठती भाप, खिड़की से आती हल्की सी हवा और पुराने गीतों की मीठी सी धुन मन को एक अलग ही सुकून देने लगती है। ऐसे ही खुशनुमा एहसास के साथ एक बार फिर सजी है सांझ ढले की महफिल, और आज की मेजबान हूँ मैं यानी विभा, शुभ संध्या। सांझ ढले में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जिनमें प्यार है, इंतजार है और दिल की बात है, जो हर एहसास को अपने ही कहानी बना देती है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें खुशियों की बौछार है और दुआओं की मिठास भी। साल 1966 की फिल्म सूरज का ये गीत राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया था। शंकर जयकिशन की मधुर धुन, हसरत जयपुरी के खूबसूरत बोल और मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ ने इस गीत को शादी और शुभ अवसरों के लिए भी बेहद लोकप्रिय बना दिया। तो फूलों की इसी बारिश से आज की शाम को भी महका देते हैं।

कितनी खूबसूरत बात है ना कि किसी के आने की खुशी को फूलों की बारिश से जोड़ दिया जाए। यही तो इन गीतों की खूबसूरती है कि साधारण सी भावना को भी इतने खूबसूरत शब्द दे दें कि वो हमेशा के लिए याद बन जाएं। गीतों का सफर जारी रहेगा, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान

साँझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। भाई प्यार की पहली नज़र, पहली मुलाकात और सामने वाले के चेहरे को देखने की बेचैनी, इन भावनाओं को गीतों में बड़ी खूबसूरती से पिरोया जाता था। साल 1968 की फिल्म मेरे हुजूर का अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। राजकुमार, माला सिन्हा और जितेंद्र अभिनीत इस फिल्म में। संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और गीतकार हैं हसरत जयपुरी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अपने अंदाज में एक दिलचस्प शरारत और रोमानियत दोनों समेटे हुए है। तो आइए ज़रा पर्दा हटाते हैं और सुनते हैं।

0: सांझ ढले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार और करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार संपन्न जांच समिति गठित की है। एक रिपोर्ट।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच

0: समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: केंद्र सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे।
2: लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है।
1: कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये योजना अधिक टिकाऊ, जीवंत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली का निर्माण करेगी। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अपनी कई सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्लान पूरे शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित इलाके सभी शामिल है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती परिवहन जरूरतों और प्रदूषण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना भी बनाई गई है।
4: पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, प्लान्ड एरिया, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़ें।
3: विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी के लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। बढ़ती आबादी, परिवहन और प्रदूषण की चुनौतियों के बीच यह दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी को सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच केंद्र है, जहां लोगों को अपने क्षेत्र में ही सुलभ और समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जांच के परिणाम डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।
5: आप सबको यहाँ ट्रेंड करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने लक्ष्य लिया था कि हम युवाओं को AI की शिक्षा देंगे, AI के कौशल से जोड़ेंगे, ताकि आज का युवा स्किल होल्डर बने जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अनुव्रत भवन में रेजिंग और एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत आयोजित मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में सहभागिता की। आयोजन में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4P रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: ये जो ट्रेनिंग और होल्डिंग आप लोगों की है, ये भी सच में 4P रिफॉर्म की ओर हमें लेके जाएगी, जहां पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप, हर चीज अपनी जगह काम करेगी और हम मिलकर के इस पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे।
1: दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
6: आपको कैसे आगे बढ़ाना है।

0: इसके बहुत सारे आइडिया हमने आके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट किए। सोचिए दिल्ली का पिछले हमारी सरकार आने से पहले कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000 करोड़ रुपए लगा था, और हमने 4,806 करोड़ रुपया अपनी गारंटी दिल्ली सरकार ने देकर 4,806 करोड़ रुपया लगभग 10,500 लोगों को लोन देकर काम उतराने का काम किया। ये काम करने की सोच है।
1: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम क्षेत्र के पास अरावली के संरक्षण और विकास पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दे रही है। इस साल के वन महोत्सव के दौरान मानेसर के पास 2,00,000 पेड़ लगाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहाँ पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
0: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नरेला, बवाना, सिंघोला और भलसवा में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्रों का निरीक्षण किया तथा उनके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इनमें नरेला बवाना क्षेत्र में बन रहे 1200 टन और बवाना में ही स्थित निर्माणाधीन 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शामिल है। साथ ही निगम आयुक्त ने सिंघोला में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्री खिरवार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। नगर निगम ने लाल किला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के उपरांत लाल किला और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा विशेष रूप से सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के आगामी पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अंतर्राज्यीय अपराध शाखा ने नकली और गैर कानूनी तरीके से डाइवर्ट की गई एंटी कैंसर दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल एक अंतर्राज्यीय समूह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कई दवाइयों की हेराफेरी करते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एंटी कैंसर इंजेक्शन की 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डब्बे और अन्य दवाओं की लगभग 3000 इकाइयां बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,00,000 नकद बरामद

भी किया है, मामले की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिस पहल, जन कल्याण प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के विशेष उपायों का विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और महिला यात्रियों के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन के कामकाज, उसके इस्तेमाल और असर की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। वहीं पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने 19-21, 11-21 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं सहित कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों पर तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों

0: ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमोमोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। रेल मंत्रालय ने 238 वातानुकूलित ईएमयू रैक बनाने को प्राथमिकता दी है। ये कदम मुंबई शहरी उत्पादन परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण शुरू होने के साथ ही रोलिंग स्टॉक की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आलमगीर को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट मिले। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली अहमद को 88 वोट मिले। एमस्टल फेन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। अगर भारतीय टीम आज का मैच ड्रॉ भी कर लेती है तो वो अगले दौर में पहुंच जाएगी। ग्रुप डी की अंक तालिका में वो अभी शीर्ष पर है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has formed a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to examine allegations of excessive use of force by police authorities and security personnel against student protesters in Delhi recently and violence against police personnel. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohana said the committee would also comprise former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla and retired Meghalaya DGP L.R. Bishnoi. The top court clarified that as a matter of abundant caution, the inquiry undertaken by the high-powered inquiry committee shall not be a one-time exercise. It asked the committee to undertake a continuous and periodic assessment of the issues and shall submit its interim findings periodically. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC civil services examinations and the food safety officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they could not be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission and fixed 15th of September for the next hearing. The India-Japan Defence Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defence technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Prime Minister Narendra Modi has said that India's BRICS chairship is advancing sustainable development through people-centric climate action. Sharing an article written by Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav,

राग केवल स्वरों का मेल नहीं है, बल्कि भावनाओं की वो भाषा है जो बिना शब्दों के भी मन को छू जाती है। हर राग की अपनी प्रकृति, अपना रंग और अपनी अनुभूति होती है। कोई राग मन में शांति और सुकून भर देता है, तो कोई उमंग, प्रेम या विरह की भावनाओं को जगा देता है। और रागों पर आधारित गीतों को समेटे हुए है मधुरिमा। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मधुरिमा में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार। तो आज की मधुरिमा का आगाज करते हैं राग तिलंग पर आधारित गीत से। राग तिलंग बेहद मधुर राग है जो कर्नाटक संगीत के राग हंस श्री जैसा है। ऐसा माना जाता है कि इस राग की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है और इसके गाने बजाने का समय होता है रात्रि का दूसरा प्रहर। तो पहले सुनते हैं एक गीत इसी राग पर आधारित और बाकी की बातें गीत के बाद।

भक्ति और श्रृंगार रस की रसवर्षा करने वाला राग तिलंग एक पूर्वांग प्रधान राग है जिसका विस्तार मध्य और तार सप्तक में किया जाता है। इस राग की प्रकृति चंचल है, इसलिए इसमें ठुमरी, भजन, गीत, पद वगैरह गाए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित आज का हमारा दूसरा गीत, जिसे हमने लिया है साल 1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

मधुरिमा का अगला गीत है राग चारुकेशी पर आधारित। राग चारुकेशी बेहद मधुर राग है जिसे दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति से लिया गया है। ये तीनों सप्तकों में बिना किसी रोक टोक के गाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं साल 1970 की फिल्म मेरे हमसफर से लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त। एमस्टलवीन में इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियनशिप के अगले दौर में पहुंची। सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। और मलेशिया में ईस्ट बंगाल FC ने AFC महिला चैंपियंस लीग में रोवर्स FC को 12-0 से हराकर इतिहास रचा। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। दिल्ली में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथा दिन भारत के लिए सफलताओं से ज्यादा असफलताओं से भरा रहा है। मेजबान देश के लिए दिन के पहले महिला डबल्स मैच में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीत के साथ शुरुआत की। इधर पुरुष डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स से भी निराशाजनक परिणाम सामने आया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों की तालियों और स्टैंड से उठते शोर के बीच गायत्री और त्रिशा की जोड़ी ने कोर्ट पर कदम रखा। दोनों ये भूलकर उतरी कि उनके सामने रैंकिंग में 7वें नंबर पर मौजूद जापानी जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानाशी हैं। पहले गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार गायत्री त्रिशा ने बढ़त बनाई और पहला गेम 21-16 के अंतर से जीत लिया। इस जीत के बाद तो भारतीय जोड़ी ने ऐसी जबरदस्त लय पकड़ी कि जापानी जोड़ी मुकाबले में कहीं टिक नहीं सकी। घरेलू समर्थन के बीच गायत्री और त्रिशा ने दूसरा गेम 21-11 से जीतकर मैच को सिर्फ 44 मिनट में अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद दोनों ने ये तो माना कि दबाव उनके ऊपर था, लेकिन स्टैंड से मिलते समर्थन ने उनका काम आसान कर दिया।
2: गेटिंग ऑन कोर्ट डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल प्रेशर, बट इट्स द काइंड ऑफ प्रेशर यू एंजॉय बिकॉज़ यू आर प्लेइंग इन दिल्ली। सो आई थिंक या इवन इन द फर्स्ट सेट वी वर डाउन 13-16, बट देन वी गॉट सम tips from our coaches and yeah, after that we've implemented it pretty well. So yeah, I think I'm super happy.
3: I think the crowd is so amazing. I think even when we are in the first game, when we are down also, the crowd really carried us. And I think when it's happening in the home soil, we just need to show our powerful matches and everything that they can see.
1: Halanki mixed doubles mein Dhruv Kapila aur Tanisha Cresto pre-quarter final mein jeet ke lay ko barqarar nahi rakh sake. 15vi varyata prapt bhartiya jodi ko Cheen ki 6th वरीयता प्राप्त गुओ शिनवा और चेन फांग हुई ने 16-21, 5-21 से हरा दिया। ध्रुव और तनिषा ने माना कि वो अपनी रणनीति को लागू करने से चूके और गलतियां भी हुई।
4: We are very equally disappointed that we couldn't put up the best show, especially here on the home ground. It was a good fight in the first set, but somehow we didn't have any control in the second set, and I think they took advantage of that and they played really well in the second set. But yeah, I think we take full responsibility on that, that we didn't play up to the mark today, and yeah, we hope that we could have done a better performance today.
5: I think it's my mistake. I should have done better there, but eventually I started making a lot of errors, and which took us. They took a lead, and then you are under pressure, especially me, because I think it was me who was just making very easy mistakes. And then there's no plan if you keep making easy mistakes, and even the coach, whatever he says, it won't work. I should have done a bit better.
1: पुरुष सिंगल्स में भी भारत को बड़ा झटका लगा। टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर उलटफेर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी आज अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आयुष ने 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान का पहले गेम में डटकर मुकाबला तो किया, लेकिन मौकों को भुना

0: इसके साथ ही मेन्स सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। आयुष ने माना कि उनके पास मौके तो थे लेकिन वो उसे भुना नहीं पाए।
1: He was playing really sharp today. I think I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not given much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. I think that made a lot of difference. Yeah, I think but credits to him, he played much better badminton.
0: महिला सिंगल्स में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी अपने रंग में नहीं दिखी। 9वीं सीड पीवी सिंधु ने शुरुआत अच्छी की लेकिन वही लय आगे बरकरार नहीं रख पाने के कारण पहले गेम में तीसरी सीड चीन की वांग जी यी से 11-21 से हार गई। दूसरे गेम में सिंधु ने वापसी की और मुकाबला 21-15 से जीता। तीसरे गेम में भी शुरुआती बढ़त के बाद चीन की खिलाड़ी को वापसी का मौका मिला। एक समय दोनों खिलाड़ी 17-17 की बराबरी पर थीं लेकिन कोर्ट पर दर्द से कराहती चीन खिलाड़ी ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और भारत की पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सिंधु को 21-17 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सिंधु ने माना कि उनसे अहम मौके पर कुछ गलतियां हुई।
2: शायद थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। थोड़ा पेशेंट रहना था इज व्हाट आई फील। सैड अबाउट इट, आई शुड हैव कन्वर्टेड दैट, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ स्पोर्ट इज। यू लर्न, यू लूज अ लॉट, यू विन अ लॉट। आई मीन व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक।
0: भारत 17 साल बाद विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट को लेकर दिल्ली में बैडमिंटन प्रेमियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
3: और मेंस डबल्स में इस समय 5वीं सीड चिराग शेट्टी और 7वीं सायराज रंकी रेड्डी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से चल रहा है। पहले गेम में भारतीय जोड़ी को कड़े संघर्ष के बाद 21-23 से हार मिली है। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ताजा समाचार मिलने तक 11-8 से आगे है। अब बात हॉकी की। एमस्टलवीन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोलरहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल पाकिस्तान पर 5-3 की जीत के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में चल रहे विश्व कप हॉकी के दूसरे दौर में जगह बना ली। लेकिन भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: विश्व कप के नए प्रारूप के अनुसार पहले चरण में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगर दूसरे नंबर की टीम पर जीत हासिल करके आगे बढ़ती है तो दूसरे दौर में खेलने से पहले ही उसके नाम पर 3 अंक दर्ज हो जाएंगे। भारत इस मामले में नुकसान में है क्योंकि पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी जबकि इंग्लैंड पहले दौर के 3 अंक लेकर इस दौर में पहुंची है। इसके मायने ये हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा। भारत ने पूल डी में वेल्स को 3-1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया है जबकि इंग्लैंड से 2-4 से हार गई थी। नए प्रारूप के अंतर्गत पूल डी की दोनों शीर्ष टीम और पूल ए की 2 शीर्ष टीम से पूल ई बना है जिसमें से पहली 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। वहीं पूल बी और सी की शीर्ष 2 टीम पूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले 2 स्थान की टीम अंतिम 4 में पहुंचेंगी। पूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड शीर्ष पर है जिसे आज देर शाम जापान से अंतिम ग्रुप मैच खेलना है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद अर्जेंटीना ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पॉइंट टेबल में फिलहाल अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। दूसरे दौर में भारत का पहला मैच पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड से हो सकता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 3 ओलंपिक और 3 विश्व कप जीत चुकी नीदरलैंड को उसके गढ़ में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। इसी मैदान पर 1973 में पहली बार विश्व कप जीतने वाली नीदरलैंड ने 1990 और 1998 में फिर खिताब जीता जबकि पिछले 4 विश्व कप में भी वो 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है। पाकिस्तान पर जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने स्वीकार किया था कि उन्हें डिफेंस में सुधार करने की जरूरत है।
5: 100% डिफेंस क्योंकि आगे आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज, वो चलेगा बट जो पीछे मिस्टेक होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो आई थिंक वो एक ऐसा एरिया है, नॉट डिफेंस। अगर आप अपनी 25 में आप बॉल विन कर रहे हो तो मेक श्योर यू कीप द बॉल। एंड गिव 100% पास, तो वही जो सिली मिस्टेक्स हैं कि हम अपनी गलती से पनिश हो रहे हैं, बट वही हम अगर अच्छा करेंगे तो आई थिंक वी आर इन गुड स्टेट।
4: अगर भारत अपनी गलतियों को सुधार कर मैदान पर उतरा तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। मुकेश कुमार।

0: स्पोर्ट्स कैन।
1: तो विशेष हमारे साथ हैं समय स्टूडियो में। विशेष, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ हालिया आंकड़े?
2: भारतीय टीम जो नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने जाएगी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी, क्योंकि अभी जून में हुई FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने। ये तीनों खिलाड़ी अभी भी टीम का हिस्सा हैं और अभिषेक शानदार फॉर्म में बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी दो गोल किए थे और 1973 में भारत जब एम्स्टर्डम में खेलने के लिए उतरा था तो सिल्वर मेडल जीता था।
1: जी, ये तो बहुत रोचक आंकड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय पुरुष टीम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी अगले दौर में। अब बात कर लेते हैं शतरंज की। अमेरिका के सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। उधर महिलाओं के किंग्स कप में चीन की ग्रैंडमास्टर तानझोई गई ने खिताब जीता। भारत की दिव्या देशमुख संयुक्त 5वें और कोनेरू हम्पी 8वें स्थान पर रही। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: शानदार फॉर्म में चल रहे प्रज्ञानानंद क्लासिकल मुकाबले के बाद स्थानीय खिलाड़ी वेस्ली सो के साथ 5.5 अंक लेकर संयुक्त पहले स्थान पर थे, फिर भी भारतीय खिलाड़ी के हाथ से खिताब फिसल गया। क्लासिकल बाजी ड्रॉ रहने के बाद विजेता का फैसला करने के लिए 2 रैपिड प्लेऑफ खेली गई, लेकिन दोनों ड्रॉ रही। रैपिड में भी फैसला नहीं निकलने के बाद आर्मगडन बाजी भी खेली गई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला यहां भी ड्रॉ रहा। ये अलग बात है कि वेस्ली सो खेल के सहारे नहीं बल्कि नियमों के सहारे विजेता बन गए। प्रज्ञानानंदा सफेद मोहरों और वेस्ले सो काले मोहरों से खेल रहे थे, ऐसे में भारतीय खिलाड़ी के लिए जीतना जरूरी था। दूसरी तरफ अमरीकी खिलाड़ी सो के लिए ड्रॉ ही काफी था। मुकाबला ड्रॉ रहा और टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार काले मोहरों से खेलने वाले सो चैंपियन बन गए। खिताब से चूकने के बावजूद प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर GCT फाइनल में जगह बना ली है। ग्रैंड चेस टूर का फाइनल 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें प्रज्ञानानंदा के साथ वेस्ली सो, फेवियानो कारुआना और विसेंट केमर होंगे। वेस्ली सो ने तीसरी बार सिंक फील्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले 2016 और 2025 में भी यही टूर्नामेंट जीता था।
1: और मुंबई में शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक चक्रवर्ती ने आज एशियाई जूनियर क्लासिकल चैंपियनशिप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत के विघ्नेश, अद्वैत वेमुला और कजाकिस्तान के अखिलबे इमांगली के मैच ड्रॉ रहे। और एथलेटिक्स की अब बात करते हैं। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए नीरज डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पैथिरागे ने नीरज को तगड़ी चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक ही जीत पाए थे। इसके 3 सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। 23 वर्षीय पथिरागे इस सत्र में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उन्होंने दोहा और रोम डायमंड लीग में जीत हासिल करने के अलावा ग्लासगो में 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। जून में रोम में 92.62 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो साथ उन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा भी पार किया था। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने इस सत्र में अब तक जिन 9 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनमें से 8 में जीत हासिल की है। वह पहले ही डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। दूसरी तरफ चोपड़ा पिछले साल सितंबर में पीठ के निचले हिस्से की चोट से परेशान रहे हैं, इसके कारण उनकी वापसी दोहा में आयोजित डायमंड लीग तक टल गई थी। ग्लासगो में वह पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहे थे।
1: तो ये थी ज्योत्सना की रिपोर्ट। एथलेटिक्स से ही एक और खबर। एशियाई खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता हेपाथलीट स्वप्ना बर्मन को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मलेशिया के कोटा किनाबालू में ईस्ट बंगाल FC ने आज AFC महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरुआती चरण में गुआम की रोवर्स FC को 12-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत की टीम ने इतिहास रच दिया या किसी भी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में सबसे बड़ी जीत है। उधर FC गोवा को कुआलालंपुर में आज जारी FC चैलेंज लीग 2026-27 के ड्रॉ में कुवैत की कदासिया FC, बांग्लादेश की फोर्टिस FC और तजाकिस्तान की FC रेगार टेजेट के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। एक और खबर। टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला अमरीका में सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना

0: सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और

0: हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए?
2: मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, सिस्कर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। यह आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अवशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्य नदी जल विवादों के लिए एक सशस्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था, आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्क संगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
2: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरशेड कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब हरियाणा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीनों स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का बाजरा दलहन तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, न कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्वरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त

0: नहीं, असली समाधान ये कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
1: अरुण जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है, या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह की चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
0: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विकसित करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है, जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
1: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे?
0: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजनाओं पर बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब वो उस क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए और वो भी उसमें शामिल हो।
1: अरविंद जी, जैसे भी देश में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो?
0: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले, तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी, चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में, शहर में कई तरह के तालाब हों, ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को, जो है जो आपकी रोज की जरूरत है, उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरतें आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है जैसे, पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रहे, और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को मैंने जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता। तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा विषय का रहेगा।
1: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन

0: तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है। तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाए जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो।
1: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन की, क्योंकि जलजी जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग MSME के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं, पर MSME इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तरों पर संरचित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता जैसे MSME मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
0: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है। इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
1: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाएं चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे आपने सुना हो सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
0: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं, तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
1: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दलवाई समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30-50% औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है? क्षमता बनाम वास्तविकता। सो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड सिंचाई, मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, ना कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता है, फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है।
0: अरविंद जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है, तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है? यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें?
1: मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्व यानी नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, की समस्या हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्रायः रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एवं सोलिनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित

0: नागरिक केंद्रित उपजाऊ के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मान यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनाना चाहिए।
1: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: depending on geographies, level of development, and your basic education level, and you cannot impose a one single rule for the entire globe. It has to be a very differentiated kind of a debate and a very sophisticated debate which is required, which takes the benefits, but also makes sure that it benefits a majority. And that's important. These are ethical questions which are coming in big time with this.
1: Well, thank you so much, Atul Aneja ji, for talking to us in depth about digital bricks and what India's vision is for a resilient and inclusive digital future in the context of the Digital BRICS Forum and Expo, which is taking place in Pune. Thank you so much, sir.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on digital BRICS, shaping a resilient and inclusive digital future. The participants were Atul Aneja, international affairs expert, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
5: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
6: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल

0: two leading democracies in Asia, India and Japan share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity.
1: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries, but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.
0: Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was today elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes in the presidential election. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in the final Pool D match at Amstelveen in Netherlands. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया और अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
3: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है
2: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है
3: हमारी मैरिटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है
2: श्री कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10

0: लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत देती है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पौसुमी बसु और नेपाल के शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारतीय चिकित्सा यात्रा प्रतिनिधिमंडल ने भूटान का दौरा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा समन्वित इस दो दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच चिकित्सा साझेदारी और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी विकास पर चर्चा की गई। समूह ने थिम्पू में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य संस्थानों और यात्रा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरे का संचालन भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने किया। पिछले महीने विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटानी प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत भूटान सहयोग पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बढ़ते हुए असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अवामी कार्यवाही समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। समिति ने कहा कि वह पूरे क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से प्रदर्शनों को तेज करेगी और बेहतर आर्थिक स्थितियों तथा संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। पाकिस्तान ने POJK में इससे पहले कभी इस स्तर का विरोध नहीं देखा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि POJK के लोग इस बार उसी जाल में नहीं फंसेंगे जैसा कि वे अतीत में कई बार फंस चुके हैं। इन विरोध प्रदर्शनों ने POJK पर भारत के रुख को और मजबूत किया है। भारत का हमेशा से यही कहना रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा दबाया गया है और उन्हें बुनियादी अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। इस चुनाव में संसद के कुल 343 सदस्यों ने वोट डाले। मुख्य चुनाव आयुक्त ASM नासिरुद्दीन ने श्री आलमगीर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया। ये चुनाव 35 वर्षों में पहली बार हुआ क्योंकि बांग्लादेशी राष्ट्रपति चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। पिछले चुनावों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। एमिस्टल फैन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए, बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित, और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Ashish P. Abraham with the World News. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. India allows duty-free import of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir spread as Islamabad struggles to contain growing defiance. Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president in first contest in 35 years. And in Women's Hockey World Cup, India qualifies for second round after goalless draw with England in Pool D match. The India-Japan Defence Ministers meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defence technology, and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Defence Minister Rajnath Singh said, "The two leading democracies in Asia share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity."
4: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries, but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.
3: The visiting defense minister expressed appreciation for the condolence to all those affected by the earthquake in Kumamoto Prefecture. He also appreciated the support provided by the Indian Navy during the medical emergency that occurred on a Japan Maritime Self-Defense Force vessel.
5: Laksha Mantri Ji, Namaste.
6: I would like to express my appreciation for the support provided by Indian Navy for the medical emergency which took place on the JMSDF vessel. This symbolizes our relationship of cooperation, that when we have trouble, we help each other.
3: Later, Mr. Koizumi called on Prime Minister Narendra Modi. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special, strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has allowed duty-free imports of up to 10 lakh metric tons of raw sugar until 31st of October this year. The Directorate General of Foreign Trade, DGFT, in a notification issued today, said imports of raw sugar will be allowed without duty under a tariff rate quota, TRQ, of 10 lakh metric tons, subject to specified conditions. The move comes ahead of the festival season, when sugar demand typically increases and follows concerns over supplies in the domestic market. India is the world's second largest sugar producer. The Pakistani

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत अगर जिंदगी में रंग भरती है तो जुदाई उसी मोहब्बत को एक गहरी आवाज भी देती है। मोहब्बत में मिलना खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी किसी का इंतजार करना भी तो मोहब्बत ही तो है। कभी किसी की आवाज याद आती है तो कभी किसी का भेजा हुआ कोई पैगाम, कोई संदेश या कोई खत, कभी साथ में ली गई कोई तस्वीरें, तो कभी सिर्फ एक नाम याद आता है और फिर अचानक रेडियो पर कोई गीत बजता है और लगता है जैसे बरसों पुरानी कोई शाम हमारे सामने आकर बैठ गई हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, जिसमें ऐसे गीत होंगे और उसमें प्यार की मासूमियत भी होगी और उस प्यार को महसूस करने की बेचैनी भी।

0: कभी कभी।
1: इंतजार, किसी के आने का इंतजार, किसी की आवाज सुनने का इंतजार, एक मुलाकात का इंतजार, और कभी कभी सिर्फ इस बात का इंतजार कि सामने वाला भी हमें उसी तरह याद कर रहा होगा। इंतजार भी एक धुन की तरह होती है, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन दिल दिल वहीं ठहर जाता है। और जब इंतजार लंबा हो जाए तो अक्सर इंसान खुद से ही बातें करने लगता है। और इन्हीं सब बातों के बीच आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत जो शायद इंतजार की ही तो बात कर रहा है।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हाजिर होता है छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, यादों की भी अपनी अजीब दुनिया होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी भी हमारी जिंदगी से नहीं जाती। एक रास्ता उनकी याद दिलाता है, हवा का झोंका उनकी याद दिलाता है और बारिश की फुहार उनकी याद दिलाता है, तो कभी कोई पुराना गीत उनकी याद दिलाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान दूर जा सकता है मगर यादों से दूर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, उम्र भर याद रहने के लिए बनते हैं। तो चलिए अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें याद भी है, प्यार भी है और एक अधूरी सी कसक भी है।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत दिल में होती है लेकिन वो जुबां तक नहीं आ पाती। हम सामने वाले को देखते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमारी जुबान पर शब्द नहीं आते और हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। दोस्तों, मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि हर बात कहनी नहीं पड़ती। कुछ बातें आंखें कह देती हैं, कुछ खामोशियां कह देती हैं और कुछ गीत वो बात कह देते हैं जिसे हम बरसों में भी नहीं कह पाते। तो आइए सुनते हैं प्यार किए उस खामोश इजहार से भरा हुआ एक खूबसूरत।

दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें रोकर भी पूरी तरीके से हल्का नहीं किया जा सकता। किसी से दूर होने का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। जिस इंसान के साथ आपने अपने पूरे भविष्य की कल्पना की हो, उसके बिना भविष्य की कल्पना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, वो चलती रहती है और हम भी चलते रहते हैं। बस दिल का एक हिस्सा वहीं रह जाता है जहां कभी कोई अपना हुआ करता था। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ हमें खुश रहना नहीं सिखाती, कभी कभी मोहब्बत हमें टूटना भी सिखाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि टूटने के बाद भी इंसान उसी रिश्ते को बुरा नहीं कह पाता, क्योंकि रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन उसमें बिताया हुआ अच्छा समय तो खत्म नहीं होता। इसीलिए किसी से जुदा होने के बाद भी हम सिर्फ ये कह पाते हैं कि जो था अच्छा था, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis and global crude oil prices rise over 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा। भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया. सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया. इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले. दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its four-day losing streak, while Nifty snapped its seven-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in U.S. bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई.

0: जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई।
1: In the sectoral indices and the Bombay Stock Exchange, all the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%, FMCG as well as focused IT gained 1%, and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined, and 225 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
0: एसपी, अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है। सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसने जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ हैं जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई स्प्रे में है और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ उसमें भी जो वो बरकरार है। लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रांग रीबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद ये 6% 5% 6% उसे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है और जिसमें जो बायस है अपवर्ड बायस है, जो मार्केट्स है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करती है जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी नहीं ले पाती है। तो कुल मिला के जो मार्केट्स है वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है। मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ करेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगती हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है। तो एक ये जो 1,500 का जो एक रेंज है निफ्टी में वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए है।
0: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चल करके?
2: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है, एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं। तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1,500 के निफ्टी का जो अभी पीछे हम 1.5 साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है, तो एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, मार्केट में एक संतुलन बना रहा। जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाती है तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है उसको लेके और नेगेटिव कोई न्यूज आती है तो मार्केट्स वहां पे करेक्शन खा जाती है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं ये कहूंगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड approach.
1: Okay. Dr. Sharma, the rebound that you mentioned is also short covering in the markets after a 4-day losing streak. We saw again an uprise in the markets today. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the US treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the US bond. You have the bill notes and bonds 1 to 6 months, the short term treasuries 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in

0: आयरन और स्टील की बात करें, सीमेंट, बिजली और कोयले के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उर्वरक और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से कैसा दर्शाते हैं और मार्केट की आगे की जो रफ्तार, उस पर क्या असर डालेंगे ये?
1: देखिए, जो स्टील में, माइनिंग में जो अच्छी बढ़त आई है, ये सरकार की जो भी पॉलिसीज, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में कही है, या फिर आप जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंस इन एन एफिशिएंट मैनर उसमें कही है, तो ये सब चीज़ों का भी नतीजा है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कोर इंफ्रा में, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और विजिबल हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले ये काफ़ी ग्रोथ इसमें अंडरमाइंड था, जो कोर इंफ्रा में ग्रोथ बहुत कम आता था, तो अभी ग्रोथ एक लेवल से ऊपर उठा है, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और कुछ खास करके जो आगे जो हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये वापस अपने पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी में आए हैं। लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि तो उसमें वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेंड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें, जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत, अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके, डबल, और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने पीछे 4-5 महीने में बिहेव किया है, तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है।
2: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड, बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, you need sulfur imports for crude oil, of course, and natural gas. We rely on the Middle East for crucial imports for our refineries. But the weightage of fertilizer, crude oil, and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel, and refinery products. And all of that has seen a great increase in its output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of core industries.
1: Yes, Arjun, you are right, because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high. As these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%, which is a great number in the this volatile global environment.
2: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with core industries data and IIP, fundamentally, the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
1: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals, like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4%, and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13% during the last 4 months. The average is 13%. Last month in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So this is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
0: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था। जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा। इस खबर से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव काफी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, 1-2 महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है, ये काफी कुछ कहता है।

0: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडिसेज हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है। जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशंस है या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है, तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं, या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं, या फिर चाइना में देखते हैं, या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है,
1: जी
0: लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी लेवल तक अंडरमाइन हुई है। जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा, तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्थता है।
1: डॉक्टर शर्मा, दी लुकिंग एट द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान, क्लियरली दे हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट एज अ स्टोरी is indicating the exports have gone up, but the imports have gone up even more relative to the exports. And we talk about the Japanese yen. It has now climbed back to 158.55 to the US dollar. Earlier, it was even weaker. It crossed 160. And then there was a move by the US government to strengthen the yen because the yen is also used for, the
0: Right.
1: carryover trade. So what's going on here between the Bank of Japan, the yen, and what the US is doing?
0: यस अर्जुन, जापान इज इन अ मेजर स्ट्रक्चरल मोड, स्ट्रक्चरल रिवाइवल, एंड ग्रोथ इज ऑल्सो इंचिंग अप स्लोली स्लोली, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव दिस स्ट्रक्चरल शफल विल बेनिफिट द जापानीज इकोनॉमी, बिकॉज दे आर नाउ कनेक्टिंग विद दी मैनी ग्लोबल मार्केट्स, एंड टू इंक्रीज द ट्रेड ट्राजेक्ट्री एंड टू बिकम वंस अगेन प्रोमिनेंट इन द ग्लोबल ट्रेड। सो आई थिंक इन द कमिंग टाइम्स दैट विल बिकम विजिबल एंड इकोनॉमी विल रिजुविनेट टू दी नेक्स्ट लेवल।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा, उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता, तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा। एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे? क्या असर देखने को मिलेगा? मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
0: देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है। नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा। अभी हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है, क्रूड प्राइसेस की वजह से। और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा, पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है, मतलब यूएस भी उसमें शामिल है। यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा। जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहाँ पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है।
2: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है।
0: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ऐसी अनाउंसमेंट्स दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजन है लेना चाहिए।
1: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 3% टूडे। ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94 एंड 61 सेंट्स पर बैरल इन intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.4% up at $88 and 77 cents per barrel when reports last came in.
2: चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है. बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है. और अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 157,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 237,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया डॉलर का वीकनेस, जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था, तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था. और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4000 का लो स्तर छू के वापस एक रिबाउंड आया. जो सेंट्रल बैंक्स है वापस वो दे आर इन द बाइंग स्प्री, तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूँ कि बरकरार रह सकती है. और गोल्ड का जो पहले ये 5500 का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, 5500 डॉलर पर ट्राई ऑन्स, तो अभी 4500 है, तो काफी स्कोप है. लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो काफी ऊपर ही.
2: डॉक्टर एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis. And global crude oil prices rise over 3%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और मुझे दीजिए इजाजत। अपनों का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैद यारिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब इनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि दिन भर सबके हिस्से की चिंता करते करते कभी अपने हिस्से का आसमान भी देख लिया कीजिए। हर रिश्ता जरूरी है मगर खुद से जो रिश्ता है वो सबसे पुराना है। किसी के चले जाने से या किसी के ना होने से हमारी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग एक चैप्टर की तरह होते हैं पर वो पूरी किताब नहीं होते और कुछ मुलाकातें प्रेम से अधिक एक सीख भी दे जाती हैं। रात इसलिए खूबसूरत है कि यह दिन की थकान नहीं अपने भीतर लौटने का बहाना देती है। अपने सपनों को उम्र की चौखट पर मत रोकिए। जिस दिल ने सबको संभाला है उसे भी सहलाने का हक है। कल फिर नई सुबह होगी मगर आज की रात भी आपकी है। कहते हैं ना कि सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। और अगला गीत फिल्म का नाम है दयावान। आइए सुनते हैं ये गीत।

आपको छोटा नहीं करता, बल्कि वो हर दिन आपको संवारता है, बेहतर बनाता है। वो आपके सामने आपके सपनों से ईर्ष्या नहीं करता, उन्हें उड़ान देता है, पंख देता है। जहां अधिकार बहुत हो, समझ कम हो, वहां रिश्ता धीरे धीरे करके बोझ बनता चला जाता है। जहां सम्मान हो, वहां साधारण सी शाम भी बहुत खास बन जाती है। किसी का भी हाथ पकड़ना, किसी रिश्ते में होना बहुत आसान है, पर उस मन के बदलते मौसमों को समझना बहुत कठिन भी होता है। इसलिए प्रेम में साथ से पहले संवेदना का होना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है, क्योंकि सुंदर रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान बचाए रखें, दोनों अपने सम्मान को संभाल सकें। और रात के इस पहर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेम मांगता कम है, संवारता बहुत है। तो कहते हैं कि वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, और आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

द हर्ट्स पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नीला आकाश, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बड़ी पुरानी सी बात है, या यूं कहें कि पुराने लोग कहा करते थे कि हर इच्छा का पूरा हो जाना जरूरी नहीं, कुछ अधूरी चाहतें हमारे भीतर रहकर हमें भीतर से समृद्ध करती हैं। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को कभी दोष नहीं देना चाहिए। शायद जिंदगी आपको किसी और रास्ते के लिए बचा कर रखती है। हर बंद राह हार नहीं होती। कभी कभी बंद रास्ते जो हैं वो ये बताते हैं कि अपनी दिशा को बदल लेना चाहिए। रात में बीते हुए सपनों को अगर हम याद करेंगे और याद करके हमें वहां ठहरना नहीं है, बल्कि सुबह उन्हें नए रूप में जीने की कोशिश भी करना है। दिल को केवल पाने की आदत मत डालिए, बदलते रास्तों पर चलना भी सीखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, उस सफर में भी है जो हमें अपने करीब लेके आता है। कहते हैं कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं। ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो अभी हमने कहा ना कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। बात अगर हम

प्रेम की करते हैं कि प्रेम को लिखना मुश्किल है और प्रेम को लिखना सबसे आसान भी है। तो जनाब, अगर बात प्रेम की है तो हम इंतजार को कैसे भूल जाएं? पर इंतजार की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उम्र भर इंतजार का दामन थाम कर बैठे रहिए। जी नहीं, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली है हमने, इतनी मुश्किल बना ली है, ऐसे में किसी के संदेश का, किसी के आने का, किसी के मिलने का इंतजार करते करते कभी भी अपने जीवन को इंतजार मत बनाइए। जिसे आना होगा वो रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे रहना होगा वो वजह नहीं रिश्ता चुनेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोक कर भी आप कुछ नहीं पाएंगे। प्रेम में प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कभी भी सुंदर नहीं है। किसी की याद को अपने दिन की रोशनी बनने दीजिए, पर पूरी दुनिया नहीं। अपनी मुस्कुराहट को किसी जवाब का मोहताज मत बनने दीजिए। कभी कभी रात को अपनी बनाइए और अपने फोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अपने दिल के पास बैठिए, खुद के साथ बैठिए और अपने मन की आवाज को सुनिए। आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है? शायद वहां कोई ऐसा उत्तर छिपा हो, कोई ऐसा जवाब छिपा हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, पर आपको वो जवाब नहीं मिल रहा था। और सही कहा गया है कि जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, जिसे आना था वो राह बनकर आ गया। मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया, मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बनाने पर बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और देश के छात्रों के लिए नए अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takachi during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah yesterday announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The Prime Minister added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Now to the sports. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstelveen in the Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. The draw helped India, led by Salima Tete, sealing a vital second place finish in Pool D. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कुछ बीती बातें रात में अचानक याद आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा सबके साथ होता है, तो जो बातें याद आ जाती हैं और आकर मन में घर बनाने लग जाती हैं, उनसे लड़ाई मत कीजिए, उन्हें एक अनुभव की तरह जीवन में शामिल कर लीजिए। हर गलती अपराध नहीं होती, कई बार वो हमारे जीवन में एक सीख छोड़ जाती है। जिस रास्ते ने हमें गिराया, उसने ही हमें चलना भी सिखाया। इसलिए बीते हुए अतीत को सजा बनाकर रखना सही नहीं होता, उसे अपनी समझ की किताब का एक पन्ना बनने देना चाहिए, ताकि जब कभी हमारा मन भटकने लगे या ऐसा लगे कि हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं, तो अतीत के उस पन्ने को खोलकर हम जीवन की सीख को दोहरा सकते हैं। जो चला गया, उसके पीछे अपना आज क्यों खोना है? आने वाला कल हमारे इंतजार में खड़ा है, और कभी कभी तो दरवाजा बंद होना भी रास्ता बदलने का संकेत होता है, और कभी किसी रिश्ते का अंत अपने प्रति लौटने की शुरुआत भी होती है। आज की रात खुद से बस इतना कहिए, मैं बीते कल से बना हूं, मगर मेरा भविष्य अभी बाकी है। जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना। और अगला गीत, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत और फिर करेंगे आगे बहुत सारी बातें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि उम्र कभी सपनों की उम्र तय नहीं करती। कभी कभी 45 और 50 की उम्र में भी मन 20 साल की तरह खिल उठता है, और कभी एक नई किताब, एक यात्रा या एक दोस्ती पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने न जाने कितने सपने रोक दिए। जबकि लोग आज कुछ कहेंगे, कल किसी और बात में लग जाएंगे, और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमें और आपको ही जीनी है। इसलिए देर से शुरू होने वाली खुशी को भी खुशी समझकर जीवन में शामिल करते चलना चाहिए। नई शुरुआत के लिए जनाब जीवन में कभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बस एक भीतर सच्ची इच्छा होनी चाहिए। और रात का जो ये पहर है, ये उसी इच्छा को जगाने के लिए काफी है कि हमें अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, कोई अच्छी सी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें उस पर विचार करने का ये रात मौका देती है। उम्र ने पूछा अब कहां से ख्वाब लाओगी, उम्र ने पूछा अब कहां से ख्वाब लाओगी, दिल ने हंसकर कहा जहां चाह होगी राह वहीं होगी, जहां चाह होगी राह वहीं होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है आशा भोसले और लता मंगेशकर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुमसे ही महकी मध्यम फिजाएं हैं, तुमसे ही महकी मध्यम फिजाएं हैं, तुम फूल हो तुम दुनिया मेरी, तुम्हारे रंगों में रोशन तुम्हारी खुशबुओं में तर मैं, कभी कभी तुम में खुद को तलाशता हूँ, जबकि मेरी और तुम्हारी दुनिया में बस तुम ही तुम हो हर जगह, तुम में खुद को ढूंढता ये मन डरता है कि खुद के तलाश में दूर कहीं निकल ना जाए, तुम में महका तुम रंग निखरा ये मन तुम्हारा ही है, मगर जब तक तुमने संजोए रखा इसे भी किसी मुस्कुराते फूल की तरह, किसी मुस्कुराते फूल की तरह। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की रिन इवानागा और की नाका निशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीन की जिया यीफेन और झांग शू शियान से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office

जिसे चाहा वही दूरी का पैगाम दे गया, जिसे चाहा वही दूरी का पैगाम दे गया, दिल अपना फिर भी उसको ही हर शाम दे गया। उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, मन फिर भी स्नेह का खुला इल्हाम दे गया। कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज सुरमई में पहला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सागर से आप सभी के लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। न ऋतुओं का हाल, न भीतर उतरती किसी अनकही पीड़ा का वृतांत। केवल इतना करना कि कागज के एक कोने पर अपना नाम रख देना, जैसे कोई दीपक दूर पहाड़ी पर रख दिया गया हो और भटके हुए पथिक को दिशा मिल गई हो।

वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए। दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा। कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहाँ तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, कहाँ तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब। हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आपके साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूँ जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था। मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूँ जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था, और आज उस खिड़की से भी जिसके बाहर देखती थी तुम्हारी उदास आंखें। मुझे अब भी उस अंधेरे से प्रेम है जिसके उजालों में चलकर पहुंचता था तुम्हारे पास। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जो तुम्हारे हाथों से छुई गई थी कभी न कभी, जैसे दीवार, काजल लगा आईना, कपड़े सुखाने की रस्सियां, कमरे की चाबियां, कमरे की सारी खूंटियां जहां हमने अपनी प्रार्थनाएं लटकाई थी कभी। मैंने अलमारी में लटके उन सारे हैंगर्स से भी प्रेम किया जिनमें सफेद झाग वाले सर्फ की तरह महकते थे तुम्हारे हाथ। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जिन्हें तुम्हारे तलवों ने छुआ था, जैसे पृथ्वी, जैसे यह सारा संसार। इस तरह मैंने तुम्हारी हरेक चीज से प्रेम किया तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे लिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आवाज है लता मंगेशकर की। साथ ही आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस गीत के साथ।

रात जितनी शांत होती है, दिल उतना ही अपने करीबियों को महसूस करता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस उनका साथ होना ही दिल को सुकून दे जाता है। जैसे चांदनी रात में हवा का धीरे से गुजरना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना।

साथ का मतलब केवल पास रहना नहीं, बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। खुशियों में साथ मुस्कुराना और मुश्किल घड़ी में बिना कहे हिम्मत बन जाना, शायद यही सच्चे साथ की खूबसूरती है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत शायद किसी को अपना बनाने का नाम नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। जहां शिकायतों से ज्यादा समझ हो, अधिकार से ज्यादा सम्मान हो और शब्दों से ज्यादा एहसास हो, वही मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है।

कुछ भावनाएं गिनी नहीं जाती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। प्यार भी उन्हीं एहसासों में से एक है, जितना बांटें उतना ही गहरा होता जाता है।

रिश्तों में कभी नज़दीकियाँ आती हैं, कभी दूरियाँ, लेकिन सच्चा अपनापन दूरी से ख़त्म नहीं होता। कई बार इंसान पास होकर भी दूर होता है और कई बार दूर होकर या दूर रहकर भी हर धड़कन में मौजूद रहता है।

तो आज की इस नर्म से रात में उन लोगों को याद कीजिए जिनकी मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाया है। कुछ रिश्ते चांदनी जैसे होते हैं, चाहे रात कितनी भी गहरी हो उनकी रोशनी दिल तक पहुँच ही जाती है। आप जहाँ भी हो खुश रहें और अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास और अपनापन यूं ही बनाए रखें। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, यानी मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की भावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों की उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ बादल छाए रह सकते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई कैंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यीफान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takaichi during a recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म भीगी पलकें के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार ने। गीतकार एमजी असमत, संगीतकार जुगल किशोर और तिलक राज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म संगम से मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार साहिर, संगीतकार राजेश रोशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खुदगर्ज से नितिन मुकेश की आवाज में और साथ में मोहम्मद अजीज, संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। समय हो गया है कार्यक्रम के आखिरी गीत का। गीत है फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर एलार उनकी आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी। और इसी गीत के साथ छोड़ के जा रही हूँ आपको। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से आऊंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी के में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भाजपा और जापान के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के लिए नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जियाई फान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together communications minister and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this in a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they

एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

मंजिल की खोज होनी चाहिए। अपने सपनों को पंख दीजिए, क्योंकि रास्ते कितने भी अनजान हो, उड़ने का साहस रखने वालों के लिए आकाश कभी छोटा नहीं होता।

सुबह की पहली हवा जब चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति हमें फिर से जीने का संदेश दे रही हो। हवा कहती है, बीते कल की उदासी को पीछे छोड़िए और आज को नई उम्मीद के साथ अपनाइए। हर सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने की।

जीवन भी पहाड़ों जैसा है, कहीं चढ़ाई कहीं ढलान, कहीं आसान रास्ते और कहीं कठिन मोड़। लेकिन हर ऊंचाई हमें यही सिखाती है कि मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत नज़ारे तक ले जाते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराइए नहीं, एक एक कदम बढ़ाते रहिए।